मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज बुधवार है।

शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ मोहन शर्मा सनेही रचित मातृवंदना से समवेत स्वर में।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन, आलेख श्री बालचंद्र कछवाहा का है।
1: वेद वेदांग और पुराणों के अनुसार हमें भगवत कृपा से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इस धरती पर विद्यमान नाना जीवधारियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ और सर्वसमर्थ है। अपरिमेय मेधा और अनेक गुणों का स्वामी होने के कारण दुनिया के सम्यक विकास की जिम्मेदारी भी उसी की है। वो अपने ज्ञान विज्ञान से भूमि के स्वर्गीकरण का यदि सूत्रधार हो सकता है तो अपनी अज्ञानता से सृष्टि का संहारक भी हो सकता है। हमने देखा कि अपनी दुर्दमनीय जिजीविषा और इच्छा शक्ति से मानव जाति ने स्वयं को पाशविक जीवन के घने अंधकार से निकालकर सभ्यता और संस्कृति के उच्च शिखरों पर प्रतिष्ठित कर दिया। युग युगांतर से चल रहे अंधकार और प्रकाश, जीवन और मृत्यु, सत्य और असत्य के संघर्ष में प्रकाश की विजय गाथा लिखने वाला मनुष्य सचमुच ही इस धरती का सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधि है। और कि मनुष्य के जीवन का आत्यंतिक प्रयोजन सृष्टि चक्र को गतिमान रखते हुए चराचर प्राणियों के जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना है, परंतु आज हमें लगने लगा है कि कहीं संसार में विकसित सभ्यताओं को ग्रहण तो नहीं लग गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जाने अनजाने में सर्वनाश की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं? क्यों मनुष्य में पाशव प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं? 24 घंटों में एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जहां शांति और अहिंसा के स्वर गूंजते हों। बेगुनाह व्यक्तियों और समूहों की हत्या के समाचारों से अखबार अटे रहते हैं। पुराने जमाने में एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता था, उन युद्धों में इतनी जाने नहीं जाती थीं जितनी आज जिहादियों और अन्यों के द्वारा लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इन राक्षसी कारनामों को सरकारें भी रोकने में असमर्थ सी प्रतीत होती हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और बेईमानी सामाजिक जीवन को विषाक्त कर रहे हैं, फिर भी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पतन के इस घटाटोप का अंदाजा इससे भी होता है

0: कि नारी जाति पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं। उनके अपमान और उनकी हत्याओं के पापपूर्ण जघन्य कार्यों से हमारा समाज कलंकित है। अतः उन तमाम लोगों को, युवक और युवतियों की नई पीढ़ी को राष्ट्रीय जीवन की शुद्धि के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। हमारे शास्त्रों और महापुरुषों की जीवन गाथाओं का अनुशीलन कर हमें नई मनुष्यता के आरोहण का संकल्प लेना होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम जरूर मरेंगे। अतः मरने से पहले राष्ट्र की आराधना के लिए सर्वस्व समर्पण करें और प्रार्थना में जीवन का संकल्प लेकर अंधेरे के खिलाफ संघर्ष में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर ज्योतिर्मय जीवन के अधिकारी बने। याद रखें, दीपक बुझ जाने के बाद तेल डालना व्यर्थ है। निर्वाण दीपे किमु तैल दानम।
1: चिंतन अभी आपने सुना, आलेख था श्री बालचंद्र कछवाहा का। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं और ये समय है श्री रामचरित मानस गान का।
2: एपिसोड नंबर 189

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आपने सुना। आज की कड़ी में मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और शोभना राव के थे। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा पशुधन इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है, पशुओं में लीवर फ्लू की बीमारी। जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव रॉय।
1: किसान भाइयों राम राम, मैं डॉक्टर संजीव राय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर में पशु चिकित्सा सहायक संलग्न के पद पर हूँ। आज आप लोगों को लीवर फ्लू की बीमारी, जो कि एक कृमि से होने वाला रोग है, उसके बारे में बताऊंगा। ये रोग गाय भैंसों में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है इस रोग से। ये रोग घोंघे के द्वारा फैलता है, मतलब घोंघे में ये जो कीड़े रहते हैं, कृमि रहते हैं, वो उनका एक स्टेज रहता है, जो कि एक समय के बाद में जब जानवर बारिश के बाद में और जो हरे चारे हैं या जो घास है उसको चरते हैं, तो उस चारे के सहायता से उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में शरीर में जाने के बाद में ये लीवर में और उसके अंतड़ियों में नुकसान पहुंचाता है।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम ग्रीष्मकालीन मक्के की खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मक्का भारत की ही नहीं विश्व की एक महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल की खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। रबी की फसलों में जैसे गेहूं, चना, मसूर की कटाई के पश्चात जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहां हम ग्रीष्मकाल में इसकी खेती कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में भी मक्के की खेती बहुत लाभदायक है। इससे जल संरक्षण भी होगा और साथ ही मुनाफा भी अधिक होगा। मक्के की फसल पोषण की दृष्टि से भी भरपूर होती है। इसमें 10-12% प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं, विटामिन, मिनरल्स एवं अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उन्नत कृषि तकनीकी अपनाकर आप मक्के की फसल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मक्के की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। मृदा में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए एवं मृदा का पीएच मान 6-7 के बीच में होना चाहिए। इसकी खेती के लिए लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं उपयुक्त नहीं होती हैं। अगर हम ग्रीष्मकाल की मक्के की बुआई के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो फरवरी मार्च का महीना इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। बीज की मात्रा दानों के आकार एवं बोने की विधि पर निर्भर करती है। जायद में मक्के की खेती के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है। बीज को बोने से पूर्व हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए। बीज को बोने के लिए हमें बाविस्टीन एवं कैप्टॉन के 1:1 में मिलाकर 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करना चाहिए, जिससे ब्लाइट एवं अन्य रोगों की रोकथाम होती है। बीज उपचार करने से स्थापना अवधि के दौरान कीट व्याधियों के प्रकोप से फसल की सुरक्षा की जा सकती है। बीज हमेशा उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। उन्नत किस्मों में प्रकाश प्रो एग्रो 42-12, पूसा हाइब्रिड, विवेक 17, छत्तीसगढ़ अगेती, शंकर मक्का 1 आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। यह किस्में 75 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं एवं इससे हमें 55 से 60 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होती है। मक्के की खेती के लिए अगर हम भूमि की तैयारी की बात करें तो हमें पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके उसके पश्चात हमें हैरो एवं कल्टीवेटर लगाकर खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए और फिर पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। इस तरीके से खेत तैयार करके बीज बोने से बीजों में अंकुरण अच्छा होता है। ग्रीष्मकाल में मक्के की फसल की बुवाई हेतु कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। कतार में बोने से हमें शस्य क्रियाएं करने में आसानी होती है। मक्के की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष में कम से कम एक बार 10 से 12 टन गोबर की खाद का प्रयोग मृदा में अवश्य करना चाहिए एवं मिट्टी परीक्षण कर पोषक तत्वों की स्थिति एवं किस्म की अवधि के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
0: ग्रीष्मकालीन मक्के की खेती, इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर विनम्रता जैन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है आज रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम मध्यम वर्ग कल्याण सुनिएगा आज रात 9:15 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर और श्रोता पत्रों पर केंद्रित कार्यक्रम आपके पत्र होगा सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज सुबह 9:00 सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

सुगम संगीत में आज सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे राजशेखर बोस। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे रोशन भारती को और शाम 6:30 पर सुनिएगा सविता दुबे और साथियों के स्वर में रचनाएं। शास्त्रीय संगीत में सुबह 10:00 आप सुनेंगे देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग गौड़ सारंग और पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अलहैया बिलावल। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा विदुषी लक्ष्मी शंकर का गायन। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ, ये कार्यक्रम होगा दिन में 11:05 पर। मुन्नी बाई ये नाटक आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। इस नाटक के लेखक हैं श्री विभू कुमार और प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री लाल राम कुमार सिंह। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:10 पर आजकल का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस, क्रम पत्र मिला और यादें। चौपाल में शाम 7:21

0: पर आज की बात में होगा पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस और आज की सलाह में राहेर की उन्नत उत्पादन तकनीक विषय पर सलाह देंगे आशीष गौरव शुक्ला। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12 बजे और एक प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ होगा शाम 5 बजे। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 पर, 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्षपदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रांतरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिकशैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडित्पातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से

0: 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

भीषण गर्मी की तपिश के बाद अब निगाहें टिकी हैं आसमान में कि कब काली घटाएं छाएं और मॉनसून आए और बादल उमड़ घुमड़ कर बरसें। वैसे तो इन दिनों लगभग हर शाम मौसम का मिजाज कुछ बदल सा जाता है। कहीं तेज हवाओं के झोंके चलते हैं तो कुछ जगहों पर गरज के साथ बरसात भी होती है। बदलते हुए इस मौसम में अब सभी को बेसब्री से इंतजार है मानसून के आने का और बरसात की सौगात के साथ जब आमद होगी बूंदों की तो मन झूम उठेगा। फिलहाल तो मौसम से विशेषकर मेघों से ये गुजारिश है कि वे कहीं ना जाएं, बल्कि प्रेम का संदेश बनकर झूम कर बरसें।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें कई ऐसी बातों की जानकारियां मिलती हैं जो जुड़ी होती हैं देश विदेश और वैश्विक स्तर पर। और आज यानी 3 जून की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की यदि चर्चा करें तो सन 1947 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना का ऐतिहासिक ऐलान किया था आज ही के दिन। 3 जून सन 1918 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करके हिंदी को राजभाषा बनाने की दिशा में कदम उठाया गया था। सन 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 3 जून को ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई थी। अंतरिक्ष जगत से जुड़ी उल्लेखनीय बातों के अंतर्गत 3 जून सन 1965 को अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड व्हाइट द्वितीय ने जेमिनी 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में चलने वाले पहले अमेरिकी बने थे। पर्यावरण को बढ़ावा देने और साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 3 जून सन 2018 से विश्व साइकिल दिवस मनाया जाने लगा। 3 जून के दिन ही कुछ प्रसिद्ध हस्तियों की जयंती भी होती है, जिनमें से हैं सन 1941 में भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रूमा पॉल, 1930 में राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई जाती है, सन 1844 में आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माता बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून को ही हुआ था, और 3 जून सन 1933 में प्रसिद्ध भारतीय गीतकार व शायर योगेश जी का भी जन्म हुआ था। तो ये तो थी आज के दिन से जुड़ी हुई बातें, और आइए अब चलते हैं समय के साथ इस गीत के लेकर।

और अब चर्चा एक ऐसे वाहन की जो नेचर फ्रेंडली होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक, सतत परिवहन का प्रतीक, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला और प्रदूषण को कम करने में विशेष सहयोगी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइकिल की। आज इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि 3 जून सन 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था और इसे परिवहन का एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल साधन माना गया। वाकई श्रोताओं, साइकिल चलाना सेहत के नज़रिए से बहुत लाभप्रद है। नियमित साइकिल चलाने से वजन नियंत्रित रहता है, शरीर में रक्त संचार बेहतर होने के साथ ही डायबिटीज, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। साइकिल शून्य उत्सर्जन वाहन है जिससे प्रदूषण कम होता है और हवा शुद्ध रहती है। साथ ही ये परिवहन का सबसे सस्ता, सुगम, किफायती साधन है। वर्ष 2026 के लिए साइकिल दिवस की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। आज के दिन माई भारत और फिट इंडिया अभियान के तहत देश भर में 100 से अधिक शहरों में साइकिल रैलियों और साइकिल के फायदे से जुड़े विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो फिटनेस के इस विकल्प को अपनाते हुए रोज साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें। फिलहाल सुने साइकिल से जुड़ा ये गीत।

श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर का एक महत्वपूर्ण और जनोपयोगी पर्व है सुशासन तिहार। ये वो क्रियाविधि है जिसके तहत प्रदेश के नागरिक निजी या किसी भी सार्वजनिक समस्या की शिकायत कर उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर 1076-1076 जारी किया गया है। इस नंबर पर नागरिकों की शिकायत का पंजीयन होने के बाद उस समस्या की कैटेगरी के अनुसार उसका निराकरण निर्धारित अवधि में किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 के साथ ही वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे किसी भी माध्यम से कॉल करके अपनी समस्या या शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही एक टोकन संख्या दी जाएगी और फिर नियत समयावधि में समस्या का समाधान होगा। तो इस सुशासन तिहार के माध्यम से दूर करें अपनी हर शिकायत।

प्रदेश में प्री मानसून की आहट के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम भी बढ़ने लगता है, जहां आंधी तूफान, बाढ़, अत्यधिक या कम वर्षा से फसलों को नुकसान होने की आशंका रहती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने या जहरीले जीव जंतुओं के काटने से इंसानों या मवेशियों की मौत के मामले भी सामने आते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा दिलाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रावधान तय किए हैं। इसी के तहत हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि आंधी या तूफान से कच्चे या पक्के मकान के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित व्यक्ति को SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड या NDRF मानकों के अनुसार राहत राशि पाने का प्रावधान है। राज्य आपदा राहत कोष से 95,100 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। इसके लिए क्षति की सूचना पटवारी को देना आवश्यक है। सहायता राशि पाने हेतु क्षतिग्रस्त मकान की फोटो अपने साथ रखें, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ तहसील कार्यालय जाएं। निर्धारित आवेदन पत्र फॉर्म 6 भरें। यदि कोई और समस्या आए तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करें।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: और अब एक जानकारी बिजली बिल में छूट से संबंधित। राज्य सरकार की ओर से पुराने बिजली बिल में बड़ी छूट दी जा रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं को मोर बिजली ऐप में पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ही पुराने बिल की गणना की जाएगी और फिर तय होगा कि कितनी छूट दी जा सकती है। बिजली बिल में छूट के लिए 30 जून तक पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल पर मोर बिजली ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद योजना की जानकारी वाला विज्ञापन स्क्रीन पर दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म आएगा। इस पर बिजली बिल उपभोक्ता क्रमांक, नाम, बिजली बिल जानकारी,

मोबाइल नंबर दर्ज करते ही उपभोक्ता का पंजीयन हो जाएगा। 30 जून के बाद ही भरे हुए आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैटेगरी के अनुसार छूट दी जाएगी, तो आप भी इस योजना का लाभ उठाकर हितग्राही बने और स्वागत करें हर रोशनी का।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: रिलेटिव स्कैम या इमरजेंसी स्कैम, यह एक बेहद खतरनाक स्कैम है, क्योंकि इसमें स्कैमर्स आपकी भावनाओं और परिवार के प्रति लगाव का फायदा उठाकर ठगी करते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार बनकर आपसे बात करते हैं। ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी रिश्तेदारों की और आपकी निजी जानकारी निकालते हैं और AI वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल कर आपके रिश्तेदार की हूबहू आवाज़

0: की नकल करते हैं। स्कैमर्स फ़ोन में कोई मेडिकल इमरजेंसी होने की बात कर या कोई पुलिस स्टेशन का नाम लेकर तुरंत पैसे डालने की बात आपको बात करता है और ठगी करने का प्रयास करता है। ऐसे ठग से सतर्क रहें। ऐसे कोई कॉल आता है तो आप तुरंत अपने रिश्तेदार के ओरिजिनल नंबर पर कॉल करें। सावधान रहें, जागरूक बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी थाने में भी आप जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन बातचीत का माध्यम होने के साथ ही बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल्स, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, मनोरंजन का माध्यम और व्यक्तिगत जानकारियों का भंडारण का केंद्र बन चुका है। ऐसे में यदि हमारा ये मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि पर्सनल डेटा के दुरुपयोग का खतरा भी बना रहता है। मोबाइल के गुम या चोरी होने पर कुछ बातें प्राथमिकता के तौर पर अपनाएं। सबसे पहले किसी अन्य मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट संचार साथी पोर्टल पर जाएं। इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। शिकायत जितनी जल्दी दर्ज होगी, मोबाइल को ट्रैक करने और डेटा को ब्लॉक करने में उतनी ही आसानी होगी। इसके साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में अपनी लिखित शिकायत यानी FIR जरूर दर्ज कराएं। याद रखें, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करते समय मोबाइल का IMEI नंबर देना अनिवार्य होता है। ये नंबर आपको अपने मोबाइल के बॉक्स या खरीदी बिल पर मिल जाएगा, इसलिए मोबाइल खरीदते समय उसका बिल और बॉक्स को हमेशा संभाल कर रखें या IMEI नंबर को अपनी डायरी में नोट करके रखें। श्रोताओं, संचार साथी ऐप वो सहायक वेब पोर्टल है जो मोबाइल से संबंधित हर समस्या का निराकरण करता है, तो इस ऐप को डाउनलोड करके अवश्य रखें और मोबाइल को सावधानीपूर्वक सतर्कता से हमेशा अपने साथ रखें और इसका उपयोग करें और बचें किसी भी तरह की चोरी या इसके गुमशुदा होने से।

0: रहे 8 बजे हैं। समाचार प्रभात अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार

0: 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्र

0: राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और अनुभा का नमस्कार।
0: नमस्कार अनुभा जी, मौसम बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और गर्मी के इस मौसम में हमारे सभी श्रोताओं को अब उस दिन का इंतजार है कि धरती की गोद में वर्षा की बूंदें कब पड़ेंगी। मगर हमें हमारे श्रोताओं के पत्रों का इंतजार हर हफ्ते रहता है और ये पत्र जब हमें प्राप्त होते हैं तब इसी तरह की अनुभूति होती है कि हमारी प्यास हमारे श्रोताओं के पत्रों से ही बुझ जाती है। तो बताइए, ये पहला पत्र आपके हाथ में पोस्टकार्ड है, ये किसका लिखा हुआ है?
1: दीपक जी, ये पहला पोस्टकार्ड है सिसदेवरी से रविशंकर चंद्राकर का। ये लिखते हैं, जब से आपके पत्र कार्यक्रम आधे घंटे का हुआ है तब से ढेर सारे श्रोताओं की समीक्षात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं। आपके पत्र प्रोग्राम सुनने पर पता चलता है कि रेडियो श्रोताओं का कितना विशाल परिवार है और हमारे श्रोताओं के विचार से ये कार्यक्रम बेहद आनंद प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम से ये भी पता चलता है कि हर श्रोता के लिए रेडियो में कार्यक्रम आते हैं और अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर वे गदगद हो जाते हैं। कुछ कार्यक्रम जैसे इनसे मिलिए और बुधवार को एक श्रोता से बातचीत ने श्रोताओं को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर भी प्रदान किया है, जिससे पता चलता है कि श्रोताओं के रेडियो के प्रति क्या विचार हैं जानने को भी मिलता है। शुक्रिया आपके पत्र कार्यक्रम का, शुक्रिया आकाशवाणी रायपुर का।
0: हमारे हजारों श्रोताओं के साथ आप भी एक श्रोता हैं जो वर्षों से हमें पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। तो हमारे ऐसे जितने भी श्रोता हैं जो अपनी समीक्षा हम तक लिखकर भेजते हैं, हमारे कार्यक्रमों को गौर से सुनते हैं, और आप सभी श्रोताओं के उत्साहवर्धन से ही हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और आपका साथ ही आपका स्नेह ही हमारे कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए हमें एक नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। तो इन सभी पत्रों का हर हफ्ते हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते रहेंगे। इस स्नेह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बेमेत तरह से सुरेश और पूर्णिमा सारथी लिखते हैं, 8 मई सोमवार को नमस्कार रायपुर कार्यक्रम को सुना जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगा। रीमा लागू जी जो फिल्मों में माँ का किरदार निभाती रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर अनेकों महत्वपूर्ण बातों ने हमें खुशी प्रदान की। संग्रहण के बारे में सुंदर विचार अच्छे लगे। तकनीक जितनी भी तेजी से आगे बढ़ रही है, साइबर ठगी के बारे में विस्तार से बताया गया जो कि ज्ञानवर्धक लगा। शीतल अटकड़े जी की महत्वपूर्ण जानकारी बटोर कर लाया ये प्रोग्राम, हमारे मन को छू गया। सफल प्रस्तुति के लिए पूरी यूनिट को तहे दिल से बधाई।
0: अनुवा जी नमस्कार, रायपुर का इंतजार हमारे श्रोताओं को प्रतिदिन होता है और हमारे प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक साथी हर रोज विभिन्न अलग अलग विषयों की जानकारी लेकर आते हैं, विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं और मधुर गीत जब सुनाते हैं तो वाकई हमारा हर दिन नवीनता से शुरू होता है और एक नई ताजगी के साथ नई उमंग और उत्साह भी हमारे जीवन से जुड़ जाता है। तो इस कार्यक्रम के प्रति आपके इस लगाव का स्वागत करते हुए पत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: अमरपुर पेंड्रा से सुरुचि देवी और रूही श्रीवास्तव लिखते हैं, 17 मई को प्रसारित देश की वाणी आकाशवाणी के तहत समीर शुक्ल जी से बातचीत की दीपक हटवार जी ने। इन्होंने अपने अनुभव को डुआ डुआ पानी गीत सुनाकर बताया, वाकई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे बोलना है, वाक्यों का हिसाब रखना पड़ता है। कई आकाशवाणी में इन्होंने अपने विचार उद्गार व्यक्त किए, वाकई ऐसे लोग रिटायर नहीं होते बल्कि उनकी प्रस्तुति हमेशा यादगार बनकर रह जाती है। आकाशवाणी को हार्दिक बधाई।
0: समीर शुक्ल जी का एक लंबा कार्यकाल आकाशवाणी रायपुर में रहा है अनुभा जी, और आकाशवाणी रायपुर को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार मिले हैं उनमें समीर शुक्ल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन पुरस्कारों की स्मृतियों के साथ इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन यात्रा के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा, जानकर खुशी हुई, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: सिर्री गातापार से धनेश्वरी और ओम प्रभा साहू लिखते हैं, 19 मई को सुबह 9:40 और रात 8:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसके कलाकार थे खुमान लाल साव और उनके साथी। ये लोक संगीत का कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसकी शानदार प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
0: हमारे अंचल के पुराने कलाकारों के संग्रहित गीतों का प्रसारण समय समय पर जब भी हम करते हैं तो उन्हें सुनकर हमारे श्रोता सुनहरे संगीत के सुरीले दौर की यादों में खो जाते हैं। ये दौर इन गीतों के साथ यूं ही हमें याद आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शीतला नगर से शिवचंद्राकर लिखते हैं, महान पुरुषों की जीवनी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। जीवन की सार्थकता इसी पर टिकी है। आत्मिक चिंतन पर केंद्रित 20 मई का चिंतन आत्मसात करने योग्य रहा। सुंदर आलेख हेतु शैल शर्मा जी और चिंतन के आलेख को पढ़ने हेतु दीपक हटवार जी, आप दोनों को हार्दिक बधाई।
0: जीवन के अनुभव और सार्थक बातों से युक्त प्रतिदिन का चिंतन हमें सदैव अच्छी बातों को ग्रहण कर आत्मसात कर उसे व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देता है। और ये चिंतन होता तो 5 मिनट का अनुभव
1: जी,
0: लेकिन इस चिंतन की बातें हमें बहुत कुछ करने प्रेरित करती हैं। आपने इसे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धवलपुर से धनंजय और गेंदलाल मिश्रा लिखते हैं, सुर सिंगार और आप मन के गीत कार्यक्रम हमारा पसंदीदा है। प्रिय लोक गीत दिल को छू जाते हैं। इनके प्रसारण हेतु आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद।
0: हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों से हमारे श्रोताओं का बहुत पुराना लगाव है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी गीतों के कार्यक्रम हो या हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हो, और आपके नामों से ही ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो जाता है। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: सिर्री गातापार से लावण्या और उपासना साहू लिखते हैं, 19 मई मंगलवार के रात 10:00 आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने को मिला। इस दिन के कार्यक्रम में 5 फिल्मों के एक से बढ़कर एक 5 गीत सुनने को मिले। सभी गीत बहुत ही कर्णप्रिय लगे। शानदार प्रस्तुति के लिए दीपा मेश्राम और आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत साधुवाद।
0: हमारी सांध्यकालीन सभा में भी बहुत से फरमाइशी कार्यक्रम हैं अनुभा जी, जिन्हें सुनकर हमारे श्रोताओं की निशा प्रारंभ होती है और उनकी थकान भी मिटती है। तो ऐसे ही मधुर गीतों से इन कार्यक्रमों को हम सजाते रहेंगे। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: और दीपक जी, अब बारी है ईमेल्स की
0: जी।
1: तो ये पहला मेल है खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे का। लिखते हैं, 25 मई को प्रसारित विज्ञान लोक में हमने रेणु माहेश्वरी जी से जैव विविधता विषय पर वार्ता सुनी, जो हमारे लिए बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही। इस वार्ता के माध्यम से हमें जैव विविधता क्या है, इनके विविध रूप और प्रकार, मानव जीवन में इनका महत्व तथा जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इन सभी संबंध में काफी विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिली, जो हम सभी के जीवन के लिए उपयोगी है। वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारे चारों ओर दिखाई देने वाला जीवन का रंग बिरंगा ताना बाना ही जैव विविधता है। मनुष्य जीवन और प्रकृति में संतुलन का गहरा और अटूट संबंध होता है। इसीलिए जैव विविधता को हमारी पृथ्वी की जीवन रक्षक प्रणाली माना जाता है। लेकिन हमारी मानवीय गतिविधियों के कारण आज जैव विविधता बहुत तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। अतः पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना और जन जागरूकता हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता के लिए रेणु माहेश्वरी जी सहित आकाशवाणी रायपुर को हार्दिक बधाई।
0: वसुंधरा की हरियाली को बरकरार रखने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैव विविधता का यथावत सुरक्षित बना रहना भी बहुत जरूरी है अनुभा जी। और इस वार्ता के माध्यम से जन जन के लिए यही संदेश था कि हम अपने आसपास के जीवों को, चाहे वो पौधों के रूप में, वृक्ष के रूप में मौजूद हों या फिर जीव जंतुओं के रूप में मौजूद हों, उन सब की सुरक्षा का भी ध्यान हमेशा रखें तो हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहेगा। इस पत्र

0: लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल लिखते हैं, 26 मई मंगलवार को प्रसारित समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां कार्यक्रम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत हमर संस्कृति हमर साहित्यकार श्रृंखला में वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी से महेंद्र साहू जी द्वारा की गई अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित बातचीत सुनने का सौभाग्य मिला। इस संवाद के माध्यम से वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी के साहित्यिक जीवन, सामाजिक योगदान, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षक जीवन और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के विविध पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साहित्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों, संघर्षों और अनुभवों को जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के महत्व, उसके संरक्षण संवर्धन की आवश्यकता और समाज में साहित्य की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में और भी मेल आए हैं। दीपक जी, गंडई पंडरिया से जागेश्वर और कचरीबाई देवांगन, मेघापारा चिल्फी से रामकुशल और संतोषी पटेल, धमतरी से रामचंद माखीजा और सविता माखीजा, और पोटिया कला दुर्ग से संजय और सुजाता साहू का।
0: मोर भुइयां कार्यक्रम में हर हफ्ते अलग अलग विधाओं का प्रसारण होता है। अनुभा जी, हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये एक ऐसा क्रम है जिसमें हमारे अंचल के साहित्यकारों को स्थान मिलता है, और वे साहित्यकार जो बहुत वरिष्ठ भी होते हैं और उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी लेखनी, उनकी कृतियाँ जो हैं वो आज जन जन तक हमारी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक सुरभि को बिखेर रही है, और उनके लेखन से जुड़े अनुभवों को जानकर हमारे श्रोताओं का भी ज्ञान काफी बढ़ा है, आपके पत्रों से पता चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाटापारा से बचकामल और मोतीलाल यादव लिखते हैं, हमें 27 मई का आपके पत्र कार्यक्रम विशेष तौर से पसंद आया क्योंकि उस दिन माह का अंतिम बुधवार था और अंतिम बुधवार को आकाशवाणी के किसी न किसी श्रोता को आपके पत्र कार्यक्रम में स्थान दिया जाता है। 27 मई को चरडोंगरी पिपरिया के श्रोता दुर्गाराम साहू जी को शामिल किया गया था। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों के बारे में उनकी बातें और विचार जानकर बेहद प्रसन्नता हुई। खूबसूरत पेशकश के लिए दीपक हटवार जी और आकाशवाणी रायपुर को हृदय से बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ के लिए बधाई दी है गंडई पंडरिया से शिवा और राज यादव ने।
0: अनुभा जी, हमारे श्रोताओं का जो धैर्य है ना, वो वाकई उच्चतम स्तर का धैर्य है, और सभी श्रोता बड़े धैर्य के साथ इस प्रतीक्षा में है कि उनकी बारी कब आएगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो भाई आपकी भी बारी जरूर आएगी। यूं ही आप धीरज बनाए रखें, और जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में अंतिम बुधवार को आ रहे हैं उनके विचार, उनके अनुभव भी आप अवश्य सुने। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: हस्ता नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू लिखते हैं, 28 मई को कार्यक्रम लोक संगीत सुनने को मिला जिसके कलाकार थे करमचंद कोसरिया और साथी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। शानदार प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बधाई।
0: लोक संगीत की सरिता वर्षों से प्रवाहित हो रही है जिसके निर्मल पावन जल से हमारे सभी श्रोता अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, और यही तृप्ति हमें संगीत के उच्चतम आनंद की अनुभूति कराती है और हमेशा कराती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर के सभी कार्यक्रमों को हम नियमित रूप से सुनते हैं और आकाशवाणी रायपुर के सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। हर वर्ग के लिए है कार्यक्रमों का खजाना, आता है हर सुबह शाम रोजाना। पास रहें या दूर, गांव में रहें या शहर, सुनते रहें आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम जरूर। आप सभी उद्घोषक उद्घोषिकाओं की मेहनत को हम सादर सलाम करते हैं। आप सब हमारे लिए सुंदर से कार्यक्रमों की सौगात देते हैं। आप सभी आकाशवाणी परिवार को सादर धन्यवाद, सादर साधुवाद।
0: अनुभा जी, देखिए इन्होंने अपने ईमेल में जिंगल की कुछ लाइनें लिखी हैं, ऐसा लग रहा है
1: जी,
0: ना?
1: जी।
0: तो भाई यूं ही आपकी जो पंक्तियां हैं ना, वो आकाशवाणी रायपुर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं, और हमें अब आपके समीक्षात्मक पत्रों का भी इंतजार रहेगा। इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और श्रद्धा निर्मलकर लिखते हैं, पर्यावरण या हमारे वातावरण का सीधा संबंध किससे है? व्यक्तिगत आरोग्य या साफ सफाई से वातावरण की शुद्धता के लिए क्या आवश्यक है? हरियाली और पेड़ पौधे और हरियाली साफ सफाई की जिम्मेदारी घरों में कौन ले आता है? घर की गृह लक्ष्मी यानी की महिलाएं। तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए बात करने का अधिकार घर की महिलाओं को है। सब मिलाकर ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश और पक्का हो गया। 27 मई को पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए सुनने को मिला, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे गया। कार्यक्रम समसामयिक सार्थक रहा। उम्दा प्रस्तुति के लिए समीर शुक्ल जी, सुमिता रॉय बर्मन जी, संजय पांडे जी और श्याम वर्मा जी को दिल से धन्यवाद।
0: अजी सुनिए का हालांकि ये पुनः प्रसारण था अनुभा जी, लेकिन इसमें जो संदेश था वो संदेश आज भी प्रासंगिक है और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल और मानवी पटेल लिखते हैं, हम सबकी माँ कहे जाने वाली धरती माँ ही है जो इस मानव जीवन को जीवनदायिनी बनाती है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि धरती माँ की रक्षा के लिए हम सब वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को संवार के रखें। तब हमारे पेट की भूख के लिए भोजन और पीने के लिए पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सकती है। 29 मई को सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए के अंतर्गत तरुण ठाकुर जी से रमा शंकर जी की बातचीत सुनने को मिली। कार्यक्रम बेहद ही रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद रहा। सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी रायपुर को सहृदय बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह और भाग्यश्री राजपूत का।
0: हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं अनुभा जी, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है और उनकी प्रेरणा से उनके अपने इलाके में बहुत से कार्य ऐसे किए गए हैं जिनके बारे में दूर दूर तक चर्चा की जाती है और लोगों को भी पौधारोपण की प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली बारिश में हमारे श्रोता भी अपने आसपास पौधारोपण कर अपनी वसुंधरा को और भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और मोरस जंघेल लिखते हैं, 30 मई के कार्यक्रम बातों बातों में ग्रीष्म लहर और वर्षा के पूर्वानुमान के बारे में बहुत सुंदर जानकारी सुनने को मिली। जानकारी दे रही थी डॉक्टर गायत्री वाणी, जिनके साथ बात कर रहे थे विकल्प रंजन शुक्ल जी। कार्यक्रम में मौसम से जुड़ी बहुत सी जानकारी दी गई, जिसमें ग्रीष्म लहर, मानसून, अल नीनो, हर वर्ष के पूर्वानुमान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सुनने को मिली। अच्छी प्रस्तुति के लिए डॉक्टर गायत्री वाणी जी और विकल्प रंजन शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में और मेल हैं, ये हैं बठेना पाटन से बलकरण प्रहलाद वर्मा, रायपुर से वैभव चिराग जैन और नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद और चंद्रकांत वर्मा।
0: समसामयिक विषयों पर केंद्रित बातों बातों में कार्यक्रम में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाती है अनुभा जी, और इससे हमारे श्रोताओं को भी पता चलता है कि आज देश काल और दुनिया में क्या चल रहा है
1: जी।
0: पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रतन जैन कोकिला जैन रायपुर से लिखते हैं, कार्यक्रम नवा बिहान 29 मई को सुना। विषय था आम के फल की पौष्टिकता। पहुना थे डॉक्टर शैलेश राजन, पूर्व वैज्ञानिक। भेंट करता थे नेमीचंद साहू जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आम हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। आम बच्चों की पाचन प्रणाली के लिए भी गुणकारी है। एक उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी परिवार को साधुवाद।
0: देखिए आम के बारे में भी कितनी अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई थी, और ऐसे बहुत से फल हैं हमारे आसपास अनुभा जी, जिनका सेवन कर हम अपने शरीर में विटामिन की बहुत सारी पूर्ति प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा लिखते हैं, 30 मई को डॉक्टर की सलाह के अंतर्गत प्रसारित भेंटवार्ता विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के कारण, लक्षण और उपाय हमें अत्यधिक मनमोहक और प्रेरणादायक लगे। डॉक्टर रश्मि राय जी ने तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को समझाया। नशाखोरी और मद्य सेवन की आदत परिवार को अधिक निर्धन बना देती है, स्वास्थ्य गिरा देती है और चरित्रगत दुर्बलताएं भी उत्पन्न कर देती हैं, जो कि गंभीर अपराधों की ओर भी ले जाती है। अतः मादक द्रव्यों से हमेशा दूर रहें। भेंटकर्ता रमाशंकर जी ने डॉक्टर रश्मि रॉय जी से मनमोहक अंदाज में सवाल किए जो हमारी सभी जिज्ञासा को शांत करने में सफल रहे। आप दोनों को हृदयस्पर्शी भेंटवार्ता की सफल प्रस्तुति हेतु हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है धरसीवा से छेदूलाल और सीता यादव ने, सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम मानवी पटेल, खैरागढ़ राज लालपुर से नेहा और येशु भीमटे, अड़ार नानघाट से माखन और चांदनी वर्मा और रायपुर से भारती और वरुण राठौड़ ने।
0: 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस था और इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यही संदेश दिया गया, कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो उसे तुरंत ही छोड़ दें और एक अच्छे स्वास्थ्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता ऐसे संदेशों को आत्मसात कर व्यवहारिक रूप से भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और योगेश्वर साहू लिखते हैं, 30 मई को गाथा झरोखे से भाग एक के कुंवर रसालू राजा संग गाथा सुनिन तेखर प्रस्तुतकर्ता मोहन सी रमानी के साथ आकाशवाणी ला बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित और शकुन जंघेल ने।
0: गाथा झरोखे से इस कार्यक्रम में लोक गाथाओं पर केंद्रित प्रस्तुतियां प्रसारित होती हैं अनुभा जी, और हमारे श्रोता इसे बहुत गौर से सुन भी रहे हैं। पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन लिखते हैं, देश की वाणी आकाशवाणी में 31 मई को सुबह सुबह आकाशवाणी रायपुर के पूर्व उप निदेशक श्री लखनलाल भौर्य जी ने बड़ी ही सुंदर विस्तार पूर्वक अपने जीवन काल से संबंधित बातें कार्यक्रम के माध्यम से हम सब श्रोताओं तक साझा किए। आकाशवाणी अंबिकापुर से आकाशवाणी बिलासपुर रायपुर जैसे बड़े बड़े आकाशवाणी में किस तरह वे अपनी सेवाएं दिया करते थे वो सुनने को मिला, जो कि वाकई काबिले तारीफ रहा। ऐसी सुंदर बेहतरीन लाजवाब मनमोहक प्रस्तुति के लिए भाई दीपक हटवार जी और श्री लखनलाल भौर्य जी के साथ साथ समस्त आकाशवाणी रायपुर परिवार को दिल से स्नेह भरा साधुवाद। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है ग्राम कुटेना पांडुका से झामेश्वरी और टीकम ने, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक और के आर साहू ने, पिपरिया से दीपा रिमझिम गुप्ता और तेंदू भाटा मगरलोड से उमेद कुमार और देविका निषाद ने।
0: देश की वाणी आकाशवाणी की ये श्रृंखला अपना एक वर्ष पूर्ण कर रही है अनुभा जी
1: जी,
0: और अब ये कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन इस पूरे ही कार्यक्रम में हर रविवार आकाशवाणी से जुड़े ऐसे मूर्धन्य वरिष्ठ जनों से बातचीत कर हमें भी बहुत अच्छा लगा अनुभव जी। तो कुल मिलाकर देश की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से हमारे वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों के अनुभव और उनकी वाणी जन जन तक पहुंची, ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह लिखते हैं, 31 मई को कानून की बात के तहत घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल वकील मयंक सिंह ठाकुर जी से भेंटवार्ता के माध्यम से कानून संबंधी कानून के विषय पे काफी महत्वपूर्ण रोचक फायदेमंद जानकारी बताई गई, बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, सादर धन्यवाद।
0: कानून की बात का हर अंक समाज से जुड़े अलग अलग विषयों की जानकारी देता है अनुभा जी, ताकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो उसके लिए रास्ता क्या हो सकता है। तो हम सभी अपना ज्ञान इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाते रहें। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: गाँव परसा टोला से ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया लिखते हैं, 1 जून के कार्यक्रम कथायन में कहानी गुजरा हुआ कल सुनी, कहानीकार थी चंद्रिका चौधरी जी। ये कहानी कोरोना काल की है जिसे लोग याद करके आज भी सहम जाते हैं। अच्छी कहानी के लिए चंद्रिका चौधरी जी के साथ आकाशवाणी रायपुर को दिल से शुक्रिया।
0: वाकई ऐसी मार्मिक कहानियां हमारे कानों को नहीं बल्कि हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं, और कथायन में हम आपको ऐसी कहानियां आगे भी सुनवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 1 जून को लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम लोक सुर के अंतर्गत आकाशवाणी रायपुर से पंडवानी पर केंद्रित ज्ञानवर्धक रोचक प्रस्तुति प्रसारित की गई। कार्यक्रम में पंडवानी कला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके सांस्कृतिक महत्व और प्रमुख कलाकारों के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रस्तुति के दौरान पंडवानी के प्रमुख कलाकारों और उनकी विशिष्ट गायन शैलियों की प्रभावशाली जानकारी दी गई। विशेष रूप से पंडवानी की दो प्रमुख शाखाओं कापालिक और वेदमती का वर्णन श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा। इन दोनों शैलियों की विशेषताओं, प्रस्तुति के स्वरूप और उनके कलात्मक पक्ष को सरल और सहज भाषा में समझाया गया। पंडवानी का नाम सुनते ही महाभारत की वीर गाथाओं, शौर्य साहस और लोक जीवन की सजीव झलक सामने आ जाती है। ये छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट लोक कला है जिसने देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। कार्यक्रम ने इस लोक विधा की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से श्रोताओं तक पहुँचाया। कार्यक्रम की वाचिका प्रीति यादव, संयोजक पंकज मेश्राम, प्रस्तुतकर्ता वीरभान साहू सहित आकाशवाणी रायपुर परिवार को हार्दिक साधुवाद।
0: छत्तीसगढ़ के लोक सुर का ये अंक पंडवानी पर केंद्रित था अनुभा जी। और हमारे प्रदेश के लोक संगीत के खजाने में लोक गाथाओं का भी अमूल्य योगदान है और जिनमें से पंडवानी को देश और दुनिया के लोग जानते हैं, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम हमारे अंचल के कई कलाकारों ने रोशन किया है। तो ये जानकारी आप सभी के ज्ञान में वृद्धि कर रही है, जानकर हमें खुशी हुई। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: ग्राम मेचका सोंढूर नगरी से भूपेंद्र नाग और पूर्णिमा नाग लिखते हैं, 25 मई दिन सोमवार के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम लाधर के आई रही समर मयारू दीदी तारकेश्वरी आसुदानी ह संगवारी मनले फोन मा बात करत उकर हाल चाल जान के उखर पसंद के बड़ सुघर सुघर गीत सुनाइस जेला सुन के बड़ मजाइस। ए दिन के सुघर और मनोरंजक प्रस्तुति बर तारकेश्वरी दीदी ला हृदय ले बधाई और धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार योगेश साहू ने, गेंदा टोला से बीरेंद्र कुमार और गजेंद्र गुप्ता ने। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 25 मई को प्रसारित पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर में थानेन्द्र साहू जी ने श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल कर हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनवाए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। कुई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 28 मई के ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनवाए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए दीपा और आकाशवाणी परिवार को बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है टेकापार बालोद से चिंता राम और रवि प्रकाश यादव का। ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी और राजकुमारी मरावी लिखते हैं, 30 मई के आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल पत्र को अधिक से अधिक शामिल करके शानदार गीत सुनवाए गए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए सीमा शर्मा और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है समडिल नवापारा से मुकेश और दीपक गुप्ता ने। ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन और उर्वशी देवांगन लिखते हैं, फोन इन फरमाइश प्रस्तुतकर्ता प्रवीणा त्रिपाठी जी, श्रोताओं से बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। इस बार पुराने श्रोताओं के फोन लगे, खासकर सभी की पसंद पुराने गीतों की थी, बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार योगेश साहू ने, लोरमी ग्राम करुहानार से गोमती और काजल रजक ने, गणेशधाम परसुली से जितेंद्र दास मिलवदास मानिकपुरी, तेंदुभाटा मगरलोड से पोषण कुमार शिवानी शाद, बन बघेरा से योगेश सारवा और गंडई पंडरिया से रविन्द्र रौनक और खुशी सेन ने। हजदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू लिखते हैं, 1 जून को सुबह हमारा पसंदीदा कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम सुनने को मिला। श्रोताओं की पसंद के गीत सुनवाए गए, हमें बहुत अच्छा लगा। शानदार प्रस्तुति के लिए अनुभा अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई।
0: अनुभा जी, हमारे आधे घंटे के आपके पत्र कार्यक्रम के लिए देखिए शुरू से लेकर अब तक कितने सारे पत्र मिले हैं जी। और फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में देखिए इतने सारे पत्र आपने लगातार पढ़े
1: जी हाँ।
0: तो भाई इन सभी पत्रों के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपका ये स्नेह, आपका ये उत्साहवर्धन और आपका ये संबल ही हमारे फरमाइशी कार्यक्रम के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को नई ताकत और नई ऊर्जा देता है। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलने से पहले नोट करें ईमेल आईडी RAIAPKEPATRA1@gmail.com, पोस्टकार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 492001। तो आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अनुमति दीजिए दीपक
1: और अनुभा को। नमस्कार।

आपके पत्र, श्रोता पत्रों पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। इस क्रम में आज सुनिए गांधी जी के परम स्नेही जोसेफ डोक के बारे में गांधी जी के विचारों का दूसरा भाग।
1: सभी लोग तो उदार दिल के होते नहीं हैं, उन लोगों के दिलों में भी भारतीयों के खिलाफ कुछ भाव तो थे ही, पर डोक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे परिचय के आरंभ ही में एक दिन मैंने इस नाजुक विषय पर चर्चा छेड़ी थी, उनका उत्तर यहां लिख देने के योग्य है। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, ईसा के धर्म को आपने क्या समझ रखा है? मैं उस पुरुष का अनुयायी हूं जो अपने धर्म के लिए फांसी पर लटक गया और जिसका प्रेम विश्वव्यापी था। जिन गोरों के मुझे छोड़ देने का आपको डर है, उनकी आंखों में ईसा के अनुयायी की हैसियत में जरा भी मैं शोभा पाना चाहूं तो मुझे जाहिरी तौर से अवश्य ही इस युद्ध में भाग लेना चाहिए, और इसके फलस्वरूप यदि वह मेरा त्याग भी कर दें तो मुझे इसमें जरा भी बुरा न मानना चाहिए। इसमें शक नहीं कि मेरी आजीविका का आधार उन पर है, पर आप ये कदापि न समझ बैठें कि आजीविका के लिए मैंने उनसे यह संबंध किया है और वह ही मेरी रोजी देने वाला है। मेरी रोजी का देने वाला तो परमात्मा है, ये हैं केवल निमित्त मात्र। मेरा उनका संबंध होते समय हमारा उनका ये ठहराव हो चुका है कि मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप न करेगा। इसलिए आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें, मैं भारतीयों पर एहसान करने के लिए इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। मैं तो इसे अपना धर्म समझकर ही इसमें भाग ले रहा हूँ, पर असल बात यह है कि मैंने हमारे गिरजा के डीन के साथ बातचीत करके भी इस बात का खुलासा कर लिया है। मैंने उन्हें ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरा भारतीयों से संबंध रखना आपको पसंद ना हो तो आप खुशी से मुझे रुख्सत दे सकते हैं और दूसरा पादरी तलाश कर सकते हैं, पर उन्होंने इस विषय में मुझे बिल्कुल निश्चिंत कर दिया है, बल्कि और उत्साहित किया है। आपको ये कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी गोरे आपकी तरफ एक सी तिरस्कार की नज़रों से ही देखते हैं। आप नहीं जानते कि अप्रत्यक्ष रूप से वे आपके विषय में कितना सद्भाव रखते हैं। इसे तो मैं ही जान सकता हूं और आपको भी ये कबूल करना होगा। इतनी स्पष्ट बातचीत होने पर फिर मैंने नाजुक विषय पर कभी बातचीत नहीं छेड़ी। इसके कुछ साल बाद डोक रोडेशिया में अपने धर्म की सेवा करते हुए स्वर्गवासी हो गए। तब हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर उनके पंथ वालों ने अपने गिरिजा घर में एक सभा निमंत्रित की थी। उसमें काछलिया तथा अन्य भारतीयों के साथ साथ मुझे भी बुलाया गया था। मुझे वहां भाषण देना पड़ा था। अच्छी तरह चलने फिरने लायक होने में मुझे करीब 10-11 दिन लगे होंगे। ऐसी स्थिति होते ही मैंने इस प्रेमी कुटुंब से विदा मांगी। वह वियोग हम दोनों के लिए बड़ा दुखदायी था।

गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे गांधी जी के परम स्नेही जोसेफ डोक के संबंध में गांधी जी के विचार। श्रोताओं, अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार।

गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर के थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उपरीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर होगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: दो बूंद पानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में। गीत कैफी आजमी का था और संगीत था जयदेव का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था सलील चौधरी का।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: महबूबा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था राहुल देव बर्मन का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म पड़ोसन से।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए निदा फाजली का लिखा गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ, संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है हर जाई।
1: जिसको पंचम प्यार से बोलते थे, वो एक ऐसा स्टाइल लेके आए जिसमें

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा। दिन में 10:30 से आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं राजशेखर बोस। इनकी आवाज़ में पहले सुनिए दानिश की लिखी ये गज़ल।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: राजशेखर बोस की आवाज में लीजिए अब सुनिए बशीर बद्र की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजशेखर बोस को। इन्हीं के स्वर में कुछ और रचनाएं आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में

सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बालश्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित विशेष रेस्क्यू टीम द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि बच्चों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष भर यह कार्य जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रीड़ा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनियाभर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंदेनार साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। ये सभी लोग मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुपेला निवासी एक व्यक्ति ने अधिक मुनाफे का लालच देकर कई लोगों से रकम निवेश कराई और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के लिए कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशन से गुड़ियारी की तरफ अंडरब्रिज पर सड़क यातायात को बंद किया जाएगा। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित झींगा बहाल क्षेत्र में मंगलवार को 2 तेज रफ्तार वाहनों के आमने सामने से हुई टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन के चालक को बचा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग गौड़ सारंग। इसी कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अलहिया बिलावल में आलाप और दो गतें। दोनों ही गतें तीन ताल में निपत हैं। आपके साथ तबले पर संगतकार हैं अनूप कुमार दास।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अलहिया बिलावल में दो गते। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत सुनिए सोनू निगम और संजीवनी की आवाज़ों में। गीत इरशाद कामिल का, संगीत संदेश शांडिल्य का है और फिल्म का नाम है सोचाना था।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ों में गुलजार का लिखा गीत संगीत ए आर रहमान का है और फिल्म है दिल से

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे,
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए सातवां आसमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। शब्द रचना सूरज सनीम की है और संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला और साथियों की आवाजों में सुनिए जयदीप साहनी का लिखा गीत। संगीत विशाल शेखर का है और फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी और इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर होगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद कार्यक्रम के अंत में सुनिए अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में गोल्डी बहल का लिखा गीत। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और फिल्म है बस इतना सा ख्वाब है।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजे हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय

0: योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के निकेशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं की पसंद पर आधारित छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।

कार्यक्रमलाई शुरू करथन अउ देखथन कि पहली गीत मन गीत पर हमर कोन कोन श्रोता मन के फरमाइश हमला मिले हे। आप मन हो भाटापारा ले दान सिंह रावत, पद्मिनी शुभम सौरभ रावत, गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज, चिंटू तरुण चोवा यादव, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस दास, सतीश ऋचा गायत्री वैष्णव, देवरी भाटापारा ले हैं मुकेश कुमार रजक, युवान हाव्या तन्नू रजक, बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, ग्राम सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी औ पूनम चंद्रवंशी, परसुली जिला बालोद ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास जय औ देवेश दास, लोरमी चचेड़ी ले हैं संतोषी कोलाम, संजय संध्या शिवम कोलाम, कोरासी ले

0: पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता, दीपिका साहू, खमार मुड़ाले, सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी, दत्रेंगी भाटापाराले, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, अवनोखेलाल वर्मा, भूरसुदाले, भगवानी सेन, संतोषी, चिराग, गजेंद्र सेन, फुलजर घटारानीले, योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता साहू, बेवरा संबलपुरले, शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम, तुषार, वंशिका वर्मा, धमतरी लेहे, रामचंद माखीजा, काफिरबाई, सविता, स्वाति माखीजा, ग्राम भलेसर, महासमुंदले, बलराम सेन, इंदु सेन, अउच्छगन सिन्हा, आप सब सुनना चाहत हो मिथिलेश साहू और साथी मन के गाए ये गीत।
1: छत्तीसगढ़ के महिमा सुन लो, छत्तीसगढ़ के

मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे के गाए गीत ला सुने पर हमला फरमाइश पठोइन है। ग्राम बरेष्टोला जिला राजनांदगांव ले पुराणिक राम चौरे, पुष्पा रानी, दीप्ति देवान, श्यामनी चौरे, लोरमी तिलकपुर ले चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती मयंक मरावी, पुरानी भिलाई तीन ले हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, जिशान अहमद, शाहनवाज, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, भाटापारा ले सोहन जोशी, अर्चना जोशी, आनंद राठौर और गिरजा राठौर, बोरसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु साहू, ग्राम गुढ़ाराज ले मनोज साहू, चित्रेखा देवेंद्र लवीना उचंचल साहू, संत कंवरवाड भाटापारा ले राम गुलाम सेन, केयांश नूतन सेन, बैलाडीला ले शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार और युवती देवदास, ग्राम गनियारी रसमड़ा दुर्ग ले हैं तरुण कुमार, अनिल कुमार, कुमारी लीलेश्वरी, बलौदा ले दिलहरण गौतम, अंजलि आनंद, समृद्धि पटेल, यवतमाल विदर्भ ले संतोष खड़से, विनोद खड़से, रसेड़ा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार और संध्या, ग्राम पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन पांडे, अवधमधा ग्राम सुखरी कला के हमर श्रोता है अमित जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल।

शीतला पारा केसरा पाटन लेहे बेदुराम सिन्हा रामेश्वरी देवी टिकेन्द्र कुमार तन्मय औबेदिका सिन्हा आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल अनिल कुमार अजित कुमार आयुष नंदनी जंघेल भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर नेपानगर ले सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि शाह दतरिंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा सूर्यवाड़ी औरंगाबाद ले प्रकाश सुषमा सोहम बोरगांव पलारी रोहासी ले मुकेश नंदनी मनीष मयंक जानकी साहू ग्राम बाघामुड़ा कोमाखान ले प्रज्ञानंद प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी दिवांगन बिलासपुर ले हैं गोविंदा चंद्राकर आशा चंद्राकर शीतलानगर दुर्गले शिव व भगवान चंद्राकर रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा औपोटिया कला दुर्ग ले संजय सुजाता शशांक औ सीमा साहू आप सब सुनना चाहत हो पंचरा मिर्झा और कुलवंतीन बाई के गाये ये गीतला।

कार्यक्रम के अगला गीतला सुने पर हमला ईमेल भेजिन हैं। लोरमी ग्राम चचेड़ीले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, रसेड़ा लेहे मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, औडिकेश साहू, पीपरलोड सरगांवले दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, सौंगा मगरलोडले फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी चंदन, ग्राम भानपुरी मुसरालेहे आत्माराम यादव, सुखदेव होमेश्वर, मनेश्वर लाक्षी, अवतुल सी यादव, ग्राम गेंदाटोला जिला राजनांदगांव ले बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता, गजेंद्र गुप्ता, हारमो भोरमदेव ले जीवनलाल साहू, राजबाई लोकनाथ, अवेदिका साहू, रोहासी ले डगेसर साहू, घनश्याम गौरव, नूतन साहू, आवरा डबरी ले श्यामलाल मोंगरा, केसरी प्रीति, अवसंगीता साहू, ग्राम बठेना पाटन दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, सुजान मुरली वर्मा, ग्राम देहान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हरिओम साहू, रेवाराम रानू, सरस्वती साहू, हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, औ पलारी ले हैं नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, लखनलाल, पूनाराम और कृष्णा देवांगन। तो लेवो सुनाओ अपन पसंद माँ पवन चंद्राकर और साथी मन के गाए ये गीत।

पीताम्बर यादव अउ कमला देवदास के गाए गीत ला सुने पर फरमाइश हमर ये श्रोता मन के हे। चिरमिरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह अउ राम सहोदर, कोई ग्राम भंगीटोला ले ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई फिरत राम, मालती धुर्वे, ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान ले हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी, राहुल मरावी, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश अउ राहुल साहू, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, ग्राम पहारा अहिवारा ले पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार, चित्रेखा शुभम, सेजल साहू, पलारी ले प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा, नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद, चंद्रकांत, शारदा, जीत वर्मा, आमा खोड़ा रेंगाखार ले हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह दक्षप्रिया, गीत सरगम नेताम, लोहारी डीले अशोक कुमार, लीलेश्वरी खुशांत अउ निशांत साहू।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: प्रकाश देवांगन और उमाया खापरडे के गाए गीतला सुने पर हमला फरमाइश भेजी हैं। बिलाईगढ़ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन, गांव परसा टोला ले हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारणी मसिया, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्रीले चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम औशिखा शेफाली, ग्राम बंबूडी बावन केराले डिगेश महिलांग, रमाकांत चंद्रकांत महिलांग, ददरेंगीले विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना लक्ष्मीणा यदु, गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर ले हैं महेश कुमार निषाद, रंभारानी निखिल कुमार, नैतिक कुमार निषाद, धरसिंहवाले छेदुलाल यादव, सीता अर्चना, अरुणा अनुराधा यादव, बुड़गहन ले हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति, भानबेड़ा मुंगवाल ले भारतराम पटोडी, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पडोटी, औ बन बघेरा ले योगेश सारवा, आशा नीरज नीलेश और अंजलि सारवा।

कार्यक्रम के अगला गीत ला सुने बर फरमाइश हमर ये श्रोता मन की है। गुजरात गांधीग्राम ले प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, भिलाई नगर ले हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, दतरेंगी भाटापारा ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी औ पूजा तामूरिया, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ज्योति, रेयांश ठाकुर, ग्राम धरदेई सरगांव ले चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार पटवा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र ले हैं अभिजीत गौहाणकर, सरिता सिद्धांत प्रिंस औ एकांश गौहाणकर, ग्राम बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकम राम साहू, हेमलता योगेश्वर साहू, ग्राम जैसा कर्रा चारामा ले असाड़ू राम निषाद, खिलावन और ऋषभ निषाद, हटौद बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, और संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अनुराग, गजेश्वरी और अभिषेक यादव। आप सब सुनना चाहत हो राजकुमार मरकाम और भगवती मरावी के गाए ये गीत ला।

पीलूराम गंधर्व अऊ गीता विश्वकर्मा के गाए गीत ला सुने बर फरमाइश आप सब भेजे हो लक्ष्मीपुर सूरजपुर ले तीजन सिंह मरावी देवीलाल मरावी ग्राम पंचायत बोंथला उदयपुर सरगुजा ले हैं जीवधन सिंह पैकरा धुरनी अऊ करिश्मा पैकरा सिंगारपुर पैलीमेटा ले चिंताराम धुर्वे कामीन चंद्रध्वज शानु धुर्वे ग्राम सिवनी खुर्द रेंगाखार ले मनशाराम पटेल बुधियाबाई भानुप्रताप अऊ पायल पटेल पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर ग्राम मेचका सोंढूर ले हैं भूपेंद्र नाग पूर्णिमा लिखिल अऊ तरुणदीप नाग चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू अजय कुमार किशन कुमारी इंद्राणी माया साहू नेहरूवाड़ भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू भानबेड़ा बुंगवाल ले रूपनारायण हुपेंडी कमला चिमरोबाई पवित्रा लेवई ले गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी भागवत वर्मा मेघापारा सहसपुर ले हैं छोटकू साहू मोहित लोकेश अऊ मनोज कुमार साहू आप सब सुनना चाहत हो पीलूराम गंधर्व अऊ गीता विश्वकर्मा के गाए ये गीत।

कार्यक्रम के अगला गीत ला गावत हैं लता खापड़े और नारायण गिरी और ये गीत ला सुने पर फरमाइश आप सब की है। वडिंग खेड़ा पंजाब ले मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा खल्लारी भीम खोज ले जीएल साहू सरोज छोटी पिंकी साहू लाखा टोला बिडोरा ले हैं मनु यादव दुर्गेश गोपीचंद रुक्मणी यादव सिघनपुरी जंगल ले तुलाराम यदु कान्हा यदु रिंगनी ले करुणा जानवी शर्मा डोंडी लोहारा ले हैं देवशंकर डोम और प्रज्ञा डोमिन मथुरा ले महेंद्र आशु नरेंद्र जाटव भिलाई ले बेगम अनुश्री प्रदीप प्रभा प्रमिला प्रदीप कापसहेड़ा छोटी बलिया ले इमरान अवजूही परी अंसारी ग्राम बेवरा संबलपुर ले शिवदयाल अवनरोत्तम वर्मा और सदर बाजार मुंगेली ले हैं रेशमा देवांगन उषा सोनम और आदिबा देवांगन।

यही गीत संग अब होवत हे हमर जाए के बेरा। फिर जाए के पहली आप मन ला बता दन आज के कार्यक्रम में गीत ला जोड़े रहिन बीर भान साहू। तो अब देवो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला विदा। जय जोहार।

0: ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज रायपुर और दुर्ग में छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने आज तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास और आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई की टीम ध्रुव के निवास पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की दो टीमें आज सुबह से जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आर्तिक वासनिक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ता बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी रायपुर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र

0: कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13,00,000 वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
1: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
1: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
0: जी।
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
1: जी।
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है

0: दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरा माँ,
10: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
6: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
10: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरा माँ,
10: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
10: क्या?
6: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
10: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
11: हाँ गौरा माँ,
12: हाँ गौरा माँ,
10: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
13: बिल्कुल,
10: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
11: हाँ, हाँ, हाँ, सब तैयार
13: हैं।
11: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
10: ये है जंगल के उपकार,
1: मिट्टी पानी और बयान,
10: मिट्टी पानी और बयान,
1: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
10: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। करनी चाहिए तुझे।
12: आगे बढ़ो।
13: अरे कहाँ से?
12: दो मिनट की बात तो मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। उठो शुरू।
13: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
10: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
14: नहीं लगाने देंगे
10: बहनों। आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
11: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
12: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
12: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
10: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडोप, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रोशन भारती। सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रोशन भारती। सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति।

दिल गया तुमने लिया, हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। लीजिए सुनिए रोशन भारती की आवाज में ये नज़्म।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे रोशन भारती। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा, अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक

0: स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डी के शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। समय है चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत का पहला गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है तलाश।

चोर मचाए शोर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

0: Akashwani at 90.
1: आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म मोम की गुड़िया का ये गीत।
2: शील शील कहाँ खोई हुई हो?
3: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
2: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
3: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखे, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार।

अंत में सुनते शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2 बजे भी सुन सकते हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में पहले हम आपको दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर और इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर आप सुनेंगे नाटक सुजाता। ये नाटक डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की कहानी उजली रेखाएं भी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं श्री चरणजीत और निर्देशक होंगे श्री सुदर्शन कुमार। प्रसारण समय अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे शाम 5:00। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में चर्चा होगी विश्व साइकिल दिवस पर। साथ ही क्रम होगा पत्र मेला और यादें। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे सविता दुबे और साथी। और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे राजशेखर बोस।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में सुनिएगा चिट्ठी मिले पत्रोत्तर और ए महीना के बागवानी कार्य। आज की सलाह में सुनिएगा राहेर यानी अरहर की उन्नत उत्पादन तकनीक, इस विषय पर आशीष गौरव शुक्ला विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जिला राजनांदगांव की सलाह। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी। रात 9:25 पर सुनेगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम मध्यम वर्ग कल्याण। चित्रपट संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8:05 पर और रात 9:15 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए नाटक
1: सुजाता। आज प्रस्तुत है डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस की कहानी उजली रेखाएं भी का ये रेडियो नाटक रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री चिरंजीत। तो सुनिए नाटक सुजाता।

0: मैडम
1: क्या है राम सिंह?
2: आपको डायरेक्टर साहब ने बुलाया है। अगर कोई काम न हो तो मैं घर जाऊं?
1: हाँ हाँ जाओ।
3: रात के 7:45 बज गए और इस ऑफिस का काम अभी भी है। सर आपने मुझे बुलाया?
4: काम खत्म हो गया?
3: जी नहीं अभी बाकी है।
4: ओ चलो छोड़ो कल कर लेना। आज आपको काफी देर हो गई है। चलिए मेरे साथ
3: जी?
4: मैं अपनी कार में आपको आपके घर छोड़
3: दूंगा। थैंक यू सर। मैं तो रोज बस में जाती हूँ। ऑफिस के सामने YWCA का बस स्टैंड है ना, वहाँ से मुझे सीधे घर तक की बस में।
4: अरे सुजाता जी दिसंबर की सर्दी की रात में आप कहाँ बसों में धक्के खाती फिरेंगी। चलिए मेरे साथ
3: जी।
4: सुजाता तुम इतनी सुंदर हो
3: कि आपको शायद मालूम नहीं कि मैं एक 14 साल की लड़की की माँ हूँ। मेरी उम्र 35 बरस की है।
4: लेकिन सुजाता तुम 25 से अधिक की नहीं लगती। ये सुंदर सुडौल बदन, ये
3: क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे।
4: तरक्की दूंगा अगर तू
3: ऐश करेगी, वरना भी शोर मचा के मैं कहती हूँ छोड़िए।
4: ये बात मान
3: दीजिए, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, लाज है इस नौकरी पर।

0: गाड़ी की, मरने का इरादा है, देख के नहीं चला जाता। अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो
1: आप बाल बाल बची हैं, आप आपके कहीं चोट वोट
2: नहीं? नहीं,
1: आइए आइए आइए मैडम, मेरे साथ आइए,
2: क्यों बची मैं? मुझे मर जाना चाहिए था।
1: नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं।
2: राम सिंह,
1: नहीं नहीं, आपको अपनी बेटी के लिए जीना है, उसे अभी और पढ़ाना है, उसकी शादी करनी है।
2: ये बेटी ही मेरे लिए जी का जंजाल हो गई, वरना मैं तो 14 साल पहले ही उनकी मौत पर आत्महत्या कर देती। लेकिन इस प्रीति के कारण और आज आज वही मेरी बेटी।
1: क्या हुआ उसे?
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं। राम सिंह, तुम जाओ अपने घर, काफी देर हो गई है।
1: नहीं नहीं मैडम ना, मैं आपको रात के समय सुनसान जगह में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, बस में चढ़ा के ही जाऊंगा।
2: राम सिंह, तुम्हें मेरी इतनी चिंता?
1: मैडम, मैंने आपको कभी बताया नहीं कि आपके स्वर्गीय पति देवेश बाबू के मुझ पर कितने एहसान हैं। मुझे इस मेहता एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्हीं की सिफारिश से चपरासी की नौकरी मिली थी। बाद में मेरी लड़की की शादी पर भी उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी, और उनसे जब आप की शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे इनाम भी दिया था।
2: अरे, ये आज इस YWCA में रंग बिरंगी बल्ब क्यों जगमगा रहे हैं? क्रिसमस का त्योहार तो बीत गया।
1: मैडम, 2 दिन बाद नए साल का त्योहार भी तो है ना।
2: हाँ, आज से 15 साल पहले यही फ्लावर शो में देवेश से मेरी पहली भेंट हुई थी। फूलों की प्रदर्शनी देखने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत लोग आए थे।
3: सुजाता, जरा देख तू उस रूमियों को, खड़ा तो है गुलदाउदी के गमलों के पास, लेकिन नजरें तुझ पर टिकी है।
4: तो अभी शिकार करती हूँ।
3: हाँ, कर कर।
4: जरा इस फूल को देखिए, कितना खूबसूरत है, सफेद बर्फ की तरह। और इधर इस फूल को देखिए ना, कितना प्यारा है, गजब का खूबसूरत।
5: आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं
4: जी।
5: आई एम सॉरी मिस, मेरा मतलब है, मतलब ये कि मुझे मुझे वाकई ये फूल बहुत पसंद है। जी हाँ, इन सब गमलों के फूल।
4: सब गमलों के फूल?
5: हाँ,
4: ये तो 50 के करीब पौधे होंगे और इनकी कीमत लगभग 250 रुपए होगी।
5: मैं इनका पेमेंट अभी कह देता हूँ, गमले लेने कल आ जाऊंगा।
4: Thank you very much.
5: It's all right. It's all right.
3: Sujata, ये साइन बोर्ड देख।
4: हाँ, मेहता एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी,
3: काफी बड़ी फर्म है। चल, बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने का श्री गिनर यहीं से करें। चल।
4: अरे पद्मा, इस केबिन के अंदर जाने से पहले शीशे से तो देख लिए कि कोई अंदर बैठा है या नहीं।
3: देखती हूँ। वो पकड़ा।
4: किसे पकड़ा?
3: तेरी खरीदार को।
4: हुँ?
3: मतलब फूलों की खरीदार को, जो 250 रुपए तो दे गया लेकिन गमले लेने आज तक नहीं आया। देख देख तो शीशे में से देख।
4: हाँ, ओ अरे हाँ, ये तो वही है। नेम प्लेट पर लिखा है देवेश सक्सेना सिविल इंजीनियर।
3: तेरे इस देवेश से अच्छा चंदा मिलेगा।
4: तो चल अंदर चल। May we come in, sir?
5: आप please come in, please come in.
3: हम बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आई हैं।
5: चंदा? जी हाँ, बहुत नेक काम है, मैं अभी चेक काटे देता हूँ, आप लोग बैठिए।
4: जी थैंक यू।
2: लगता है आपको पहले कहीं देखा है।
5: मुझे?
2: अब कोई 3 महीने पहले।
5: नहीं नहीं, आपको भ्रम हुआ है। मुझे तो नई दिल्ली में आए, मतलब ये इस कंपनी में आए अभी 10-15 दिन ही हुए।
2: फिर भी पता नहीं क्यों लगता है कि आपको YWCA के फ्लैश शो में।
5: आपको भ्रम हो रहा है। खैर, ये लीजिए चंदे का चेक। माफ कीजिएगा, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है।
2: जी, धन्यवाद।
5: इट्स ऑल राइट।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: सुजाता, पता नहीं मुकर क्यों गया था, तो ये वही फूलों का खरीदार।
2: हाँ, वही चेहरा मोरा, वही मूछे, वही घुंघराले बाल।
3: शायद शर्मिंदा हो कि कीमत चुका कर भी गमले लेने नहीं आया।
2: हो सकता है।

0: बस के इंतजार में खड़े खड़े 7 बज गए, कोई स्कूटर भी नहीं मिल रहा। आज पद्मा की शादी भी नहीं पहुंची तो वो सारी उलाना देती रहेगी।
1: May I give you lift?
0: आप
1: कहाँ जाना है आपने?
0: जी डिफेंस कॉलोनी।
1: मैं लाजपत नगर जा रहा हूँ, रास्ते में उतार दूंगा, आइए। अरे क्या सोच रही हैं आप, आइए ना, आइए आइए।
0: जी थैंक यू। मैंने आज आपको फिर पहचान लिया। आप मेहता एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के सिविल इंजीनियर मिस्टर देवेश सक्सेना ही है ना? सोचती हूँ पहले की तरह आज आप फिर कहीं इस बात से इनकार न कर दें कि आपने मुझे बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा दिया था।
1: नहीं, आज इनकार नहीं करूंगा।
0: तो आज आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि आपने ही YWCA के फ्लावर शो में गुलदाउदी के 50 पौधे खरीदे थे? यदि पौधे खरीद लिए थे तो दूसरे दिन घर ले जाते? शायद बीवी से डर गए जो ये कहती कि YWCA की किस लड़की के चक्कर में पड़कर इतने सारे पौधे खरीद लिए।
1: देखिए मुझे और ज्यादा शर्मिंदा नहीं कीजिए, एक तो अभी मेरी शादी नहीं हुई और फिर मैं उन गमलों को अपने सर पर रखता? अरे जिस छोटे से फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वो मुझ जैसे कुंवारों के लिए रैन बसेरा है।
0: I'm sorry.
1: वैसे अच्छा ही है कि मैंने अभी तक शादी नहीं करी।
0: क्यों?
1: बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। अरे हाँ, आप डिफेंस कॉलोनी में रहती हैं?
0: नहीं, आज मेरी सहेली पद्मा की शादी है। ये वही पद्मा है जो उस दिन मेरे साथ आपसे बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आई थी। चलिए ना, आप भी उसे शादी की मुबारकबाद दे आइए।
1: अरे नहीं पापा, नहीं, एक डांट के बाद दूसरी डांट खाने की हिम्मत नहीं है मुझमें।

0: पद्मा बता मैं क्या करूं। देवेश फौरन शादी करने को कह रहा है और मेरे माँ बाप इस शादी का सख्त विरोध कर रहे हैं।
1: क्यों?
0: दो कारण हैं। एक तो हम हैं गौड़ ब्राह्मण और देवेश कायस्थ, दूसरी मेरी बड़ी बहन। उनकी इच्छा है कि मेरा विवाह उनके साथ कनाडा में रह रहे उनके देवर से हो जाए। इसलिए मेरे जीजा जी चाहते थे कि विवाह से पहले मैं ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर लूं ताकि कनाडा में उनके व्यापार में हाथ बटा सकूं। बस मुझे लखनऊ से दिल्ली लाकर YWCA में भर्ती करा दिया गया।
1: क्या चिट्ठी है ये घर से?
0: हाँ
1: तो दिखा।
0: ये ले।
1: अरे तेरे पिता ने तो लिखा है कि अगर तूने देवेश से शादी की तो ये तुझसे हमेशा के लिए रिश्ता नाता तोड़ लेंगे, समझेंगे कि तुम मर गई। बड़ी विकट समस्या है।
2: अरे दोनों सहेलियों में किस विकट समस्या पर विचार हो रहा है?
0: नमस्ते जीजा जी।
2: नमस्ते, नमस्ते।
1: सुजाता की माता पिता इसकी देवेश से शादी के हक में नहीं।
2: क्यों, क्यों हक में नहीं? अरे देवेश जैसा दामाद उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पद्मा, मैंने तुम्हें बताया था ना, देवेश की कंपनी का एक डायरेक्टर मेरा दोस्त है। आज मैं उससे किसी काम से मिलने गया था, बातों बातों में देवेश का जिक्र आ गया। उसने बताया कि देवेश बड़ा ही योग्य, मेहनती और चरित्रवान इंजीनियर है।
1: और क्या बताया?
2: उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। जयपुर में अपने मामा की मदद से उसने पढ़ाई की, इंजीनियर बना, और मेरा ख्याल है कि देवेश से शादी करके सुजाता सुखी रहेगी।
1: फिर तो मेरी सलाह है कि सुजाता को अपने माता पिता के विरोध की परवाह न करके देवेश से फौरन शादी कर लेनी चाहिए। क्यों सुजाता, तेरा मन क्या कहता है?
0: मेरा मन तो देवेश का हो चुका है।
2: अरे तो फिर सोच क्या रही हो, फौरन कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज कर डालो।
3: मैडम किस सोच में डूब गई?
0: फिर हमारी शादी हो गई, मुझे दुनिया भर का सुख ऐश्वर्य मिला, लेकिन मेरे माता पिता को मेरी शादी पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद मेरे पिता का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और मेरी माँ बड़ी बहन के पास कनाडा चली गई। कुछ अरसे बाद मेरी एकमात्र सहेली पद्मा भी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई, लेकिन साल बाद हमारी बेटी आ गई। मुझे याद है बेटी के जन्म पर देवेश कितना खुश हुआ था और उसने सारे दफ्तर में ये कहकर मिठाई बांटी थी कि बेटी बड़ी किस्मत वाली है क्योंकि तभी उन्हें तरक्की मिली थी और वो कंपनी के डिप्टी चीफ इंजीनियर बन गए थे। लेकिन वो तरक्की ही जानलेवा साबित हुई।
3: आपका कहना ठीक है, तब की हमारी कंपनी को उत्तरकाशी के पास सड़क बनाने का ठेका मिला था और वही एक चट्टान के गिरने से।
0: बस बस राम सिंह, उस दुर्घटना की याद न दिलाओ, मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ था और मैं उनके साथ ही मर जाना चाहती थी, लेकिन अपनी नन्ही बेटी का ख्याल करके छाती पर पत्थर रखकर जिंदा रही। लेकिन उसी दिन से मेरी मुसीबतों की शुरुआत हुई।
3: मैडम मैंने सुना था हमारी कंपनी के मालिक मेहता साहब आपको यही नौकरी देना चाहते थे, परंतु आपने इनकार कर दिया था।
0: कैसे कैसे उसी कंपनी में छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी करती जहां मेरे पति इतने बड़े पद पर थे। भाग्य से मुझे ग्रेटर कैलाश के इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने नौकरी के दौरान BA किया, MA किया और किसी तरह BT की परीक्षा भी पास कर ली। तब तक प्रीति 10 बरस की हो चुकी थी और मुझे अचानक दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा।
3: हाँ, सुना था कि आप किसी पुरुषोत्तम शर्मा नाम के आदमी से शादी करके बिहार या उड़ीसा चली गई थी। और फिर उसके देहांत के 4 साल बाद फिर दिल्ली लौट आए और हमारी इसी कंपनी में नौकरी कर ली।
0: छोड़ो ये किस्सा राम सिंह, शायद कोई बस आ रही है।
3: हाँ देखता हूँ, अभी देखता हूँ। मैडम ये अंधा मगर की बस है, जल्दी आ जाइए।
0: क्यों कंडक्टर, ये बस अंधा मुगल जा रही है ना?
4: हाँ हाँ जल्दी चढ़िए, चलो चलो।
0: अंधा मुगल का एक टिकट दे दीजिए, खुले पैसे नहीं है, ये नोट है।
4: कोई बात नहीं बहन जी, ये लीजिए टिकट और ये रहे बाकी पैसे। ये बस 50-55 मिनट में अंधा मुगल पहुंचेगी, आप आराम से बैठी रहिए।
0: हाँ। सुजाता, सुजाता, कौन है? हरी, मुझे पहचानती नहीं? मैं तुम्हारी ही आवाज हूँ, उपचेतना की आवाज। उस चपरासी को तो सब कुछ बता दिया, लेकिन जब उसने पुरुषोत्तम शर्मा के बारे में पूछा तो बात बदल कर टाल गई। क्यों? मैंने अपने जीवन का वो अपमानजनक गंदा अध्याय सबसे छिपा रखा है, लेकिन तुम्हारी बेटी प्रीति से तो कुछ छिपा नहीं। नहीं नहीं, मैंने प्रीति से कह रखा है कि पुरुषोत्तम शर्मा ने मुझसे आर्य समाजी तरीके से शादी कर ली थी। तो तुम क्या समझती हो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी उस बात पर विश्वास कर लिया? बिल्कुल नहीं। जरा याद करो पुरुषोत्तम शर्मा के पूरे कांड को।

0: मैंने ग्रेटर कैलाश की इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी में काम शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद तुमने देखा कि पुरुषोत्तम शर्मा उसी कंपनी का सीनियर डायरेक्टर बनकर आ गया है। तुम फौरन पहचान गई कि ये वही लड़का है जो लखनऊ में तुम्हारे साथ स्कूल में सातवीं क्लास तक पढ़ा था और उसके माँ बाप तुम्हारे लखनऊ वाले मकान के पड़ोस में रहते थे। तुम्हें उसी पुरुषोत्तम के साथ उसी कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लगा। तुमने त्याग पत्र दे दिया। वो त्याग पत्र पुरुषोत्तम के पास पहुंचा। उसी शाम वो तुम्हारा त्याग पत्र लेकर तुम्हें समझाने तुम्हारे घर आ गया और तुमने वो त्याग पत्र वापस ले लिया। लेना पड़ा प्रीति के भविष्य के कारण। और फिर पुरुषोत्तम रोज शाम को तुम्हारे घर आने लगा। धीरे धीरे उसका आना तुम्हें अच्छा लगने लगा। क्यों? देवेश की मृत्यु के बाद मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे सहारा चाहिए था। पुरुषोत्तम से प्रीति भी हिल मिल गई थी। उसने एक दो बार शादी की बात भी की लेकिन मैंने हर बार इनकार कर दिया। दरअसल मेरे मन में देवेश की याद इस कदर बसी हुई थी कि वहां किसी दूसरे के लिए स्थान ही नहीं था। ये सब देखकर ही पुरुषोत्तम ने तुम्हारे घर आना कम कर दिया था। और फिर वो कंपनी की बिहार और उड़ीसा की सीमा पर स्थित क्रिबुरु की लोह खनिज की खानों का डायरेक्टर बनकर चला गया और मैं दिल्ली में अकेली रह गई देवेश की याद के सहारे। एक शाम मैं और प्रीति घर में अकेली बैठी थी। वो स्कूल का काम कर रही थी और मैं देवेश की तस्वीरों के एल्बम में खोई हुई थी।
1: मम्मी मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे अंकल
2: प्रीति बेटे,
1: अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे।
2: बेटी ने याद किया और हम इतनी दूर से बेटी से मिलने चले आए।
0: कब आए?
2: अभी शाम को दिल्ली पहुंचा था। होटल में सामान रखा, तुम नहीं माना, तुम लोगों से मिलने चला आया।
0: कैसी है वो नई जगह?
2: बहुत अच्छी। अरे बेटी अंकल को चाय नहीं पिलाओगी?
1: अभी लाई अंकल।
2: सुजाता, किरीब्रू बहुत अच्छी जगह। कंपनी की तरफ से मुझे बाग बगीचे वाली बहुत बड़ी कोठी मिली है। नौकर चाकर कार स्टेटस सब कुछ मिला है। लेकिन लेकिन तुम्हारे बिना सब सूना है। मैं रात रात भर जाकर तुम्हें याद करता रहता हूं। सुजाता, मेरी सूनी दुनिया को आबाद करने के लिए मेरे साथ किरीब्रू चलोगी ना? मैं तुम्हारे से वादा करता हूं सुजाता कि प्रीति को मैं अपनी सगी बेटी मानूंगा। हाँ
0: लेकिन।
2: लेकिन क्या?
0: शादी की रस्म।
2: अरे वो तो होगी ही, लेकिन सुजाता मुझे कल दफ्तर का काम निपटा कर हर हालत में फौरन वापस लौटना है। मैं वादा करता हूं तुम्हारे से किरीब्रू पहुंचकर मैं तुमसे आर्य समाजी तरीके से शादी करूंगा।
0: मैंने पुरुषोत्तम के उस वादे पर विश्वास करके कंपनी की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और प्रीति को लेकर उसके साथ किरीब्रू चली गई। प्रीति को दार्जिलिंग के एक हॉस्टल में ले जाकर दाखिल कर दिया। तुम भी आलीशान बंगला, नौकर नौकरानियों की फौज, शाही ठाट, सुख और ऐश्वर्य में रम गई। उस सुख ऐश्वर्य के वातावरण में भी मैं देवेश को न भूल पाई। मैं अक्सर अपनी और उसकी तस्वीरों का एल्बम लेकर बैठ जाती जो पुरुषोत्तम को नागवार गुजरता था। एक दिन मैंने जोर देकर शादी की रस्म पूरी करने की जिद की तो पुरुषोत्तम अपने असली रूप में सामने आ गया।
2: पागल मत बनो, लोग क्या कहेंगे? हमारी यहां की सोसाइटी में सभी लोग तुम्हें मिसेस शर्मा के नाम से जानते हैं और अब यदि 2 साल बाद हम लोगों ने आर्य समाजी तरीके से या कोर्ट में शादी की तो लोग क्या कहेंगे?
0: पुरुषोत्तम,
2: तुम्हारी प्रतिष्ठा का जो होगा सो होगा, पर मैं लोगों को मुंह कैसे दिखा पाऊंगा जब पता चलेगा कि तुम पत्नी नहीं रखेल थी।
0: ओ, मैं तो कहीं की न रही, कहीं की न रही। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम सुनो, हम कहीं दूर जाकर कोर्ट में शादी कर ले।
2: कैसे विवाह कर ले? ब्याहता औरत चाहे वो विधवा ही क्यों ना हो, यदि किसी दूसरे मर्द के साथ रहती है तो उसका एक ही नाम है रखेल। हाँ हाँ, तुम मेरी रखेल हो, पत्नी नहीं। पत्नी तुम उस देवेश की थी जिसकी तस्वीरों का एल्बम लेकर तुम बैठी रहती हो।
0: नहीं पुरुषोत्तम, नहीं नहीं। और अब वो दिन भी याद करो जब तुम्हारी 14 बरस की लड़की प्रीति दार्जिलिंग के स्कूल की पढ़ाई खत्म करके तुम्हारे पास किरीबुरु आ गई थी। तुम उस शाम अपनी एक सहेली से मिलकर लौटी थी तो देखा कि पुरुषोत्तम बेडरूम में प्रीति को अपने पास बैठाकर गंदी तस्वीरें दिखा रहा है। पुरुषोत्तम, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? पुरुषोत्तम, मैं इस प्रीति की जान ले लूंगी, इसे मार डालूंगी।
2: छोड़ दो, पुरुषोत्तम,
0: मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान के लिए मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ।
2: रखेल की बेटी रखेल के सिवा और क्या बनेगी?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। संयोगवश दूसरे दिन पुरुषोत्तम को एक जरूरी काम से कलकत्ते के दौरे पर जाना पड़ा। मुझे मौका मिला और मैं पुरुषोत्तम के दिए गहने कपड़े वहीं छोड़कर प्रीति को लेकर वापस दिल्ली आ गई। और अब तुम फिर चिंतित हो अपनी लड़की के कारण। पिछले कुछ दिनों से उसका पड़ोस के लड़के राजेंद्र से मेल जोल बढ़ गया है। कल शाम को जब मैं घर पहुंची तो वो उस लड़के को घर बुलाकर ताश खेल रही थी और आज तो 10 बज गए हैं। हे भगवान, हे भगवान, भगवान, आप क्या होगा?
3: जागिए, आपको कहाँ उतरना है?
0: अंधा मुगल।
3: ओहो, यही तो अंधा मुगल है। जरा जल्दी कीजिए।
0: अभी उतरती
3: हूँ। बसों में यूं ही सोते रहते हैं। अब चलो चलो।

0: प्रीति, प्रीति दरवाजा खोल। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। मैं आज इसका गला घोट दूंगी, मैं इसे जान से मार दूंगी। प्रीति, प्रीति खोल।
1: और एक चुड़ैल, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? बोल
2: मम्मी,
1: बोल
2: मम्मी।
1: आज तो राजेंद्र के साथ ताश खेल रही थी।
2: चाहती थी लेकिन वो चिट्ठी मिली नहीं रही थी। दोपहर को मैंने वही कई किताबों में छिपा कर रख दी थी, उसे ढूंढने में।
1: कैसी चिट्ठी?
2: आपने पिछले महीने मनमोहन इंटर कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था ना?
1: हाँ।
2: वहीं से नियुक्ति पत्र आ गया।
1: सच?
2: ये मिल गया।
1: दिखा,
2: पढ़ लीजिए।
3: हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं ये जलील नौकरी छोड़कर इज्जत की नौकरी कर सकूंगी। इज्जत की नौकरी।
2: मम्मी, तुम्हारी आंखों में आंसू।
3: बेटी, बेटी, ये खुशी के आंसू है। मेरी छाती से लग जा। हाय, मेरी हाथ टूट जाए जिनसे मैंने तुझे मारा। प्रीति, प्रीति, आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। मेरे जीवन की काली रात में आज फिर उजली रेखाएं छलक उठी हैं तेरे स्वर्गीय डैडी की मुस्कान की तरह। प्रीति,

0: सुजाता, अभी आपने डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस की कहानी उजली रेखाएं भी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री चिरंजीत ने किया, निर्देशक थे श्री सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक श्री महफूज हसन और तकनीकी सहायक श्री ललित सूद। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, राम मैनी, अभय भार्गव, बनवारी तनेजा, ईश्वर दत्त कौशिक, गणेश सेठ, माला कुमार, जया मित्रा और शर्मिला मलकानी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडिया वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, समय है चित्रपट संगीत का। पहले सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की युगल सरों में क्या यही प्यार है फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है जलीस राशिद ने और संगीत है अल्लू अरविंद का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए सात रंग के सपने इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत अब 2:30 पर भी सुन सकते हैं। मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी। रात 9:25 पर सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम मध्यम वर्ग कल्याण। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है दोपहर समाचार। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत

0: तर बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में

0: पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं अलीशा चिनॉय और आतिफ असलम की। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत आशीष पंडित का है। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003-482, 4003-483 और 4003-484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। माय नेम इज खान, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज है शफाकत अमानत अली की। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जिमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने। चित्रपट संगीत का अगला गीत आवाज एक बार फिर अरिजीत सिंह की है। गीत और संगीत है मिथुन का। फिल्म का नाम है आशिकी 2।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं अमित मिश्रा, जोनिता गांधी, सीमा चंद्रा और राजा की आवाज़ों में शब्बीर अहमद और श्लोक लाल की लिखा ये गीत। संगीत तुषार गांधी का है, फिल्म का नाम है रेस 3।

अभी आप सुन रहे थे अमित मिश्रा, जोनीता गांधी, सीमा चंद्रा और राजा की आवाज़ों में रेस 3 फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था शब्बीर अहमद और श्लोक लाल ने, संगीत था तुषार गांधी का। और इसी के साथ चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और पीड़ित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार के रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियाँ दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रतिन्द्र बोस

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। बशीर बद्र साहब भुलाए नहीं भूलते, उन्होंने एक बार फरमाया था, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। जी हाँ, मन बदलो तो आपके आसपास सब कुछ बदलता है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और मित्रों, ये कलयुग है, कलयुग यानी करयुग, कर यानी हमारे हाथ, तो जो हाथ से मेहनत करते हैं और जिसका मन लक्ष्य पर केंद्रित है उसकी तो जीत ही जीत है। लेकिन हाँ, जो आलसी है, जो सोया हुआ है, उसकी किस्मत भी सोई हुई है। तो आओ जागो हमारे साथ और हमें भेजो ईमेल fmgoldairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे हैं मन भावन, जल्दी से अपनी फरमाइश भेजिए। आपके साथ है हम रूमी मलिक।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्ले सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करे आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

FM गोल्ड 90 साल की हो गई हमारी आकाशवाणी। इसी उपलक्ष्य में आज 3:30 बजे आप हमारी पूर्व कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर ऋतु राजपूत से चर्चा सुनेंगे। बहुत आनंद आएगा, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, और हमारे साथ ढेर सारे लिसनर्स जो जुड़ चुके हैं उनके नाम ले लें। बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश, ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजकुमार से गीत तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन बोधराज जी आपकी इजाजत से बाकी लोगों के नाम भी तो लेने दो। मास्टर अशोक कुमार, दिग्दर्शन कौर ये दिग्दर्शन कौर जी देखो क्या लिखती है, रूमी मालिक जी नमस्कार, आप जल्दी जल्दी आया कीजिए, आज अधिक मास के बारे में कुछ बताइए, बताओ जरा। देखो लूनार कैलेंडर जो है ना, उससे क्या होता है कि हर साल कुछ कुछ दिन बचते हैं और हर 3 सालों में 1 महीने जितना समय 30 दिन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी। और आपको ये बड़ा कमाल की पौराणिक कथा है कि अब हर मास के कोई ना कोई देवता होते हैं, पर इस मास को किसी ने नहीं अपनाया, तो ये रोता हुआ गया भगवान विष्णु के पास। फिर वाकई में कथा ये कहती है, तो भगवान कहते हैं कि देखो ये मास जो है ये सबसे उत्तम मास होगा, इसे मैं अपना नाम देता हूं। और भगवान का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास है, जिसमें पाठ पूजा, दान दक्षिणा, जप तप की बहुत ज्यादा महिमा है। देखो ये जो राशि होती है ना, इससे हमारा एस्ट्रल शरीर बनता है। हाँ हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हमारे यहाँ तो बहुत प्रचलन है नजर लग गई, तो नजर लगती है कहाँ है? नजर लगती है आपकी बॉडी के अराउंड ना, सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, उस पे जाके चिपकती है। तो कोई नजर वजर, कोई भी किसी के तंत्र जादू टोना कुछ असर कर ही नहीं सकता अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है। कुछ लोग आप मिलते हो कि लगता है अरे और क्या बंदा था या क्या बंदी थी, ऐसे बोलते हैं ना लोग, है ना, क्या पर्सनैलिटी है। वो क्यों होता है? एक तो उन्होंने अपने आप को गढ़ा होता है, जैसे शुरुआत में ही मैंने मेहनत की महिमा के बारे में बोला, मेहनत करोगे तो सचमुच में निखार आएगा आपकी शख्सियत में, और फिर ऊपर वाले का नाम लोगे तो फिर कहना ही क्या। थैंक यू दिग्दर्शन कौर जी। हरजिंदर शिंदा हमारे साथ में है, विजय सुरालकर भी है, नाम ले लूँ ना थोड़े, राजेश खोबरखेड़े, मोहम्मद सैयद आबासी जी, हरजिंदर सिंह भाटिया, सुरेश नारंग हो गए ना, आगे चलते हैं, जय हमारे साथ में है, और अगला पेज देखती हूँ, ताज मोहम्मद है, मोहम्मद खलील कुरैशी साहब हैं, ठीक है, और विजय सुरालकर जी हैं, आप लोग ना, मेयर अरोड़ा हैं, श्री कृष्ण बाथे हैं, कमलकांत गुप्ता हैं। When you send repeat mails, जब आप बार बार एक व्यक्ति बहुत सारी मेल्स भेजता है ना, तो कुछ मेल्स खो जाती है। मस्कीन दादा है, रविंद्र मोहन दास हैं, ठीक है, तो बोधराज जी अब मेरा ख्याल से राजेश्याम देवांगन, अनंत वाडे, किसान सपकल, आर कुमार, कुमकुम जी तो अब मैं कह रही थी आज HR पांड्या जी भी हमारे साथ में है, मोहम्मद कमर है, सोहेल शेख है, आइए सुन लेते हैं ना ये गाना, तुमने

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। श्री कृष्ण बाथे हमारे साथ जुड़े हैं नंदुरा महाराष्ट्र से। इनके साथ संदीप और अमूल्य हैं और ये सुनना चाहते हैं गीत सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। बड़ा ही जोशीला गाना है, अच्छा गीत है, बैराग फिल्म से है। सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष में हम लेकर आए हैं विशेष श्रृंखला आकाशवाणी के संग यादों के रंग। इस श्रृंखला में हम उन विशिष्ट व्यक्तित्व से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी की यात्रा को अपने योगदान से समृद्ध किया है और इस क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु राजपूत जो आकाशवाणी दिल्ली में पूर्व सहायक निदेशक और कार्यक्रम प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वे एक कुशल प्रसारण कर्मी, प्रभावशाली कमेंट्रेटर के साथ साथ हिंदी भाषा पर उनकी पकड़, सशक्त अभिव्यक्ति और प्रसारण कला में उनकी दक्षता ने उन्हें श्रोताओं के बीच एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। तो हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर रितु राजपूत जी का। नमस्कार रितु जी।
1: नमस्कार प्रभा।
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है और इन 90 वर्षों में लगभग 38 साल का आपका भी कार्यकाल रहा है। तो 90 साल में आपका 38 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो ये इतनी लंबी गौरवशाली जो यात्रा आकाशवाणी की रही है उसको आप किस रूप से देखती हैं?
1: प्रभा जी, आपने कहा 38 साल, मुझे तो लगता है कि जब मैं पैदा हुई थी तभी से शायद मेरी रगों में आकाशवाणी प्रवाहित होने लगी थी। एक कहते ना कि बचपन के जो कार्यक्रम होते हैं, बाल कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते रहे हैं।
0: जी जी।
1: उनका हिस्सा बनना, फिर युवाणी कार्यक्रम का हिस्सा बनना, फिर अनाउंसमेंट का हिस्सा बनना, फिर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और सिलसिले बार बहुत सारी रेडियो की जो विधाएं हैं उनसे जुड़ना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ये बहुत बेबाक होकर कह सकती हूँ कि मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार दिए और गुरुजनों से शिक्षा पाई, लेकिन जीने का सलीका, नफासत, नजाकत, जो भी कुछ कहें, व्यवहार कुशलता अगर सीखी तो सिर्फ आकाशवाणी से।
0: जैसे कि आपने बताया कि आकाशवाणी आप बचपन से ही सुनती आ रही हैं, तो पहला परिचय कैसे हुआ, यानी कि कौन सा प्रोग्राम आपने सुना होगा पहले, उसके बारे में बताइए। और साथ ही जैसे कि हम आपके बारे में, जितना मैं जानती हूँ कि आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो आपके पास विकल्प तो बहुत होंगे अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए, लेकिन आपने आकाशवाणी और प्रसारण क्षेत्र में आने को चुना, तो यहाँ आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: वास्तव में मैं ये कहूँ कि जब हम 10th में थे या 11th या 12th कर रहे थे, तो उस समय सुनने का और मनोरंजन का और ज्ञान पाने का अगर कोई माध्यम था और सशक्त माध्यम था, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज भी है, तो वो आकाशवाणी रहा। और उस पे इतने प्रबुद्ध जनों का बोलना, सुनना, ज्ञान मिलना, मनोरंजन करना और वृहद सूचनाओं का मिलना, तो एक जखीरा, जिसे कहें कि भंडार था ज्ञान का आकाशवाणी, और आज के दौर में भी है। तो आकाशवाणी से खुद ब खुद आप आकृष्ट होते चले गए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे थे, बहुत कुछ जान रहे थे। और ये एक अच्छी बात रही कि पत्रकारिता, अगर अखबारों की बात करें या मैगजीन्स की बात करें, पत्रिकाओं की बात करें, तो उस दौर भी एक से एक पत्रिका निकलती थी। जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, धर्मयुग कहें या और बहुत सारी, साप्ताहिक हिंदुस्तान कहें, नवनीत कहें, कादम्बनी कहें, बहुत सारी किताबें आया करती थी और हम उन्हें पढ़ रहे थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी सुई अटक जाती थी, तो फिर वो जो ज्ञान चक्षु खुलते थे उसे खोलने का काम आकाशवाणी करता था। खूबसूरत कार्यक्रम, मीठी आवाजें, उनको सुनना, उनको गुनना और खास करके आपका उच्चारण उनसे सीखना, तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा थी कि आप खुद ब खुद आकृष्ट हो गए और सोचा कि क्यों ना हम भी इस दिशा में आगे बढ़ें। और प्रभा, सौभाग्य ये रहा कि आकाशवाणी नजीबाबाद उस समय खुल रहा था, उसका उद्घाटन होने वाला था।
0: अच्छा।
1: ये बहुत पुरानी बात है। तो उस दौर में कुछ हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स थे जो हमारे स्कूल में आए, हमें स्टेज पे देखा, हमें वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सुना, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को क्यों ना मौका दिया जाए।
0: अच्छा। जी,
1: क्योंकि उस समय तो वो लोग नई नई प्रतिभाओं को तलाश रहे थे ताकि नए नए प्रसारण शुरू हो सके। तो यहाँ से सूत्रपात हुआ और आकाशवाणी, जो हमारी तपोभूमि है, आराधना स्थल है, वहाँ पे प्रवेश मिला।
0: और जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम FM गोल्ड पर जा रहा है और डॉक्टर रितु जी, FM को इस लेवल तक पहुँचाने में आपका भी बहुत योगदान रहा है, वो हम जानेंगे बाद में, लेकिन क्यों ना आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं?
1: मेरी पसंद से बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं चूंकि पुराने संगीत की शौकीन हूँ तो आप अगर हमें ममता फिल्म का एक गीत सुनवा दे, गीत के बोल कुछ यूं हैं, रहे ना रहे हम रहे।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत जी। तो डॉक्टर ऋतु, ये बताइए कि आप आकाशवाणी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, कार्यक्रम प्रमुख के रूप में भी आपने काम किया है, तो इस पद पर रहते हुए प्रशासन और प्रसारण की जिम्मेदारी आपने निभाई है, बहुत अच्छे से निभाई है। उस समय का कोई अनुभव या कोई यादगार जो पल रहा है वो साझा करिए।
1: बिल्कुल, मैं ये सबसे पहले तो चूंकि आप FM गोल्ड पर ये कार्यक्रम कर रही हैं तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब FM 1 की अगर हम बात करते हैं, जो आज FM रेनबो के नाम से जाना जाता है, या हम FM 2 की बात करते हैं जो आज FM गोल्ड के नाम से जाना जाता है, 1998 में आपको मैं ले चलती हूँ, फरवरी का महीना, जब FM गोल्ड से पहले FM 1 यानी रेनबो, जो आज का रेनबो है, उसका पदार्पण हुआ और वो हाथों हाथ, जिसे कहना चाहिए, श्रोताओं ने उसे हाथों हाथ लिया और ऐसे उसका जादू सर चढ़ के बोला कि एक दीवानगी का आलम हर कार में, हर जगह जहां आप देखें आप FM सुन रहे हैं। फिर उसके बाद ये FM गोल्ड का सिलसिला शुरू हुआ जो 2001 की मैं अगर बात करूं तो, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि उस समय बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी आ रहे। अब आप चूंकि आकाशवाणी है और आकाशवाणी एक लोक सेवा प्रसारण का काम करता है और उसका एक अपना वो है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर मनोरंजन शिक्षा सूचना, इन सारे तथ्य को वो लेकर के चलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश इस बात की नहीं होती कि आप कहीं भी अपने मार्ग से विचलित हो जाए, यानी आपकी भाषा, आपकी शुद्धता, आपकी विश्वसनीयता, आपकी पारदर्शिता, आपका संगीत, आपका उच्चारण, मतलब हर चीज परफेक्ट 100 में से 100 नंबर होने चाहिए, कहीं कोई अशुद्धि की गुंजाइश ही नहीं है। और ऐसे में जब वो प्राइवेट चैनल्स नए अंदाज के ऐसी भाषा लेके आए जिसे हम हिंग्लिश कहते हैं, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, तो वो एक चुनौती थी हमारे लिए कि हम अपने आप को कैसे खड़ा रख पाए और कैसे उनके बीच अपनी जगह बनाए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा आकाशवाणी के विविध कार्यक्रमों का। FM गोल्ड भी इतनी वैरायटी थी प्रोग्राम्स की। उस समय एक दीवानगी का आलम रहा कि डॉक्टर करण सिंह FM गोल्ड की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गोल्ड की बात कर रही हैं, कोई भी आता था तो वो सबसे पहले जिक्र करता था कि भाई आपका आकाशवाणी FM गोल्ड तो कमाल का, इसमें क्या गाने आते हैं, क्या प्रस्तुति है, क्या एंकर है। तो वो चुनौती हमें झेलनी थी प्राइवेट चैनल्स के साथ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहे और न सिर्फ खड़े रहे बल्कि पहले पायदान पर भी पहुंचे।
0: बिल्कुल।
1: और ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है और चलता यूं भी रहेगा क्योंकि हमने कोई समझौता नहीं किया किसी भी चीज से। इस व्यावसायिकता के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी जगह बरकरार रखी है
0: और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी लगन और आपका योगदान भी बहुत रहा है। आपने ऐसे ऐसे कार्यक्रम इसमें शुरू करवाए जो अभी तक चल रहे हैं,
1: ये तो मैं यूं कहूंगी कि आपका बढ़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे नए कार्यक्रमों से हम खुद जुड़े। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों बाहरी हमको ढूंढेंगी, दिल ही तो है, का मेरे मन का, फिर शाम का अंदाजे बयां, फिर दरीचा, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। रेडियो रील की अगर मैं बात ना करूं तो ना इंसाफी होगी। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम रहा है FM गोल्ड का। लेकिन खूबसूरती ये है प्रभा कि FM गोल्ड पर चाहे शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कार्यक्रम हो या आंखों देखा हाल हो या राष्ट्रीय स्तर के प्रसारण, चूंकि कहीं ना कहीं वो आपको समाचारों के बीच में आपको अपडेट करते चलते हैं, आपको सुनने को मिलते चलते हैं, तो ये बहुत बड़ी पूंजी है हमारी, बहुत बड़ी विरासत है हमारी जिसे हमें संजो के रखने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छे से चले आ रहे हैं लेकिन आज के दौर में बहुत कठिन है क्योंकि ओटीटी का जमाना है और आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, वेब रेडियो आ गया है, ऑनलाइन चीजें आ रही हैं, तो रेडियो से श्रोताओं को बांधे रखना, जोड़े रखना एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, और वो चैलेंज तब तक हम उसमें आगे नहीं निकल पाएंगे कि एक तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा इस चीज से जोड़ें कि जो श्रोता चाहते हैं बिना अभद्र हुए, जो हमारी शालीनता है उसको बिना खोए हुए हम अपने श्रोताओं को कुछ ऐसा दें कि वो बाध्य रहें हमें सुनने के लिए, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे जानकारी के माध्यम से, चाहे उच्चारण के माध्यम से। उच्चारण पे मैं बार बार जोर इसलिए देती हूँ कि आजकल बहुत सारी, चाहे अंग्रेजी की बात करें, हिंदी की बात करें या उर्दू की बात करें, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कई बार अशुद्ध सुनने को मिलते हैं। तो रेडियो तो मानक है, एक पैमाना है, आपको सिखाता है, आपको बताता है, बहुत से बच्चे आपको सुन के सीखते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
0: आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस जो हैं बहुत सारे हैं और उसको हमें पार करना है, ऐसे ही कई चैलेंजेस आपने भी अपनी ज़िंदगी में पूरे किए। उनमें से एक है अच्छे कमेंट्रेटर का, आपने लाल किले से राष्ट्रीय पर्वों की कमेंट्री की है और बहुत उम्दा कमेंट्री की है, उस अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। और साथ ही ऐसी जिम्मेदारी निभाते हुए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: प्रभा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और एक अच्छा कमेंटेटर बनना सिर्फ आवाज पर निर्भर नहीं करता है। जब तक आपके पास व्यापक जानकारी ना हो, दूर तक देखने की दृष्टि ना हो, आपके पास अच्छी शब्दावली ना हो, आपके पास, जब आप कमेंट्री करते हैं तो आप कितने व्यवहार कुशल हैं, आप कितने वोकल हैं, आप कितना खूबसूरती से चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि कमेंट्री में सिर्फ आपकी आवाज काम नहीं करती, आपकी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। श्रोता को आप अपनी दृष्टि से वो दिखाते हैं, वो घर बैठे दिखाते हैं जहां वो पहुंच नहीं सकते। हजारों मील दूर आप बैठे हैं, अब दिल्ली में बताइए राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम हो रहा है, हर श्रोता तो वहां नहीं पहुंच सकता। अब वहां से आप कमेंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए अलंकरण समारोह की, तो श्रोता को ये महसूस करा देना कि मैं वहां पर स्वयं मौजूद हूँ। तब तक आपकी कमेंट्री सफल नहीं होगी जब तक श्रोता ये महसूस ना कर ले। और उसके लिए आपको बहुत सजग रहना होता है। आप आंख से देखते हैं, मुख से, जीभ से बोलते हैं, और आप हर चीज कान से सुन रहे हैं, एक छोटी से छोटी आवाज सुन रहे हैं, कहीं कुछ चूक ना हो जाए। तो जब आप चक्षु बनते हैं अपने श्रोताओं के, तो वो कमेंट्री तब तक सफल नहीं है जब तक आप बिल्कुल ये आभास ना करा दे कि हम उस आयोजन का हिस्सा हैं, हम खुद वहां पर हैं। और चैलेंज इसमें भी बहुत ज्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जब योग दिवस, पहला योग दिवस आया जून में पड़ता है, तो उसकी फर्स्ट कमेंट्री करने का मौका मुझे मिला। अब योग की कमेंट्री करती है, उसमें तो आप का शरीर तरह तरह के आसन कर रहा है, अब वो श्रोताओं को आप कैसे दिखाएंगे? अब जैसे पद्मासन है, तो इस तरह के, या वज्रासन, जो आसन आपको दिखाने हैं वो आपकी शब्दावली से व्यक्त होने चाहिए। जैसे मयूरासन की मैं बात करती हूँ, तो क्या श्रोताओं आप मयूर देखा है, मोर देखा है? मतलब उनको ये आभास कराना कि मोर कैसे बैठता है,
0: वो विजुलाइज करे कि मोर के बारे में।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये आभास कराए, वो आभास कराना कि इस आकृति में अब आपको ये आसन करना है, तो वो बड़ा कठिन था। और एक और इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं कि आप 26 जनवरी की कमेंट्री कर रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी धूप खिली थी, कड़कती ठंड है, अचानक कोहरा छा गया, धुंध आ गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या बोलेंगे? जब दृश्य सामने नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? तो ऐसे में आपका विवेक, आपकी शब्दावली, आपका ज्ञान काम आता है कि आप कैसे श्रोताओं को अपने से जोड़े रखें, अपने से बांधे रखें। कई बार ये होता है कि आप कुछ बोल रहे हो, उसे दृश्य बदल गया। अब एक कमेंट्री का मैं जिक्र करूं, संसद पार्लियामेंट की कमेंट्री थी, मेरे साथी डी एंड्रू मेरे साथ मौजूद थे। आपको याद होगा कि वहां पर एक कमेंट्री होती है जब संसद पर हमला हुआ था
0: जी,
1: और वहां पर जो हमारे देश के जाबाज शहीद हुए थे, तो उनकी स्मृति में एक कमेंट्री होती है, आयोजन होता है श्रद्धांजलि स्वरूप। तो वो एक आयोजन हो रहा था, मैं हिंदी में कमेंट्री कर रही थी, डी एंड्रू इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे थे, और वहां पर उन शहीदों के परिजन भी आए हुए थे। तो वो परिजन बिलख रहे थे, रो रहे थे, उनको देख के मेरे साथी कमेंट्रेटर बहुत विचलित हो गए और एकदम से खामोश हो गए। अब हिंदी की कमेंट्री के बाद तुरंत उनको अंग्रेजी में करना है, लेकिन वो चुप है। और मैं कह रही हूँ आगे का आंखों देखा हाल, हमारे साथ ही डीएनटी आपको बताएंगे, अब वो बोल नहीं रहे। तो फिर हमने कोहनी से उनको हल्का सा पुश किया
0: जी,
1: देखते क्या है वो तो जारो कतार रो रहे हैं, उनकी आंख से आंसुओं के अविरल धारा बह रही है। तो ऐसे में मैं भी विचलित हो जाती
0: जी,
1: या मैं भी अपने माइक से परे हो जाती या कुछ बोलने लगती, भाव में बह जाती। तो वहां पे आप जो कुछ है, आप एक आकाशवाणी के आंखों देखा हाल सुनाने के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, तो निज को भूलना पड़ता है, आपको वहां रमना पड़ता है, वहां पर डूबना पड़ता है, तब आप एक अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं।
0: तो अब आपकी पसंद का कोई गीत हम सुनाना चाहते हैं, आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे।
1: एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी चित्रलेखा, मीना कुमारी प्रदीप कुमार की फिल्म थी, उसमें गीत है मनरे तुकाहे न धीर थरे।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत जी। डॉक्टर ऋतु जी, ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और भाषा के संरक्षण में बहुत योगदान दिया है, उसको आप किस रूप में बताएंगी?
1: प्रभा जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम उस स्वर्णिम युग के एक तरह से साक्षी रहे हैं, जब बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आकाशवाणी से जुड़े रहे। आज भी बहुत से साहित्यकार जुड़ते हैं, आते हैं। बहुत से ऐसे साहित्यकार, ऐसे नाटककार, ऐसे संगीतकार आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं जिन्होंने

0: आकाशवाणी को उस स्थान तक पहुंचाया है जिसे हम सिंहासन कहते हैं। तो वो साहित्यकारों का जुड़ना, संगीतकारों का जुड़ना, गायकों का जुड़ना, आप बताइए, लता जी हैं, आशा जी हैं, रफी साहब, किशोर साहब, हेमंता, अमन्ना डे साहब, सुमन कल्याणपुर, एक से एक बड़े संगीतकार के लिए जिसे कहें आकाशवाणी, उनको एक जगह तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो शायद गलत नहीं होगा। घर घर तक ये वो गीतकार हैं या वो संगीतकार हैं या वो गायक हैं जो आज भी प्रचलित हैं। आज भी अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आज के युवा हैं, किशोर हैं, जो पुराने गानों को गुनगुनाते दिख जाते हैं। और इस दौर तक पहुंचाने में अगर FM गोल्ड का हाथ है, मैं ये कहूँ, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: अब चलते चलते अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आप अपने पूर्व सहयोगियों और वर्तमान जो कर्मी हैं और श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रभा जी, सबसे पहले तो नमन उन सभी रेडियो की पर्सनालिटीज को, व्यक्तित्व को, जिन्होंने हमें बनाने में एक भूमिका निभाई। हमारे जितने भी वरिष्ठ जन रहे उनको हम हमेशा से हृदय में रखते हैं और नमन करते हैं। और खास करके आज की पीढ़ी की जब मैं बात करती हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये होती है प्रभा कि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे। बस थोड़ा सा ज्ञान लिया और ये मान लिया कि मैं परिपूर्ण हो गया, मैं परिपक्व हो गया। तो ये तो निरंतर अभ्यास की जरूरत है, इस विधा के लिए निरंतर पढ़ने की जरूरत है, तभी आप एक अच्छे, सफल और जिसे कहना चाहिए सक्षम प्रसारक बन सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक आपकी पसंद का गीत और हम सुनना चाहेंगे।
0: तुझे जो भी देखेगा किसी का ना हो सकेगा, भला हो परी हो क्या हो तुम,

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और इसमें आज हमारे साथ थी डॉक्टर ऋतु राजपूत। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे विमानन क्षेत्र से जुड़े 77,00,000 रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जाँच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Indian Institute of Technology, Jodhpur, has invited online applications for the post of a medical officer on contractual basis. The application process is open till 4th June 2026. For details, please log on to the website, that is at www.iitj.ac.in. ICAR National Research Center on Mithun has announced a walk-in interview for various contractual positions under different projects, including the National One Health Mission. The vacancies include Project Research Scientist 3, Project Technical Support 2, Young Professional 1 and Young Professional 2. With consolidated monthly remuneration ranging from 28,000 to ₹67,000 plus HRA for eligible posts. The walk-in interview will be held on 9th June 2026 at ICAR NRC on Mithun, Medzi Pharma, Nagaland. Candidates with qualifications in biotechnology, life sciences, veterinary science, animal science, zoology, microbiology and related disciplines are eligible to apply. Detailed advertisement and application format is available at ICAR-NRC website, that is at https://icar.org.in. Balmer Lorry and Company Limited, a Mini Ratna 1 public sector enterprise under the Government of India, has invited online applications for various regular and fixed-term contractual positions across departments such as logistics services, corporate HR, corporate IT, travel and vacations, logistics infrastructure, industrial packaging and greases and lubricants. The vacancies include Deputy Manager, Assistant Manager, Chief Operating Officer, Chief Technology Officer, Officer, Junior Officer and Unit Head Posts. The maximum age limit varies from 27 to 57 years depending on the post. Interested candidates can check eligibility criteria, qualifications, experience and application procedure on the official career page of Balmer Lorry Careers. The last date for submission of online applications is 5th June 2026. For details, do refer to the website, that is www.balmerlorry.com. Rajiv Gandhi National Aviation University, a central university under the Ministry of Civil Aviation, Government of India, has invited online applications for engagement of non-teaching technical personnel in IT and Computer Information Center areas on contractual basis. The positions advertised include Server Engineer, Full Stack Developer and Computer Lab Engineer with one vacancy each. The appointments are initially for 1 year and may be extended up to 3 years based on performance and institutional requirements. The consolidated remuneration ranges from 35,000 to 60,000 per month depending on the post and experience. Interested candidates can find detailed eligibility criteria and terms on the university website, that is at Rajiv Gandhi National Aviation University. The online application portal is available at RGNAU Online, and the last date for applications is 15th June 2026. Do refer to the website, that is at www.rgnau.ac.in. I repeat, it is www.rgnau.ac.in. Indira Gandhi National Centre for the Arts under the Ministry of Culture has invited applications for the post of a Director, Administration and Financial Advisor and Chief Accounts Officer on deputation or short-term contract basis. The Director, Administration post is in Level 13 as per the 7 CPC, and while the FA and CAO post is in Level 12. Applications must be submitted within 30 days from the date of publication in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.igncaa.gov.in. I repeat, it is www.ignca.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लेडी इरविन कॉलेज इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज सिकंदरा रोड नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, CGO कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट 2 पद, उपनिदेशक बैंकिंग 2 पद, उपनिदेशक कॉरपोरेट लॉ 2 पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट 1 पद, उपनिदेशक अन्वेषण 3 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉरपोरेट कानून 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण 2 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान 1 पद, वरिष्ठ अभियोजक 3 पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद। ये सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ हम हैं, मैं हूं मुनीष शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु जी।
2: नमस्कार मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। एंड आई एम रेणु कटारिया, एज मुनीश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी, एंड his full name is Munish Sharma. And dear listeners, as Munish has informed, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes and so much more, all for you over the next 30 minutes. And let's begin with the news headlines first, Munish.
1: Yes, Renu. So the first headline, दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा।
2: तृणमूल कांग्रेस फेसेस टर्मोइल एज एक्सपेल्ड एमएलए ऋतब्रता बैनर्जी क्लेम सपोर्ट ऑफ नियरली 60 एमएलएज इन वेस्ट बंगाल असेंबली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
2: सीनियर कांग्रेस लीडर डी के शिवकुमार सोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका।
1: भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमरीका को पीछे छोड़ा।
2: And in Indonesia Open Badminton, HS Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. And dear listeners, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Bicycle Day. And here I would like to quote Albert Einstein, Munish. He said, "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." So, this day is celebrated annually on June 3rd to acknowledge the simple, affordable, reliable and environmentally fit sustainable means of transport, fostering environmental stewardship and health. The day was adopted through a UN General Assembly resolution recognizing the uniqueness, longevity and versatility of the bicycle. Theme of this year is Cycling for a Greener Future. It highlights the bicycle's role in cutting carbon emissions, combating traffic congestion and promoting sustainable, healthy urban environments.
1: दरअसल साइकिल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे असरदार साधनों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ते उत्सर्जन से अलग करके साइकिल चलाना शहरी हवा की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से बेहतर बनाता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और इस मुहिम को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें साइकिल चलाने को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में मुख्य धारा के तौर पर शामिल करने को बढ़ावा दिया गया है, चाहे इसका इस्तेमाल रोजाना शहरी सफर के लिए किया जाए या फिर सप्ताहांत में मनोरंजन के लिए किया जाए। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सीधे तौर पर कम होता है।
2: एंड नॉट ओनली दिस मुनीश, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग और डूइंग स्पोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। एट ऑल एजेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव आउटवे पोटेंशियल हार्म, फॉर एग्जांपल थ्रू एक्सीडेंट्स। सम फिजिकल एक्टिविटी इज बेटर देन नन। By becoming more active throughout the day in relatively simple ways, people can quite easily achieve the recommended activity levels. And here I'm remembering another thing, Munish. When we were kids, aajkal to bachcho ko sirf hum cycle dete hain ki chaliye aap park tak cycling kar lijiye ya apni colony ke andar hi aap cycle chalaiye. But I remember those days when we used to cycle to school aur hum log itne active rehte the aur itna acha lagta tha cycling karke aur hum dekhte rehte the ki aaj market mein koi nayi cycle aayi hai to chaliye papa ko bolte hain ki hame wo wali aaj cycle.
1: Indeed, and even now we would love to, but the, you know, the safety factor is a big concern.
2: Exactly.
1: That needs to be addressed. और देखिए रेणु जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका तो कहना ये है कि पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने का भी एक जरिया है.
2: जी.
1: शहरी क्षेत्रों के सबसे गरीब तबके के लिए, जो अक्सर निजी वाहन खरीदने में असमर्थ होते हैं, पैदल चलना, साइकिल चलाना परिवहन का एक साधन बन सकता है. साथ ही हृदय रोग, स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर, मधुमेह और यहां तक कि मृत्यु के जोखिम को भी कम करता है.
2: And meeting the needs of people who walk and cycle continues to be a critical part of the mobility solution for helping cities decouple population growth from increased emissions and to improve air quality and road safety. Aur yahi par ye COVID-19 pandemic ke time pe hame yaad aata hai that many cities also led to rethink their transport systems.
1: Yeah, and the good thing is that at least in big metro cities, you can see the dedicated bicycle lanes coming up fast.
2: जी.
1: So, मेरा ख्याल है कि धीरे-धीरे सारे देश में ये साइकिल क्रांति जो है, ये लोगों को पसंद आएगी और वो इसको बढ़ावा देंगे. विश्व साइकिल दिवस दरअसल साइकिल के इस्तेमाल से होने वाले फायदों की ओर तो ध्यान दिलाता ही है. ये परिवहन का एक आसान, किफायती, साफ, पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है. साइकिल हवा को साफ रखने, भीड़ भाड़ कम करने में योगदान देती है. साथ ही ये सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सामाजिक सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाती है. एक ऐसा टिकाऊ परिवहन सिस्टम जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, असमानताओं को कम करे और साथ ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करे, वो टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी भी है.
2: जी बिल्कुल. एंड इन इंडिया ऑन वर्ल्ड बाइसिकल डे टुडे, द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया हैज अर्ज्ड यूथ टू एम्ब्रेस साइकिलिंग एंड लीड द मूवमेंट फॉर अ फिटर, हेल्दियर एंड ग्रीनर नेशन. शेयरिंग अ वीडियो मैसेज ऑन द ओकेजन, द मिनिस्टर नोटेड दैट अडॉप्टिंग साइकिलिंग एज अ रेगुलर हैबिट कैन एनकरेज अ बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being but also contributes towards building a healthier and greener nation.
3: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए. साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है. यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है. जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा.
2: So true, Munish. There are also so many countries bahar humne dekha hai jahan par ki wo cycling ko bahut importance dete hain, and they urge their employees, many of these offices, they are urging their employees to cycle down to the offices. And that's also another reason humne dekha hai ki साइकिल्स आप देखिए कि कितनी तरह की आ गए हैं. देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ बाइसिकल्स. आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो साइकिलिंग है, आपको माउंटेन अगर चढ़ना है तो उसके लिए एक अलग तरह की साइकिल होती है. एंड ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिलिंग एंड वन ऑफ देम इज अल्ट्रा साइकिलिंग, विच इज एनी बाइसिकल राइड दैट इज मोर देन 200 kilometers or 125 miles in length or 6 hours in duration completed in a single effort, jo ki aajkal bahut common hoti ja rahi hai. And for decades we have seen Munish that golf used to be the go-to sport for business networking and deal making, and today Many cyclists see ultra cycling emerging as a similar space, though in a more organic way. तो हम तो अपने listeners को सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, ride safely, stay active and help create a greener future.
1: तो रेनु अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे ये जानने का क्या कुछ है खास आज उनके पास. दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधता के प्रति जागरूकता आज वैश्विक प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में विकसित किए गए मैंग्रोव लर्निंग सेंटर का उल्लेख किया. ये केंद्र न सिर्फ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि सीमावर्ती पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा को भी एक नई दिशा दे रहा है. आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये खास रिपोर्ट.
4: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का कच्छ जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है. अरब सागर और थार रेगिस्तान के बीच स्थित यह क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है. इसी कच्छ में सीमावर्ती कोरी क्रीक के पाडाला क्षेत्र में गुजरात वन विभाग के द्वारा स्थापित मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं.
5: गुजरात के कच्छ में भी दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है. वहाँ कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है. साथियों, पेड़ पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है. जगह चाहे कोई भी हो, वो हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं.
4: नारायण सरोवर कोटेश्वर पर्यटन सर्किट के निकट स्थित इस मैंग्रोव लर्निंग सेंटर की स्थापना तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव वनों के संरक्षण तथा सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है. यहाँ ऑडिटोरियम, व्याख्यान केंद्र, पैदल पथ, अवलोकन मीनार और अन्य सुविधाएं विकसित की गई है. इस केंद्र की विशेषताओं और पर्यावरणीय जागरूकता में इसकी भूमिका के बारे में बताते हुए गुजरात वन विभाग के अधिकारी संदीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि यह केंद्र पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय जैव विविधता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है.
6: मैंग्रोव लर्निंग सेंटर बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि लोग जब वहाँ पे समुद्री सीमा दर्शन के लिए जाएं और जब मैंग्रोव के एक इकोसिस्टम के और मैंग्रोव के कोस्ट को देखते हुए, प्लांट्स को देखते हुए जब उस जगह पर पहुंचे, तो वहां पे बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ मैंग्रोव का जो समस्त जो साइंस है उसको एक अंडरस्टैंड करने को वहां पर मौका मिले. तो वहां जो सेंटर है, सेंटर में बेसिकली इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें कि मैंग्रोव का लाइफ साइकिल, मैंग्रोव का जो रोल है, मैंग्रोव का सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या रोल है, इकोसिस्टम में जो दूसरे जीव है उसको किस प्रकार से करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसमें किस प्रकार का मैंग्रोव का रोल होता है, ये सारी चीजें बताई गई है. तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम एक रिसर्च कर सके, ये सेंटर का डेवलपमेंट किया गया.
4: गौरतलब है कि समूचे गुजरात के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 71% हिस्सा अकेले कच्छ में स्थित है. मैंग्रोव समुद्री तटों को चक्रवात, सुनामी और तटीय कटाव से बचाने में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं. इसके अलावा वे मछलियों, केंकड़ों, प्रवासी पक्षियों और अनेक जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी उपलब्ध कराते हैं. वन विभाग के द्वारा मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स जैसी योजनाओं के माध्यम से मैंग्रोव विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के इस दौर में मैंग्रोव का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि तटीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऐसे में कच्छ का मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरणीय शिक्षा, प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है. परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी.
2: And let's move on to Chhatrapati Sambhaji Nagar, Munish. Three youths from here have developed a mobile app for the blind. With the help of this app, the blind can complete their daily tasks. Among the three, Shaunak Savargaonkar, an engineer, gave more information about this app. So let's listen in.
7: We have created an app called Let's See, which is made for the blind. This app uses the latest AI from Google to give an auditory description of all the surrounding. This app is very simple and has four buttons to describe the surrounding. One button is Smart View, second one is

0: वाओ व्हाट म्यूजिक
1: इंडीड इट इज। दोस्तों आज पुण्यतिथि है त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल की। भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे दरअसल श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके जनक वर्गीज कुरियन साहब के साथ मिलकर जिस हस्ती ने देश में सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी, उनका ही नाम है त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल।

0: दोस्तों वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया था। ये दुनिया में अनोखा अकेला प्लांट था जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल देता था और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवन दास पटेल को 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था।
1: जी, एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू एंटनी क्विन, हु वाज अ मेक्सिकन अमेरिकन एक्टर, पेंटर, राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। और अगर हम इनकी मूवीज की बात करें तो पुरानी मूवीज में मुनीश सबको जरूर याद होगा, लास्ट्राडा, द गन्स ऑफ नेवरॉन, जोरबा द ग्रीक, गन्स ऑफ सैन सेबेस्टियन, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, The Shoes of the Fisherman, The Message, Lion of the Desert, Last Action Hero and A Walk in the Clouds. And today we are also going to talk about Kerry Ray King, who is an American musician best known for being the guitarist and songwriter for the American thrash metal band Slayer. He co-founded the band with Jeff Hanneman in 1981 and remained a member for nearly four decades. Aur yahan par hum Munish sunne wale hain the metal band Slayer's song Where I Reign by Kerry King.

दोस्तों आज जयंती है हरविलास शारदा की, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे। दरअसल पहले भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी एक चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया और शारदा बिल के नाम से मशहूर ये बिल सितंबर 1929 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के मकसद से बहुचर्चित शारदा एक्ट उन्हीं के नाम पर है। हरविलास जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी काम किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था हिंदू सुपीरियोरिटी, जिसमें उन्होंने सप्रमाण ये साबित किया कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हमारे देश की सभ्यता अन्य देशों से काफी आगे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य, दयानंद और लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की पदवियों से भी सम्मानित किया गया। आज ही मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि गोविंद शंकर कुरूप की भी जयंती है। और दोस्तों अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो इजाजत दीजिए हमें, यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया, कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की

0: से हम अनुमति लेते हैं। आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो सुनिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5 बजे हैं, अप्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।
3: बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
4: अरे ऐसी

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पल्हड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदर बसवार, केदमा, जगरना नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडी, कोनपारा, संतपारा, फुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये सामरसिंघा, सोहनपुर, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, गलीमार, लोटान, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजहर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी,

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5:05 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा मध्यम वर्ग कल्याण पर केंद्रित कार्यक्रम। इसके अलावा आप सुनेंगे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम रात 8:00। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की प्रस्तुति होगी। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग मारू बिहाग में ख्याल सुनिएगा। रात 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे राजशेखर बोस। शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा पत्र-उत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली और ये महीना के बागवानी कार्य। आज के सलाहक्रम में राहेर अरहर की उन्नत उत्पादन तकनीक पर जानकारी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र जिला राजनांदगांव के विषय वस्तु विशेषज्ञ आशीष गौरव शुक्ला और साथियों का आज का प्रश्न। सुगम संगीत में कलाकार होंगी सविता दुबे और साथी आज शाम 6:30 पर। और अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में क्रम आजकल का विषय होगा विश्व साइकिल दिवस और होगा क्रम पत्र मिला और यादें। चित्रपट संगीत शाम 7:00, रात 8:05 पर, रात 9:15 पर और रात 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

कल शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम, रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और रात 10 बजे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे आनंद भाट का मराठी सुगम संगीत और उड़िया आधुनिक गीत के कलाकार होंगे विजय कुमार सामंत रॉय। सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत कल रात सुनिएगा स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित कार्यक्रम। समय होगा रात 9:25 पर। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर। कल सुबह 8:30 पर बच्चों के कार्यक्रम बाल वाटिका में बेरा की बात का विषय होगा पढ़ाई संग खेलकूद जरूरी है। साथ ही श्री बिहारी राम साहू की पर्यावरण चेतना पर आधारित बाल कविताएं आप सुनेंगे और क्रम रोचक जानकारी दुनिया के और बाल गीत का आनंद लेंगे। कल सुबह 9 बजे प्रगति के सोपान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर के परिवर्तन अधिकारी श्री गोपाल देवांगन से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंटकर्ता होंगे रमा शंकर। लोक संगीत में पंथी गीत के कलाकार होंगे करमचंद कोसरिया और साथ ही कल सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर। सुबह 10 बजे गैर फिल्मी गीत गजल और कव्वाली के कार्यक्रम स्वरधारा में कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और फरीदा खानम। कल सुबह 11:05 पर होगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित ईमेल भेजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5:25 हुए हैं। अब सुनिए युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी।

0: जीवन की यात्रा में कुछ साधन ऐसे होते हैं जो केवल हमें मंजिल तक ही नहीं पहुंचाते, बल्कि हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। दो पहियों पर चलने वाली यह सरल सी साइकिल की सवारी हमें संतुलन, निरंतर प्रयास और आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीपाली चंद्राकर।
1: और मैं हूं अपेक्षा शुक्ला। आप सभी का इस युवाणी कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और करते हैं स्नेह भरा नमस्कार। दीपाली, क्या तुम्हें पता है कि साइकिल हमें ना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता का भी संदेश देती है।
0: बिल्कुल अपेक्षा, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें साइकिल के महत्व को समझने और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है।
1: बिल्कुल दीपाली, साइकिल केवल एक वाहन ही नहीं है, बल्कि ये सादगी, संतुलन और स्वास्थ्य जीवन शैली का प्रतीक भी है। बचपन की यादों से लेकर जीवन के महत्वपूर्ण सफर तक साइकिल किसी न किसी रूप में हम सभी के जीवन का एक हिस्सा रही ही है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अपेक्षा। आज जब दुनिया प्रदूषण, ट्रैफिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब साइकिल एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान बनकर सामने आती है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों, नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। ये हृदय को मजबूत बनाने में, मांसपेशियों को सक्रिय रखने और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होती है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, साथ ही साथ साइकिल चलाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।
1: बिल्कुल,
0: सुबह की ताजी हवा में साइकिल चलाने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न होता है।
1: बिल्कुल दीपाली, आज बढ़ते प्रदूषण के दौर में साइकिल पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है, और ये किसी प्रकार का धुआं या हानिकारक गैस भी नहीं छोड़ती। इसलिए जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने में हम योगदान दे पाएंगे।
0: बिल्कुल अपेक्षा, एक छोटी सी आदत, छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम बना सकती है।
1: और दोस्तों, साइकिल हमें जीवन का एक सुंदर संदेश भी तो देती है ना दीपाली?
0: हाँ हाँ अपेक्षा, यही कि रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, कभी चढ़ाई होगी, कभी उतार, लेकिन जो पैडल मारना नहीं छोड़ता ना दोस्तों, वही अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है।
1: इसलिए साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि संघर्ष, संतुलन और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा भी देता है।
0: बिल्कुल, एक साइकिल केवल हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता है।
1: बिल्कुल दीपाली, सच कहूँ तो साइकिल का नाम सुनते ही बचपन के जो यादें हैं वो ताजा हो जाती है, जहाँ गिरते पड़ते हमने संतुलन बनाना सीखा था। शायद यही कारण है कि साइकिल हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है, स्थिरता और अविरल।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अपेक्षा, ग्रामीण भारत में साइकिल आज भी लाखों लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: विद्यार्थियों से लेकर कामकाजी लोगों तक साइकिल ने शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के मार्ग को आसान बनाया है।
1: विश्व साइकिल दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि एक संदेश है स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ भविष्य का। ये हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिवर्तन को ला सकती है दोस्तों।
0: बिल्कुल, आइए इस विश्व साइकिल दिवस पर हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन में साइकिल के लिए एक विशेष स्थान बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति, स्वच्छ पर्यावरण और जागरूक समाज, इन्हीं तीनों के मेल से एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है दोस्तों।
1: बिल्कुल।

0: दीपाली, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है।
1: इरशाद,
0: पैडल पैडल बढ़ती जाए, मंजिल खुद मिल जाए, मेहनत की राहों पर चलकर हर सपना खिल जाए। जीवन का यही सार हमें हर पल समझाती है, गिरकर फिर संभलना क्या होता है, ये हमें साइकिल सिखाती है।
1: बहुत सुंदर अपेक्षा।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: साथियों, आज है दिन बुधवार और आज है आप सबका पसंदीदा क्रम पत्र मिला। तो आइए शुरू करते हैं क्रम पत्र मिला।

0: तो साथियों, क्रम पत्र मिला में पहला ईमेल भेजा है हमें ग्राम फुलजर घटारानी से योगेश्वर साहू और डोमेश्वरी साहू ने। इन्होंने ये पत्र भेजा है दिनांक 27 मई की युवाणी के लिए। ये लिखते हैं, 27 मई की युवाणी दिन बुधवार को लेकर आए हमारे दो कंपियर साथी काजल साहू और श्रेया चक्रवर्ती। क्रम आजकल में सुंदर बातचीत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस दिन था क्रम पत्र मिला, जिसमें श्रोताओं के सारे ही प्रकार के पत्र, प्रशंसा, बधाई, सुझावी, शिकायती, सारे ही तरह के पत्रों को ईमेल को शामिल किया गया, जो कि हमें बेहद अच्छा लगा। इस दिन क्रम पत्र मिला में बहुत ही कम पत्र शामिल हुए। श्रोताओं से निवेदन है, कार्यक्रम की समीक्षा जरूर भेजें और सारे ही ईमेल और पत्र शामिल किए गए। कार्यक्रम की सुंदर और प्रभावी प्रस्तुति के लिए हम दोनों ही कंपियर साथी को ढेर सारी बधाई प्रेषित करते हैं। इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए हैं। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, पोटियाकला दुर्ग से संजय सुजाता साहू का, परसाटोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया का, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन का।
1: 27 मई की युवाणी लेकर आए हमारे दो रेडियो साथी काजल साहू और श्रेया चक्रवर्ती। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने टाल मटोल की आदत को छोड़ी विषय पर बातें करते हुए की और आपको उनकी बातें अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक लगी, ये जानकर हमें बेहद खुशी मिली। इस दिन क्रम पत्र मिला था, जिसमें हमने सारे ही पत्रों को स्थान दिया और साथ ही आप सबके तारीफ भरे पत्रों को बेहद ही खुशी से स्वीकारा। साथियों, ये आपका प्यार ही तो है जो हमें अच्छी प्रस्तुति देने की प्रेरणा देता है। आप सब ऐसे ही हमें सराहा पत्र और ईमेल भेजते रहिए, ताकि हम ऐसे ही और भी अच्छी प्रस्तुति देते रहेंगे। बहरहाल, इस दिन एक क्रम आपको अच्छा लगा और अपने हमें ईमेल भेजा, ऐसे ही ईमेल पत्र हमें भेजते रहिए। ईमेल भेजने के लिए धन्यवाद।
0: साथियों, जो अगला ईमेल आया है वो आया है हमें 29 मई की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है करीभदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा निर्मलकर ने। ये लिखते हैं, 29 मई को युवाणी लेकर आए हमारे दो साथी प्रगति तांडी और सुयश साहू ने। आजकल में सपना सफलता की शुरुआत विषय पर बहुत ही प्रेरक विचार रखे और सराहनीय थे वो विचार। क्रम एक मुलाकात में रंगकर्मी अमितेश तिवारी जी की बातचीत हमें बहुत ही अच्छी लगी। साथियों, रंगमंच हमारे समाज का आईना होता है। नाट्य, नृत्य, संगीत के माध्यम से अपनी बात आम जन तक पहुंचाने का ये सशक्त माध्यम है। रंगमंच को आकार देता है रंगकर्मी, जो एक चरित्र को नाट्य के जरिए जीवंत कराता है और उस चरित्र को जीता भी है। संवाद नाटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पात्रों के बीच बातचीत और कहानी को आगे बढ़ाने का एक जरिया माना जाता है। दर्शकों को कैसे बांधे रखा जाता है और उनके बीच रंगमंच के जरिए नाटकों, कृतियों और बौद्धिक समृद्धियों के महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोगों के जरिए उसे पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो होता है एक रंगमंच और अभिनेता, या जिसे हम रंगकर्मी भी कहते हैं। रंगकर्मी जो एक मानवीय समझ को गहराई से पात्रों के द्वारा जाहिर करता है। साथियों, रंगमंच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे एक रंगकर्मी जीता है और जीते हुए उन पात्रों को जीवित कर देता है, जिसे हम काल्पनिक चेत के रूप में हम जानते हैं। सफल, सार्थक और प्रेरक युवाणी की प्रस्तुति के लिए हम दोनों ही साथियों को ढेर सारी बधाई प्रेषित करते हैं। इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए हैं, खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भिट्टे और सुशीला भिट्टे का।
1: 29 मई की युवाणी लेकर आई साथी प्रगति तांडी और सुयश साहू ने आजकल में छोटी शुरुआत बड़ी जीत इस विषय पर बातचीत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। शुरुआती बातचीत बेहद पसंद आई और इस दिन का क्रम एक मुलाकात भी आपको पसंद आया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सबको ढेर सारी जानकारियों से अवगत कराएं और आप सबको ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें बताएं। और क्रम एक मुलाकात में रंगकर्मी अमितेश तिवारी ने से बातचीत आपको पसंद आई, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। इस दिन के सारे ही क्रम आपको पसंद आए और आपने सराहना पत्र के माध्यम से हमें सराहा और बधाई दी, आपका शुक्रिया। हम आपकी बधाई अपने साथियों को प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे ही हमें ईमेल और पत्र भेजते रहिए। साथियों, ईमेल भेजने के लिए धन्यवाद।
0: साथियों, जो अगला ईमेल आया है ये आया है हमें 31 मई की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है धरसीवा से छेदूलाल यादव सीता यादव ने। ये लिखते हैं, 31 मई की युवाणी लेकर आए अपेक्षा शुक्ला ने शुरुआती बातचीत की, जिसमें शुरुआती बातचीत में परिस्थितियों में असफल होने से घबराना नहीं चाहिए, इस विषय पर उन्होंने बातचीत की। आसानी से अगर मंजिल मिलती है तो उसे सफलता नहीं मानना चाहिए और ज़्यादा मेहनत ज़रूरी है, ज़रूर करना चाहिए। सही में जो मंजिल कठिन परिश्रम से मिलती है, उसे मिलने वाली खुशी ही अलग होती है। बहुत ही अच्छी बातचीत हेतु हम अपेक्षा को और संस्कार को बधाई प्रेषित करते हैं। क्रम युवा भारत युवा संकल्प में हर्षिका ध्रुव और ममता सोनी की बातचीत हमें बेहद खास लगी, जिसमें ऐश्वर्या आस्था और आशीष से बातचीत की गई थी। वो फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक सेवा करते हैं। समय क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, परंतु अपने प्रयास से वह समस्या को दूर हो जाएगी, ऐसा बातचीत हमें सुनने को मिला। विद्यार्थियों के लिए इन लोगों द्वारा किए जा रहे कार्य हेतु बहुत ही अच्छा पहल है। क्रम युगल गीत में बेहद ही अच्छे गीत सुनने को मिले, जो कि हमें बेहद प्रेरक लगे। साथ ही युवाणी की प्रस्तुति के लिए हम ढेर सारी उन्हें बधाई प्रेषित करते हैं।
1: 31 मई का कार्यक्रम पेश किया हमारी श्रिया साथी कंपेयर अपेक्षा शुक्ला और संस्कार जैन ने, जिन्होंने शुरुआत बातचीत कठिन रास्ते ही आसान जिंदगी बनाते हैं पर विषय करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शुरुआती बातचीत हमें बेहद खास लगी और ज्ञानवर्धक भी लगी, ये जानकर अच्छा लगा। हमारी कोशिश रहती है साथियों कि आज कल की बातचीत से हम कुछ प्रेरणादायक बात आप सब तक पहुँचाएं, और जब हम आपकी ईमेल्स और पत्र देखते हैं तो हमें बेहद खुशी महसूस होती है और अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा भी मिलती है। साथियों, इस दिन का क्रम जो कि बेहद ही खास था, युवा भारत युवा संकल्प में आपने सुना पैड आर्मी को और साथ ही युगल गीत आपको पसंद आए, ये जानकर अच्छा लगा। साथियों, ऐसे ही हमें ढेर सारे ईमेल्स और पत्र भेजते रहिए ताकि हम और भी अच्छे कार्यक्रम देते रहें। बहरहाल, इस दिन की सफल प्रस्तुति के लिए हम साथी कंपेयर्स को बधाई प्रेषित करते हैं।
0: साथियों, इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए थे। आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल का, चिरमिरी कुरुसिया कलारी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह का भी हमें ईमेल इस दिन के लिए प्राप्त हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1 तारीख के लिए हमें किन श्रोता साथियों ने ईमेल भेजा है। 1 जून के कार्यक्रम के लिए हमें ईमेल आया है हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू जितेंद्र साहू का। ये लिखते हैं, 1 जून दिन सोमवार के युवाणी को लेकर आए हमारे दो कंपेयर साथी प्रगति टांडी और साक्षी मिश्रा ने आजकल में वैश्विक अभिभावक और विश्व दुग्ध दिवस के बारे में बातचीत की। साथ ही इस दिन क्रम सर्जना में वर्षा साहू की कहानी पद्मा सुनने को मिली। साथ ही इस दिन था क्रम इंद्रधनुष, जिसमें हमने अभिनेता आर माधवन के बारे में जाना और उनके फिल्मी गीत सुनने को मिले। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए हम कंपेयर साथी को बधाई प्रेषित कर रहे हैं।
1: जून का कार्य

0: कार्यक्रम पेश किया प्रगति तांडी और साक्षी मिश्रा ने, जिसमें उन्होंने वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस की जानकारी दी। साथ ही इस दिन क्रम सर्जना में वर्षा साहू की पद्मा पर विषय पर कहानी सुनने की मिली खास लगी। इस दिन का क्रम इंद्रधनुष अभिनेता आर माधवन पर केंद्रित था। अभिनेता आर माधवन के जीवन पर खास जानकारी सुनने को मिली और साथ ही उनके फिल्म के गीत सुनने को मिले। सफल प्रस्तुति के लिए कंपेयर्स को ढेर सारी बधाई। साथियों, आप सबके ईमेल्स देखकर हमें बेहद खुशी होती है और ये आपका स्नेह और प्रेम ही तो है साथियों, जो हमें अच्छी प्रेरणा देते हैं और प्रेषित करते हैं। हम सफल प्रस्तुति के लिए प्रगति साक्षी को ढेर सारी बधाई देते हैं। ईमेल भेजने के लिए धन्यवाद।
1: साथियों, 1 जून के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए थे भाटापारा से बचकमल और मोतीलाल यादव का। साथियों, ये तो थे हमारे सराहना पत्र। अब देख लेते हैं एक बधाई पत्र, जिसे भेजा है खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागेशपुरे ने और राधेश्याम नागपुरे ने। ये लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित युवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपके युवाणी कार्यक्रम के नए और नियमित श्रोता हैं। आप हमारे इस पत्र को हमारे अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आपका भी बहुत ही धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं।
0: साथियों, पता नोट करिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 97 युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर और पिन कोड है 4920001।
1: साथियों, आप हमें ईमेल के द्वारा भी सराहना पत्र भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है AIRYOUTH9@gmail.com और सब्जेक्ट कोड है Y1। साथियों, सब्जेक्ट कोड लगाना ना भूले। क्रम पत्र मिला यहीं तक।

0: साथियों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम खुश हो जाते हैं, चाहे हम कितनी भी तकलीफ में हो क्यों ना हो, क्योंकि हम उनके चेहरे को देखकर हमें सुकून मिलता है।
1: वाकई दीपाली, और जरूरी नहीं साथियों कि वो हमारा कोई साथी ही हो या हम जिसे पसंद करते हैं वो वही व्यक्ति हो। जैसे मेरे लिए इस सुकून का मतलब पता है क्या है?
0: क्या मतलब?
1: मेरी मौसी। मतलब ये दीपाली कि अगर मैं परेशान होती हूँ ना, तो कुछ भी, मतलब कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ या थोड़ा सा लो फील करती हूँ, तो मैं तुरंत ही ना अपनी मौसी को कॉल करती हूँ और सीधा उनसे बात करती हूँ।
0: और फिर सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाती है ना?
1: बिल्कुल दीपाली, सारी चिंता दुख दर्द सब गायब हो जाता है। और साथियों, आपके भी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा, तो ये गाना उनके लिए।

0: किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने।
1: और पसंद तीन श्रोता साथियों की महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन कमलेश्वरी कुमारी प्रतिमा कुमार साहू, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी रेखा मोतीलाल साहू और देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। वाह अपेक्षा, क्या खूब गाना सुनाया तुमने। मन खुश हो गया है और हमारे दोस्तों का भी मन खुश हो गया होगा, है ना।
0: वाकई दीपाली, पुराने गानों की तो बात ही अलग होती है। और इन गानों को सुनकर आज हम युवा हों या फिर नई पीढ़ी के बच्चे, सारे ही खुश हो जाते हैं।
1: वाकई, और कुछ नाम और आवाज तो सदियों तक याद रहेंगी।
0: बिल्कुल, उनमें से एक है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज के तो हम सारे ही दीवाने हैं।
1: तो ये अगला गीत उनके ही स्वर में।

0: साथियों, लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत। गीत लिखा शैलेंद्र ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।
1: और पसंद तीन श्रोता साथियों की शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल माजिद कुरैशी, रूहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, भाटापारा दतरंगा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा।
0: वादों से वादे तो सभी कर लेते हैं, वादों को निभाना मुश्किल होता है। दिल तोड़ना सबको आता है, दिल जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। वो गुजरा जमाना बीत गया जब वादा निभाया करते थे, अब वादे के वादे किए जाते हैं, वादों से दिल बहलाया नहीं करते।
1: तो दोस्तों, वादों पे इतनी बातें हो ही गई हैं, तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ ने, गीत दिया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आरडी परमन ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मी मीना यदु की, मगरलोड से पुनुराम साहू, तेजस्वी राजश्री राजवीर साहू की, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार बंसीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव की। दीपाली, बचपन और गर्मी की छुट्टियां क्या ही यादें हुआ करती थी, है ना?
0: वाकई अपेक्षा, आज जब हम बड़े हो गए हैं और जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हमें बेहद याद आता है।
1: बिल्कुल, और साथियों नानी का घर भला किसकी यादों में नहीं होगा। गर्मी का इंतजार ही हमें नानी के घर जाने के लिए होता था।
0: बिल्कुल।
1: और आज जब हम बड़े हो गए हैं और हम खुद मासी बन गए हैं, बुआ बन गए हैं, और हमारे घर जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो उन्हें देख कर हमें वो यादें वापस से याद आ जाती है।
0: सही बात है।
1: बातें तो आगे भी जारी रहेंगी दोस्तों, सुनते हैं ये अगला गीत।

0: लड़की साथियों, अभी आप
1: सुन रहे थे फिल्म छाया का ये गीत। स्वर दिया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने, गीत दिया है राजेंद्र कृष्णन ने और संगीत सजाया है सलील चौधरी ने।
0: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा की, धमतरी से कोमल सोरी, गजानन नेताम, सोहन यादव, नंदलाल मरकाम, जयंती सोरी और रिया मरकाम का। साथियों, आप सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें, यही हमारी कामना है।
1: बिल्कुल साथियों, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं।
0: वाकई तो सुनाते हैं अंतिम कड़ी में कार्यक्रम यादें की ये अंतिम प्रस्तुति।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी का ये गीत। स्वर दिया है मुकेश ने, गीत दिया है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने।
1: और पसंद थी श्रोता साथियों की महासमुंद से साधु राम यादव, रामकली यादव, आशा, किरण, रेमिन, डाली और संजय यादव की। ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी वर्मा की। चरौदा से सुजान वर्मा, सौहाद्र, आयुषी और कृत वर्मा की। साथियों, वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दे कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे माटी के आखर और माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला
0: और दीपाली चंद्राकर को
1: इजाजत और स्वीकारे हमारा
0: नमस्कार।

0: अभी आप युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध

हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें।

अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल ह अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश और प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दू जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली 4 जून के मतगणना होगी। कालिज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयोग हा मतगणना के जम्मो तैयारी लगभग पूरा कर ले है। बता दन कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर 1 जून के मतदान होए रहिस। नगरीय निकाय में अध्यक्ष और

0: संसद पद पर हुए मतदान में 84.58% मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग करें। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगीस। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में राखे गए एक ठीन उच्च स्तरीय बैठका में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ले प्रदेश के नंदिया और बड़का नरवा में होवत रेती के अवैध उत्खनन ऊपर चर्चा करें। राज्यपाल अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के निर्देश दिन। उमन कहिन कि रेती राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा के निर्माण पर एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन ओखर अनियंत्रित दोहन ले पर्यावरण ला गंभीर नुकसान पहुंचा थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली 4 जून के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमड़ा में राखे गए जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री के प्रवास लले के जिला कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन आज शिविर स्थल के निरीक्षण करके तैयारी के संबंध में जानकारी लीन। एकर पहली मुख्यमंत्री काली कांकेर जिला में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिला में संचालित योजना और विकास काम के समीक्षा करें। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाला ले जुड़े धन शोधन मामला के जांच के तहत आज राज्य के आने आने जगह में तलाशी अभियान चलाईस। एक कार्रवाई भिलई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकाना में करेगीस। तलाशी लिए गए प्रमुख जगह में पूर्व CGPSC सचिव JK ध्रुव के भिलई स्थित निवास शामिल है। CRPF के सुरक्षा घेरा में ईडी अधिकारी मन दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन देन ले जुड़े अभिलेख के जांच करें। ये कार्रवाई बच्चर 2020 ले 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के CBI जांच के आधार में करे जाते। ईडी के टीम दुर्ग जिला के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमृत कुमार खलखो के निवास के घलो जांच करीस। अधिकारी मन संपत्ति, बैंक खाता और दूसर वित्तीय अभिलेख ले जुड़े दस्तावेज के परीक्षण करें। इकर अलावा ईडी राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास में घलो दबिश दिस। छत्तीसगढ़ में सड़क ऊपर रहिया लैका मन के पुनर्वास पर जून महीना में विशेष सघन अभियान चलाए जाते। राज्य सरकार के बाल सक्षम नीति के तहत सड़क में रहिया भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लैका मन के पहचान करके उमन के बचाव और पुनर्वास करे जाते। अभियान के तहत लैका मन ला सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते। जिला कलेक्टर मन के अगुवाई में गठित विशेष बचाव टीम डहाले चिन्हित हॉटस्पॉट जगह में अभियान चला के लैका मन ला संरक्षण दे जाते। राज्य सरकार कहे है कि लैका मन के पुनर्वास सरलक प्रक्रिया हरे और ये काम साल भर तक चालू रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के NDA सरकार के 12 बच्चर पूरा होए में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले आज रतिहा 8 बजे ले छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम के प्रसारण करे जाही। एक कार्यक्रम के बेरा 5 मिनट के रही और एक प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके शंकर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिखित परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दे है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 ले 9 जून तक रखे जाही। परीक्षा हरेक दिन 2 पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक आयोजित करे जाही। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित करे जाही। आयोग बताए है कि प्रवेश पत्र 25 मई के जारी करे जा चुके है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ले अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत है। आयोग स्पष्ट करे है कि कोनो भी अभ्यर्थी ल अलग से प्रवेश पत्र या SMS नहीं भेजे जाही।

0: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ह दसवीं और बारहवीं के दूसरा अवसर पर मुख्य परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई ले 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई ले 21 जुलाई तक रखी जाही। दोनों परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12:15 बजे तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ ला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राष्ट्रीय सम्मान मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला राज्य पर गर्व के बात बताइन है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाला राज्य मन की श्रेणी में सबले ज्यादा वेंडर पंजीकरण के मामला में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान पाए है, जेखर भर राज्य के चयन पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड खातिर हुए है। मुख्यमंत्री है ए उपलब्धि पर ऊर्जा विभाग क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनी के टीम ला बधाई दिन है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना पर आवेदन आमंत्रित करे है। ये प्रमुख राष्ट्रीय पहल के उद्देश्य वैश्विक स्तर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थान और उद्योग ले भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ और पेशेवर मल्ला देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र को ती आकर्षित करना है। दुर्ग पुलिस शेयर बाजार में निवेश के नाव में लाखों रुपया के धोखाधड़ी के मामला में एक जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार सुपेला रहवासी एक मनखे है ज्यादा मुनाफा के लालच दे के कई मनखे मल्ला रकम निवेश कराइस और उमल्ले करोड़ों रुपया के ठगी करीस। शिकायत के आधार में पुलिस आरोपी के खिलाफ दो ठिन आने आने प्रकरण दर्ज करे है। पुलिस आरोपी कराले एक ठिन कार लैपटॉप कंप्यूटर उपकरण मोबाइल फोन चेकबुक और लेन देन ले जुड़े दस्तावेज जब्ती करे है। आरोपी ला न्यायिक रिमांड में भेज देंगे है। और पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधड़ चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधि शुरू हो गए है। एक सेती राज्य के कई ठिन जगह में मौसम अचानक बदला थे। इही बीच बीजापुर जिला के पेरमपल्ली गांव में गाज गिरे ले एक माई लोगिन के मौत हो गए। उन्हें दंतेवाड़ा जिला के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में काली गाज गिरे ले 11 मनखे एक चपेट में आ गिन, जेमाले एक महिला के मौत हो गए। एकर अलावा मनेन्द्र कड़करा चरखर गांव में घलो गाज गिरे ले एक महिला के मौत हो गए। उन्हें 5 जिन दूसर मनखे झुलसा गए है। और अब थोरकुन समाचार सार में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त आईएएस बीकेएस रे के निधन हो गए है। उमन लंबा बेरा ले बीमार रहीन और ओखर उपचार रायपुर एम्स में चलत रहीस। रायपुर नगर निगम है संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाला यूजर चार्ज में बढ़ोतरी करे है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्ति में सालाना 120 रुपया उन्हें व्यावसायिक संपत्ति में 360 रुपया के बढ़ोतरी करे गए है। और शक्ति जिला के सेंदुरस गांव में पाछू रतिहा एक सियान दंपत्ति के हत्या कर देगीस। पुलिस मामला के जांच शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल है अवैध और अनियंत्रित रेत खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। और प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में 6:20 होने को है। अब दिल्ली से समाचार होंगे।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगालस्य तृणमूल कांग्रेस दलात् निष्कासितः TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः 21 जनाः मृताः। अपि च भारतं पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौरविकासविपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकटकारणेन वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक सम्बद्धया मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीयवर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
3: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
2: राष्ट्रपतिः सर्वासां संस्थानां हितधारकान् आहूतवती यत् जनजातीययुवभ्यः सम्मानजनकजीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीयबालकाय विद्यालयशिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
3: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
2: कर्णाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान्। कर्णाटक राज्ये कांग्रेस विधानमण्डलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25वां मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च 12 मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्व सत्ता रूढ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायकः ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः। तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतीन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुम् आग्रहः कृतः। अस्मिन् अन्तरे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य उपरि दलविभाजनस्य षड्यंत्र रचनायाः आरोपं कृतवती। एतेषां राजनैतिक घटनाक्रमाणां प्रति संपूर्ण राज्यस्य दृष्टिः केन्द्रीभूता वर्तते। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रान्तिनिलये भीषणाग्निकाण्डः 21 जनाः मृताः। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीयनगर क्षेत्रस्य एकस्मिन् विश्रान्तिनिलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके च आहताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवदत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्येषाम् आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40 अधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्मिन् दुखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। वार्षिक सौर क्षमता वृद्धौ भारतम् अमेरिकाम् अतिक्रमितवत्। भारतं 25,000 वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौरविकास विपणकम् अभवत्। भारते स्थापित सौरक्षमतायाः उल्लेखनीयं 55 GW परिमितं अतिक्रमितम् अस्ति, येन देशस्य 50% जीवाश्महीन इन्धनक्षमतायाः लक्ष्यं साधयितुं नियतसमयात् पूर्वमेव तस्य राष्ट्रिय निर्धारितं योगदानं पूरयितुं च साहाय्यं भवति। केन्द्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी वर्यः अद्य उक्तवान् यत् देशस्य सौर विकास गाथा वैश्विक मानदण्डानि स्थापयति। अरावली पर्वत श्रेण्याः सीमांकन समीक्षार्था सर्वोच्च न्यायालयेन विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। सर्वोच्च न्यायालयेन अरावली पर्वत श्रेण्याः परिभाषा सीमांकन संबद्ध विषयाणां स्वतंत्र समीक्षार्थं उच्चाधिकार युक्तायाः विशेषज्ञ समितेः गठनस्य निर्देशः प्रदत्तः। अस्याः समितेः अध्यक्षतां भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषदः महानिदेशिका कंचन देवी वहिष्यति। न्यायालयेन समितये चालितवर्षस्य अगस्तमासस्य 31 स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य केन्द्रीयमन्त्रिणः चिराग पासवानस्य लेखं सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रदर्शितवान्। तेन उक्तं यत् लद्दाख प्रदेशे प्राप्तम् अद्वितीयं वेरीफलं नवीनावसराणां विकासस्य प्रतीकः अस्ति। लेखे लद्दाखस्य उद्यमशीलतया तथा मूल्यवर्धनद्वारा विकासस्य नूतनद्वाराणि उद्घाटितानि इति प्रकाशितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, समय है सुगम संगीत का। आज इसमें फनकार हैं सविता दुबे और साथी। सबसे पहले सुनिए नानक की रचना सविता दुबे के स्वर में।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

सुगम संगीत में आज कलाकार हैं सविता दुबे। डॉक्टर शांति जैन की रचना आप सुनिए, इनका लिखा गीत सविता दुबे की आवाज में।

0: सुगम संगीत में आज फनकार थी सविता दुबे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
11: और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं, ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल 4 जून को मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद से प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर चर्चा की। राज्यपाल ने अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन इसके अनियंत्रित दोहन

0: पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। श्री डेका ने कहा कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 4 जून को गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कांकेर जिले में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणाम उन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के तहत आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकानों पर की गई। तलाशी लिए गए प्रमुख स्थानों में पूर्व CGPSC सचिव J.K. ध्रुव का भिलाई स्थित निवास शामिल है। ये कार्रवाई वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच के आधार पर की जा रही है। ED की टीम ने दुर्ग जिले के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमृत कुमार खलको के निवास पर भी जांच की। अधिकारियों ने संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय अभिलेखों से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके अलावा राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के निवास पर भी तलाशी ली गई। वहीं ईडी ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर भी दबिश दी। सूत्रों के अनुसार ईडी कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत, उससे जुड़ी संपत्तियों तथा वित्तीय लेनदेन की श्रृंखला का पता लगाने के साथ ही मामले में अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रात 8 बजे से छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट की होगी और इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया है कि प्रवेश पत्र 25 मई को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देशभर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और

0: अनुसंधान केन्द्रों की ओर आकर्षित करना है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्तियों पर सालाना 120 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना 360 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये अतिरिक्त राशि संपत्ति कर के साथ ही वसूली जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। इस बीच बीजापुर जिले के पेरमपल्ली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ के पास चरखर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया को विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। रायपुर के गुढ़ियारी में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के कारण कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की लारा परियोजना ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: चित्रपट संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अजनबी से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

अगर तुम ना होते, लता मंगेशकर की आवाज में। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

आंचल। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

चित्रपट संगीत का अगला गीत है फिल्म कारवां से आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 8:05 पर भी सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम मोनिका।
1: राम राम रुक्मणी और संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दुनों के
0: राम राम। मोनिका देख, मौसम में बदलाव होते ता एकर प्रभाव हमर स्वास्थ्य ऊपर देखे में मिलते हैं। आ देख, नौतपा सिरागे फिर गर्मी अभी तको हुवत है, आ फिर हम मनखे मन अपन बर और दूसर प्राणी खातिर मौसम अनुसार तैयारी जरूर करते हैं।
1: सिर तो उन बात कहा था रुक्मणी, देख गर्मी में कहूँ थोड़की वर्षा होगी तो मल्ला सुकून मिलते, ऐसने हमार बर बड़े राहत और सुकून वाले क्रम होते जेन बुधवार के चौपाल में होते। बताता कौन क्रम के गोट करा था मैं?
0: क्रम चिट्ठी मिली इसके और तुर हाथ में जो हमार संगवारी मन ईमेल के माध्यम ले संदेश भेजे हैं ते रखे हैं।
1: देख हमले ज्यादा हमार संगी मन ये क्रम के खातिर उछा मरे थे, कबर की मेल के माध्यम ले ओखर मया आशीर्वाद संग हमर करा पहुंचते कार्यक्रम खातिर ओखर मन के विचार। तो भाई देरी नहीं करन, हम बताते हैं संगवारी मन कालिक के भेजे हैं। पहली जन पाती है ये है आज के दिन खातिर। अरे मतलब संगी हो इतना जन विचारो, मैं हाँ पाछू बुधवार के गोट करा था, माने 27 मई के ये दिन खातिर संगवारी मन पाती में लिखे हैं कि खेती किसानी के बुता माँ हर छोटे बड़े बात के ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी बने गुणवत्ता संग बने फसल उत्पादन घलुक मिलते। हमर थारी माँ साग भाजी पौष्टाई वाले जिन्हें सोते जिला बारी बखरी या खेत में लगाए खातिर जतन बहुत जरूरी है। ये दिन कद्दू वर्गीय फसल में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन खातिर डॉक्टर SM अली हुमायूं जी बड़ विस्तार ले जानकारी देन, कौन से कीड़ा कब लगते, एकर का उपचार कौन तरीका ले करे जा सकते, इसने पौधा के कौन अवस्था में कौन रोग लगते ये रोके खातिर और रोग हो गए तो उपचार कैसे करें बड़ विस्तार ले बताएं। ऐसा उपयोगी जानकारी खातिर चौपाल प्रभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई, और ये बधाई भेजिए हमारे संगवारी मन है।
0: कौन संगवारी मन का?
1: ग्राम सहाग माली ले हैं, मालगी ले हैं, सहा मालगी ले हैं, सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश वंशी, प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, अमलेश्वर ले हैं, डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, गुड़िया और रियांश ठाकुर मन।
0: मोनिका सबले पहली तो हमार जम्मो संगी मनला हमार डहर ले हमार चौपाल परिवार के डहर ले अंतस ले धन्यवाद। कार्यक्रम ला सुन के ईमेल के माध्यम ले चिट्ठी के माध्यम ले अपन विचार कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति पर बधाई भेजे खातिर। मोनिका 27 मई के आज के सलाहक्रम में कद्दू वर्गीय फसल जेमा कद्दू, लौकी, तुरई, करेला, खीरा, खरबूजा और फसल आते उमा कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन कैसे करन जेखर ले हमार फसल सुरक्षित रहे उत्पादन अच्छा मिले, ये विषय में डॉक्टर SM अली हुमायूं जी द्वारा दे गए जानकारी संगी हो आप मल्ला अच्छा लागिस। ईमेल के माध्यम ले बधाई भेजे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फिर ये पाती है 28 मई के प्रसारित क्रम आज की सलाह खातिर। ये दिन विषय रही से पताल के प्रमुख रोग और प्रबंधन, विशेषज्ञ रही ने डॉक्टर नरेंद्र लागपाले जी हाँ, जिन्हा बड़फरिया के बताएं कि पताल के खेती करत हैं तो कौन अवस्था में कौन प्रकार के रोग के समस्या देखा में आ सकते, एकर निवारण कौन तरीका ले करन जानकारी बहुत फायदा की लगी। ऐसे फायदा वाले जानकारी के प्रस्तुति खातिर चौपाल प्रभाग संघ डॉक्टर साहब ला घलोक हृदय ले धन्यवाद। और ये पाती भेजी हमारे संगवारी मन हा पिपरिया ले ही कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा ले ही दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकू गुप्ता और राघव गुप्ता, परसटोला अम्बगढ़ चौकी ले ही ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमिंद्र और तुषाणी मसिया मन।
0: मोनिका देख टमाटर माने पताल हमार भारत के एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, इमा विटामिन खनिज लवण और पोषक तत्व ले भरपूर होते। टमाटर के अच्छा उपज पाए बर रोग ले बचाव जरूरी होते, एकरे पाए के समय मा रोग के पहचान और उचित प्रबंधन जरूरी होते और रोग के पहचान कैसे करन ओकर प्रबंधन कौन ढंग ले करन ये जम्मो विषय में बने फरिया के जानकारी दिन डॉक्टर नरेंद्र लागपाले जी। संगी हो जोन जानकारी आप मन ला महत्ता के लागिस कार्यक्रम ला सुने बर और सुन के कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति बर बधाई भेजे खातिर आप मन के अंतस ले धन्यवाद।
1: सिर तुन कहा था देख पताल तो ऐसे ना भाई कि हर सब्जी में डरते और नहीं तो फिर पताल की चटनी बना ले बड़ सुगर लगते स्वाद में। तो हम बर्थन आगू पाती माँ हमारे संगवारी में लिखते हैं कि सरकारी काम का जो है फिर घर खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई फिर कोनो प्रकार के लेखा जोखा बेरा बखत माँ हमारे बड़ काम माँ थे। ये बातला समझत बूझत क्रम रही से हलो चौपाल जिखर प्रसारण हुई 29 मई शुक्रवार के संझा चौपाल माँ, विषय रही भूमि के जरूरी दस्तावेज बनाए की प्रक्रिया और ओखर रख रखाव। सिरतुन माँ ये बहुत उपयोगी विषय रही काबर की आज के बेरा माँ ऐसा दस्तावेज मन अपन पास सहेज के रखना बहुत जरूरी हवे। पता नहीं भाई कब काबर एकर जरूरत पड़ जाए। ये उपयोगी जानकारी के हलो चपाल क्रम में प्रसारण खातिर बधाई। और संगे संग श्री सौरभ कश्यप जे नायब तहसीलदार रायपुर के रहने वो मन ला हृदय ले धन्यवाद देवा थे हमारे संगवारी मन हा। आप मन ही कोई ग्राम भांगी टोला ले हैं ननका राम ध्रुवे जामुनबाई ध्रुवे फिरत राम ध्रुवे और मालती ध्रुवे ग्राम भड़गा कोदवा गोडान ले हैं श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी रानी रजनी मरावी और राहुल मरावी मन
0: मोनिका देख कोनो भी क्षेत्र होवे कोनो भी काम बूता करन जानकारी बहुत जरूरी होते। जानकारी होए ले हमला नुकसान नहीं होवे कोनो हमर फायदा नहीं उठा सके। फिर बात आते भूइया के दस्तावेज के तब भाई ओखर जानकारी बहुत जरूरी है। फिर कबू कबू हमर से थोड़ से भी भूल हमर बड़े नुकसान के कारण बन सकते। तो ये विषय में जानकारी के महत्ता ला समझत हेलो चौपाल में एखर ले जुड़े जम्मो सवाल के जवाब दें श्री सौरभ कश्यप जी। संगी हो ये जानकारी आप मल्ला उपयोगी लागिस बधाई भेजे खातिर अंतसले धन्यवाद।
1: सिरतुन में रुक्मिणी जी कतकुन बखत ऐसे होते ना कि अचानक उन्हों कागजात की जरूरत पड़ जाती है। भाई अब तो बहुत सुविधा हो गई है कि हर मनखे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कतकुन ऐप ऐसे होते जिला अपन जानकारी डाल के आराम से मन से अपन वो जानकारी ला ले सकते हैं। तब बोले ना आज के बेरा में कागज पात्र ला तो संभाल के रखे की जरूरत
0: पड़ के होवे घर के होवे कोनो भी जीनिस के होवे लइका मन के पढ़ाई लिखाई के होवे दस्तावेज ला संभाल के रखना बहुत जरूरी है।
1: अब भाई जिन दूसरी अवैया पाती है ये है 30 मई के चौपाल पर संगवारी मन लिखते है की बैकयार्ड मुर्गी पालन विषय माँ गुड़ बात लाभ की लगी और ए दिन किसानवाड़ी माँ क्रमाज की सलाह माँ जानकारी सुने पशुधन भर साल भर हरा चारा उपलब्धता खातिर तैयारी और बतावत रहीन विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक जी। सिरतुन माँ हम पशुपालन करैया मन खातिर साल भर हरा चारा की व्यवस्था कर पाना थोड़किन समस्या होते एक निवारण ये गुड़ बात माँ होइस। डॉक्टर साहब बड़ सुघर तरीका ले बताइन हम पशुपालन करैया मन खातिर ये जानकारी बहुते उपयोगी रही। ऐसा सुघर उपयोगी जानकारी के प्रस्तुति खातिर चौपाल प्रभाग और डॉक्टर साहब ला बधाई बधाई भेजिए संगवारी हैं धमधा ग्राम सुखरी कला ले हैं अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य अंजलि जंघेल चढ़ोंगरी पिपरिया ले हैं दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी साहू और माया साहू मना।
0: मोनिका देख पशुपालन में हरा चारा के बहुत महत्व है। हरा चारा में पशुधन पर जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन खनिज मिलते जेखर ले पशुधन के स्वास्थ्य अच्छा रहते। दुधारू पशुधन है तो खर दूध बाढ़ते एक पाए के पशुपालक मनला हरा चारा मिले एक व्यवस्था करन हमन और मौसम हिसाब ले हम हरा चारा के खेती कर सकथन और कैसे लेवन कौन से फसल लेवन ये जम्मो विषय के बारे में फरिया के जानकारी दी डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक जी। जोन जानकारी संगी हो आप मनला अच्छा लागिस बधाई भेजे खातिर अंतसले धन्यवाद।
1: रुक्मणी हमारे चिट्ठी मिले इसके क्रम में आओ आगे बढ़बो फिर होकर पहली सुनते ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: रुक्मणी,
4: हाँ मनिका,
3: हम संगवारी मन के पाती पढ़त रहे तो भाई ये पाती ही जिन्हें ये संगवारी मन लिखते है कि खेती किसानी की बुता मा छोटे से छोटे और बड़े बड़े यंत्र मन हमर मेहनत और समय बचाए खातिर बड़ काम मा थे। 31 मई के सुनेन क्रम आज की सलाह मा ये लाभ के जानकारी विषय रही लागत और श्रम बचाए खातिर कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाएं। बताएं विशेषज्ञ डॉक्टर आर के नायक जी, हाँ आप मन हाँ बड़ विस्तार ले समझें कि खेती किसानी के काम बुता मा ये यंत्र मन कितना सहयोगी हवे। इखले समय और मेहनत वास्ते लागत कम लागते और सारी जानकारी हमार लाभ के रही। ऐसा लाभ के जानकारी खाते डॉक्टर साहब और चौपाल प्रभागला बधाई बधाई हमारे संगवारी मन भेजे हैं। ये मन है अडार नानघाट ले हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले है शिवा यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण यादव, चुआ यादव, कन्हैया, निर्मला यादव। लोरमी चचेड़ी ले हैं अमन मरावी, चमन मरावी, सुमित रिंझा और तनुराही मरावी मनहा।
4: मोनिका, हमर भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो खेती किसानी ला बढ़ावा दे के हर प्रयास हमला करना चाहिए। आधुनिक समय में खेती किसानी के काम ला सरल, तेज और लाभदायक बनाए खातिर कृषि यंत्र के उपयोग बहुत जरूरी हो गए है। कृषि यंत्र के उपयोग ले हमर मन के श्रमता कमती लगबे करते, संगे संग लागत और समय तको बाज थे। आज के समय में ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, स्प्रेयर, पंप सेट जैसे कृषि यंत्र के उपयोग ले हमर खेती किसानी के काम बूता में बड़ बदलाव आए है। संगी हो जानकारी आप मन ला उपयोगी लागे, कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति पर बधाई भेजे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रुक्मणी, कतकुन बखत ऐसे होते ना कि जिसे छोटे यंत्र मन है तो कतकुन संगवारी मन अकेला अकेला ले लेते, पर कतकुन बखत तो बड़े यंत्र होते तो हमारे संगवारी मन समूह बना के लेते और फिर सब जन उपयोग तो करबे करते। कतकुन बखत इला किराया में चला के रुपया पैसा घलोक कमाते और भाई अगर रख रखाव की बात करें तो ये तो बहुत ही जरूरी है। काबर की अगर हमन मशीन के ध्यान नहीं देवो तो एक बेरा बाद मशीन गला हमारे काम में
4: नहीं बनवाए में बहुत ज्यादा खर्चा घलोक आते।
3: तो भाई अब बर्थन आगो पाती पर संगवारी में लिखते हैं कि आज के बेरा में ऐसे ऐसे बीमारी के नाम सुनेला मिलते जिला कबू जाने नहीं रहे। कारण मनखे के रहन सहन और खान पान में बहुते बदलाव आए है। अब विचारो हमारे घरेज में कुछ औषधि पौधा लगा लेवन तो बेरा बखत में कितना काम आही। आज के बेरा में रिकिम रिकिम के रसायन मन के उपयोग ले हमारे शरीर में गलत प्रभाव पड़ते। ऐसे माँ औषधि पौधा मन के खेती ये विषय में जानकारी सुनें 1 जून के कार्यक्रम में। क्रम रही आज की सलाह और जानकारी दें डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा जी। हाँ आज की बेरा माँ स्थिति परिस्थिति ला देखा जानकारी है बड़ नीक लागिस। ऐसन लाभ के जानकारी खातिर डॉक्टर साहब और चौपाल प्रभागला गाढ़ा गाढ़ा बधाई और ये गाढ़ा गाढ़ा बधाई हमारे संगवारी मन भेजे है मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू मना और कोका भेलाई ले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल मना।
4: मोनिका देख, औषधि पौधा मन की खेती आज के समय में एक लाभकारी कृषि व्यवसाय है। औषधि पौधा मन के उपयोग आयुर्वेद और दूसर चिकित्सा पद्धति में दवाई बनाए बर उपयोग करे जाते हैं। तुलसी हो गए, अश्वगंधा, एलोवेरा, सर्पगंधा, सतावरी और गिलोय प्रमुख औषधि पौधा है। औषधि पौधा हमारे स्वास्थ्य पर बड़ उपयोगी होते तो ज्यादा ले ज्यादा औषधि पौधा मन के खेती ला बढ़ावा देवन करन ये हमारे आर्थिक लाभ पर तको जरूरी है। फिर जानकारी हो के बात करन जेखर ले नुकसान के संभावना संगी हो कमती होते और संगी हो यही जम्मो बात ला ध्यान देवत हमारे कार्यक्रम में हमन हर जरूरी जानकारी आप मन ला देवाथन जेखर आप मन उपयोग कर सको और लाभ ले सको।
3: बिल्कुल लाभ की बात है तो संगवारी हो आप मन के पाती घलोक हमर मन पर लाभ के होते काबर की एकले हमार उत्साह बढ़ते। भाई ऐसे है कि अभी तो चिट्ठी मिले क्रम नीचे सिरावत है, फिर आप मन हमला पाती लिख सकता हो, मेल कर सकता हो। मेल करे खातिर हमारे मेल आईडी है राय चिट्ठी मिलिस 7@gmail.com। अब संगवारी हो देखो गोट बात तो बड़कन करें आप मन के मया दुलार आप मन के पाती संग मिलीस। फिर रुक्मणी अब हमारे चौपाल में कहो ही पता
4: अब सुन लेथन एक सुघर गीत
3: तो संगवारी मल्ला सुनाथन घलोक
4: असुनथन ये गीत जला गाए हैं सालिक राम देवांगन, भगवती साहू और मंजू चतुर्वेदी।
3: हाँ।

0: अभी सुने सुघर गीत, जिला गाय रही सालिक राम देवांगन, भगवती साहू, मंजू चतुर्वेदी।
1: देख रुक्मणी, हमारे संगवारी मल्ला बेरा बेरा माँ जानकारी हमारे विशेषज्ञ मन ले देवात रही थन। ऐसे है कि ये जानकारी मन हमारे संगवारी मल्ला निक लाग थे। अभी जैसे चिट्ठी मिले इस क्रम के माध्यम ले हमला पता चले, तो भाई ऐसे है संगवारी हो कि आज हमारे क्रम है आज की सलाह, जिसमें जानकारी के विषय है राहेर अरहर के उन्नत उत्पादन तकनीक। और ये विषय माँ बतावत है विशेषज्ञ आशीष गौरव शुक्ला जी। हाँ, आप मन हाँ विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जिला राजनांदगांव माँ। और आप मन संग गुड़ बात करे है रुक्मणी है तेनला सुनथन और आपो मनला सुनाथन क्रम आज की सलाह माँ।
0: संगवारी हो, स्वस्थ रहे बर जरूरी होते पुष्टई आहार। पुष्टई आहार माने जेमा हमर बर जरूरी जम्मो पोषक तत्व होवे, जैसे कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन। फिर बात करें प्रोटीन के, ता प्रोटीन तो वैसे बहुत अकन जिनिस होते जेमा पाया जाते। फिर प्रोटीन के सबले अच्छा साधन होते दाल। तो संगी आज हमन दलहनी फसल में राहेर फसल के खेती के बारे में जानबो और ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच हैं आशीष गौरव शुक्ला जी। आप मन मृदा विशेषज्ञ हो कृषि विज्ञान केंद्र जिला राजनांदगांव में। आशीष जी, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
2: राम राम।
0: आशीष जी, तर खेत के तैयारी उन्नत किस्म कौन प्रकार के माटी होना चाहिए?
2: नमस्कार मैडम। जैसे की है कि जो हमारे अरहर की फसल है जो हमारे प्रोटीन पर बहुत जरूरी है जैसे आपन बता हो, और वो फसल आज के होकर बोए समय जो है वो जून से जुलाई तक ही लग सकते हैं, जिनमें ज्यादा पानी हमारे खेत में नहीं भरा रहा। ओकर बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारे जो खेत है उन्हें पानी रुकना नहीं चाहिए। ओकर बाद जो व्यवस्था हम कर सकें, चाहे हम मादम लगाएं चाहे हमारे खेत में अति ढाल रहा है कि पानी रुके नहीं, ये सब व्यवस्था हमारे करना है। ताकि अगर ज्यादा पानी में रुकी तो हमारा अरहर की फसल है वह खराब हो जाए। तो ये हो गया हमारे मिट्टी के बारे में। अब जो मिट्टी है हमारा ऐसे होना चाहिए जो काला हो, ताकि अगर कम पानी भी गिरे तो हमारे माटी में जो नमी है ओकर से हमारे फसल अब बढ़ जाए और पक जाए। और इनमें माटी में एक चीज और जरूरी है कि पीएच अब ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सॉइल के इंडिकेटर बोले जाते हैं पीएच का, जिनमें अगर पीएच ज्यादा रही जो 7.5-8 के ऊपर है तो वो स्थिति में हमारे जो माटी है वह हमारे पोषक तत्व जो अरहर है वह नहीं ले सके, तो हमारा पीएच कम करे बर पड़ी तब वो फसल अच्छा हो सकते। इनमें और चीज है जो हमारे सबसे अच्छा मन है उन्हें हमारे आजाद अरहर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ अरहर हमारे यहाँ से बहुत अच्छा तो है, वो सब हम लगा सकते हैं, हमारे किसान भाई मन लगा सकते। और इनमें जो एक चीज और है कि जो टेम्परेचर है हमारे छत्तीसगढ़ के सुटेबल है, उनमें छत्तीसगढ़ अरहर के जो किसान खेती होते वो बहुत अच्छा होते। तो वो खेती हमला किसान मल्ला वो किस्म के अरहर फसल लगाना चाहिए ताकि वो मल्ला उत्पादन अच्छे से प्राप्त हो सके।
0: जी, जैसे कोनो भी फसल हुए बने बढ़वार अच्छा उत्पादन पर जरूरी होते खाद उर्वरक। राहेर फसल पर खाद के मात्रा उपयोग की विधि कैसे ढंग ले होना चाहिए?
2: जैसे कि अपन ने बताया हूँ कि जो दलहन फसल है हमारे कोई भी दलहन फसल वो अपन पोषक तत्व नाइट्रोजन की मात्रा जो पोषक तत्व मेन है जो बढ़े बार बहुत जरूरी है कोई भी फसल पर, तो अपन खुद बनाते हैं। तो बाद अगर हम राइजोबियम कल्चर ला उपयोग करे हैं तो हमारा मात्रा कम लगी, लेकिन अगर कोई भी किसान ओला नहीं उपयोग कर सके तो कम से कम से कम अरे एकड़ की बात करबो तो हमारा कम से कम 10 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो हमारा कम से कम फास्फोरस की जरूरत पड़े है और 21 किलो पोटास हमला तेल पड़ ही हमारे पौधा ला अरहर बार प्रति एकड़। तो बाद हमला कम से कम 50 किलो SSP की मात्रा, 30 किलो कम से कम DAP की मात्रा, और वही 30 किलो जो DAP देवो हमारे तो हमारे यूरिया की मात्रा हमारे पूरा हो जाते हैं। और कम से कम 20 से 30 किलो हमारा पोटास लगी जो हमारे प्रति एकड़ लगी तो ओकर से हमारे पोषक तत्व के मात्रा है वो पूरा हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा मात्रा हमारे एक साथ समस्त नहीं डालना है, ताकि पोषक तत्व ऐसे है जो पौधा नहीं ले सके माटी में डाले के बाद वो खैटा हो जाते। तो बाद हमारा ध्यान रखना है कि जब हम भूमि करबो तो समय हमारा सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा है जो पौधा ला तुरंत चाहिए जगह पर पौधा के ग्रोथ जड़ के बढ़वार पर, तो हम 40 किलो SSP डाल दी। ओकर बाद 10 से 15 दिन बाद हमारा DAP डाले जरूरत पड़ी, ताकि हमारा जो जड़ है अंकुरित होकर बाहर आ गया माटी पकड़ा थे ओला हमारा बढ़ाना है। ओकर बाद हमारा DAP डालनी पड़ी, DAP हम 30 किलो DAP डालबो तो हमारा नाइट्रोजन की मात्रा भी ओमी पूरी हो जाएगी और फास्फोरस भी हम दे सकते हैं। ओकर बाद जो पोटास की मात्रा है वो सेकंड जब डीएपी डालबो ओमे पोटास की मात्रा 15 किलो डाल सकते प्रति एकड़ तो हमारे पौधा होकर तो मजबूत हो। अब आज की स्थिति ये हो गया हमारे पूरा मात्रा खाद की जो हमारा डालना है तो यही मात्रा ला हमारे कम से कम 2 महीना बाद और डाल पड़ी जब तक हमारे जो वनस्पति वृद्धि है वो नहीं हो सके। जब तक हमारे वनस्पति वृद्धि हो रही तब तक हमारे वाला डाल 2 बार करके डालना है। लेकिन जो आज की स्थिति है अगर कोई कोई किसान में शिकायत करते कि भाई हमारे पौधा नहीं बढ़ा थे या हमारे पौधा में समस्या आते तो ओकर बार ये मात्रा के अलावा जो हमारा अगर गोबर खाद नहीं डाल पाहन या डीएपी नहीं डाल पाहन तो वो हिसाब से अगर हमारा इससे लगते कि पौधा बढ़ाव कम हो तो ओकर बार हमें ये बता था कि 19-19-19 से वो पोषक वो 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम प्रति स्क्वायर मतलब 15 लीटर पानी में 100 ग्राम घोलना है और एक आते माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट के भी इसमें आप 1 किलो के पैकेट वोला भी हम 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलना है और स्प्रे करना है। ये स्प्रे अगर हम अगर पौधा के खातू नहीं डाल सका था तो स्प्रे करे

0: से भी हमार जो पौधा है वो बहुत जल्दी बढ़ी और ओकर जो छोटे कम सूक्ष्म पोषक तत्व होला लागत जाते होला हमन पूर्ति करत हन तो वो हा अच्छा बढ़ी। अगर किसान मन भाई मन ओला भी नहीं डाल सकते तो ओकर करा अगर घर में गाय गौमूत्र वगैरह इकट्ठी थे या केचुआ खाद है नाली बनाते ओकर पानी दादी छान के अगर स्प्रे करी तो एक अच्छा पोषक तत्व रूप में ओकर पौधा बढ़ी।
1: अरहर की फसल होते तो जब बाढ़ते तो उमा पीलापन के समस्या दिखाई देते तो कहूँ पीलापन के समस्या रहर फसल में दिखाई देते तो वो समस्या ले हम कैसे समाधान पा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे अपन। जो किसान मन पानी न पूर्ति नहीं करवाई थे तो पानी कम लगते हैं लेकिन अगर पानी की पूर्ति नहीं कर पाते या ज्यादा पानी हो गए दोनों स्थिति में तो अरहर के पौधा है वो पीलापन स्थिति में आ जाते ताकि उसका जो पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाते या वह मतलब ओला प्रतिकूल परिस्थिति दिखत तो वो स्थिति में चाहे उन्हें एक फंगस बैक्टीरिया के अटैक हो सकते थे विल्ट बीमारी बोलथन ओला तो ओला दूर करे बर हमला ट्राइकोडर्मा है एक ट्राइकोडर्मा पाउडर आते ओला हमला 500 ग्राम लेना है और 3 किलो गुड़ में ओला 200 लीटर पानी में घोलना है। 200 लीटर पानी 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 3 किलो गुड़ तो एला घोल के 2 दिन रख के ताकि जो ट्राइकोडर्मा है वो 200 लीटर पानी में पूरा घोल के बढ़िया हो जाए ओला फिर छान के ओला स्प्रे करना है हमला और जो हमार स्प्रे करबो वो स्प्रे से जो विल्ट की बीमारी बहुत दूर हो जाएगी और जो दूर है और ट्राइकोडर्मा है वो हमार पोषक तत्व के काम भी करी तो ओकर जो पीलापन है वो खत्म हो जाए कार की जो हमन ट्राइकोडर्मा डाले हैं वो ओकर बैक्टीरिया ला मार दी नष्ट कर दी और जो गुड़ है उनमें जो उसका जो बैक्टीरिया है वो बढ़ाई तो जो पौधा विल्ट से समस्या से ग्रसित होते से वो सुधर जाए तो जो पोषक तत्व है वो माटी से या हमन जो पहली बताए कि वो स्प्रे करना चाहिए करके ओला स्प्रे करके हमन ओकर निदान कर सकते अगर वैसे कोई समस्या
1: तो रहर फसल में कीड़ा बीमारी लग गए है तो ओखर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं और जैविक विधि ले कैसे कर सकते हैं एकर बारे में बताते
0: हैं। के हमन फल दे जाते हैं पत्ता लपेटा है फल मक्खी व्हाइट ग्रब है ना ये सब पर हमन रासायनिक के जगह अगर हमन प्राकृतिक रूप से बनाबो तो ओकर अगर निमास्त्र है ब्रह्मास्त्र है ये सब दवाई हमन ला बनाए लगी तो एक निमास्त्र के आप मन ला सरल तरीका बता देते ओकर बार हमन ला कुछ नहीं लगे नीम के पत्ता लगी 5 किलो असन 10 लीटर गौमूत्र लगी 10 लीटर हमन 2 किलो हम 2 किलो गुड़ लगी और हमन ला अगर निमास्त्र बनाथन तो उन्हें अगर और कोई खड़वा पत्ता बनाना खड़वा पत्ता धतूरा है ना वो तब अगर हमें हमारे तरह तो ओला भी लेके हमन 5 किलो लेके ओला एक तो गंजी में मस्त चूल्हा में करके गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद अगर हम 10 लीटर पानी ले हैं तो 5 किलो नीम पत्ती ले हैं ओला लेके 5 किलो जब तक वो पानी नहीं हो 5 लीटर जब तक वो पानी नहीं हो जाए तब तक ओला उबालना है ओकर बाद ओला एक ड्रम में 100 लीटर के ड्रम में लेना है 100 लीटर के ड्रम में हमारा 10 लीटर गौमूत्र डालना है ओकर बाद उन्हें जो हमारे 5 लीटर निमास्त्र के पानी बने हैं ओला मिला के उन्हें छोड़ देना है और हमारा 1 किलो गुड़ उन्हें डालने के छोड़ देना है और वो जो गुड़ रही गुड़ पानी रही निमास्त्र के तरफ तो पूरा पूरा हमारा जो 100 लीटर पानी है उन्हें उतर जाएगी और उतरे के बाद ओला हमन 4 महीने 2 महीने जैसे भी हमारे लगते ओला हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमन जो गौमूत्र डाले हैं ओकर बाद ही जब ये मात्रा हमारे 100 लीटर होगी तो ओला हम पानी के साथ बढ़ा के और जब भी स्प्रे करबो तो उन्हें कम से कम 1 स्प्रे में 1 लीटर गौमूत्र और कम से कम 10 लीटर हमला नीमा से जो बना है ओला मिलो के हमला डालना है तो ये हमन एक बार अगर 100 लीटर के बना ले कुछ दिन बाद 300 लीटर के बना दें तो हमला कम से कम 150 लीटर पानी एक बार में लगते 1 एकड़ में डाले बस एक एकड़ के बाद बताता हूँ अगर हमला किसान भाई मन ज्यादा एरिया में कर रहे थे तो वो मात्रा ला और बढ़ा के बना सकते अपन 300 लीटर 400 लीटर जैसे जरूरत बात है लेकिन निमास्त्र के प्रयोग करे से ऐसे है की जो हमारा जो कीड़ा है वह भागत जाते तो ओकर बार हमला एक डायल जो स्प्रे करे के तरीके अलग है मतलब ये है जैसे हमार फसल है अच्छा हरा हरा दिखत है नरम नरम पत्ती हो गई है वो समय हमारे डाले लगी हम जो रासायनिक खाद डालता वो लगे के बाद डालता एला हमारे पहले डाले लगी तब हमारा जो पौधा है वो हा कीड़ा से बच पाई और अगर निमास्त्र या ब्रह्मास्त्र जो मैं बता हूँ ओला अगर किसान में नहीं बना सकते तो जो हमारे गौमूत्र है ताजा गौमूत्र ओला भी अगर 2 लीटर 1 स्प्रेयर में घोल के मतलब 13 लीटर पानी और 2 लीटर गौमूत्र

0: सूत्र लगभग के बीच बीच में हफ्ता दस में भी डाल दी किसान में, तो भी से हमारा जो पौधा है ओला माइक्रोन्यूट्रिय पोषक तत्व और जो कीड़ा है वो ऐसा है वो पौधा में अटैक नहीं करे तो पौधा हमारा बच जाए और हमारे खातों की खर्चा भी उन्हें तो बच।
1: आशीष गौरव शुक्ला जी, राहर फसल के बारे में फरिया के जानकारी दे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सलाह क्रम में अभी सुनें राहेर अरहर के उन्नत उत्पादन तकनीक के विषय में जानकारी देवत रहिन आशीष गौरव शुक्ला, विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जिला राजनांदगांव।
2: और आप मन संग गोट बात करें हमारे बहिनी रुक्मणी है। रुक्मणी, हमारे घर ना संगवारी मन खातिर एक ठिन सूचना है, हेलो चौपाल कार्यक्रम ले जुड़े तिल्ला बता देते हैं। संगवारी हो अवैया शुक्रवार मैंने 5 जून 2026 के प्रसारित हुआ हेलो चौपाल कार्यक्रम में इधर के विषय हुई स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ हुई डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरिया फोन नंबर है 4003483 और तीसरिया फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई शुक्रवार 5 जून 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक और ये कार्यक्रम के प्रसारण हुई उही दिन मैंने शुक्रवार के ही संजा 7:30 में। संगवारी हो आप मन के फोन कॉल की अगुरा रही और सूचना ही ची सिरावत है।
1: मोनिका, अब भी रहोगे कृषक प्रश्न मंच के संगवारी मन ला बता देते हैं आज के प्रश्न। संगवारी हो लिख लो आज के प्रश्न। प्रश्न है दलहनी फसल अरहर खातिर माटी के पीएच मान कतका होना चाहिए। संगी हो प्रश्न एक घंव और सुन ले रहो। दलहनी फसल अरहर खातिर माटी के पीएच मान कतका होना चाहिए। और अब बता देथन पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न ओखर सही जवाब। पाछू हफ्ता हमन प्रश्न पूछे रहें कद्दू वर्गीय फसल में फल के सड़े के का कारण होते और एक सही जवाब है फल मक्खी के कारण फल सड़ते। और सही जवाब भेजिए हमार कौन संगवारी मन है।
2: ये संगवारी मन ही गांव तेंदू भाटा मगलोड जिला धमतरी ले ही उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर और किशन निषाद, बठेना पाटन दुर्गले हैं बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा मुरली नीरा वर्मा उमेश प्रमिला बंछोर और मिथिलेश टोमिन बंछोर, कांकेर संबलपुर ले हैं पागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव मनहा, कोटना पानी डोंगरगले हैं कैलाश कुमार मंडावी श्रीमती लीलेश्वरी मंडावी रुपेश गरिमा छनिष्का और दादू, गर्रापार बांधा बाजार ले हैं गंगाराम साहू मानवेंद्र राकेश साहू। तो भाई सही जवाब भेजिए जम्मू संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो ऐसे बात है रुक्मणी कि अब हमार संगवारी मल्ला कोनो गीत सुनाए के बखत है, तो बता भाई इधर कौन संगवारी मन के गीत ला सुनात हते हैं।
1: ये गीत ला गाए हैं हमारे संगवारी मन, ये है जो गीला गाए हैं स्वर दे हैं, ये है सुखन सिंह मानिकपुरी और रेणुका पोड़ते। हाँ।

0: संगवारी और झूमर नाचत ये सुघर सुघर गीत सुनें सुखंती मानिकपुरी और रेणुका पोर्ते के स्वरमा
1: अमोनिका अब जाए के बेरा हो गया तो संगे मिलना बता देथन काली के कार्यक्रम संगवारी हो काली आज के बात के संग आज के सलाहक्रम में जानकारी की विषय हो ही ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्व ये विषय में जानकारी दी ही डॉक्टर नितेश तिवारी और गीत संगीत होवे कर ही तो संगी हो देवविदा कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगी मल्ला रुकमणी
0: और मोनिका के
1: राम राम, राम।

अभी आप किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम लीजिए अब सुनिए। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की है।

0: जय जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम के संग मैं स्मिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार हा पाछू 26 मई के 12 बच्छर पूरा करीस। 26 मई 2014 के नरेंद्र मोदी हा प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। प्रधानमंत्री बने के बाद 12 बच्छर के दौरान श्री मोदी हा देश के हित में कतकुन बड़े फैसला करीन हे। एमा जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 ला खत्म करना, वस्तु और सेवा कर GST, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, अग्निपथ योजना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, नवा शिक्षा नीति संग्रह कतकुन फैसला शामिल है। उन्हें श्री मोदी के कार्यकाल में कतकुन जन कल्याणकारी योजना घलो लागू करेगी है। एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में भारतीय जनता पार्टी डहर ले छत्तीसगढ़ संग्रह देशभर में 5 ले 21 जून तक 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के थीम में अभियान चलाया जाए। यह अभियान के उद्देश्य मोदी सरकार के 12 बच्छर के बड़े उपलब्धि, जन कल्याणकारी योजना और विकास के काम ला लोगन तक पहुँचाना है। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मन हा लोगन के घर में जाके उनखर मन ले गोठ बात करके सरकार के योजना के जानकारी दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बधाई दीन हैं। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई में भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में प्रवेश करे है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पोस्ट कर श्री साया कहिन कि पाछू 12 बच्छर में श्री मोदी हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावनाला केंद्र में राखिन और निश्चित करिन कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनखे तक पहुँचाए। उमन कहिन कि गरीब किसान माइलोगिन युवा वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए के जौन संकल्प प्रधानमंत्री हा ले रहिन वह आज देश में दिखत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में श्री मोदी के नेतृत्व विशेष रूप ले प्रेरणादायी रहे है। कई बच्छर तक नक्सल हिंसा ले प्रभावित बस्तर और वनांचल क्षेत्र में आज विकास विश्वास और जन कल्याण के नवा धारा दिखत है। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा मोबाइल कनेक्टिविटी बैंकिंग सुविधा और शासकीय योजना के पहुंच दूरस्थ जनजातीय अंचल तक निश्चित हुए है, जेखर ले लोगन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए है। श्री साय कहिन कि प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना हर घर जल जन धन योजना और डिजिटल इंडिया योजना जैसन योजना ले गरीब किसान मातृशक्ति युवा और जनजातीय समाज के जीवन में आत्मविश्वास के संचार हुए है। उमन कहिन कि योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुँचाए के प्रधानमंत्री के सोचा शासन ला ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी हा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ला सिर्फ नारा भर नहीं रहन दिन फिर ओला व्यवहार और नीति के आधार बनाइन। मुख्यमंत्री हा कहिन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व हा देश ला सिर्फ आर्थिक रूप ले मजबूत नहीं बनावत है फिर सांस्कृतिक आत्मगौरव राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी की भावना ला घलो नवा ऊर्जा देवत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि छत्तीसगढ़ सरकार हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जन कल्याण सुशासन और अंत्योदय के संकल्प ला आगू बढ़ाए बर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार यह निश्चित करत है कि केंद्र सरकार की योजना के फायदा प्रदेश के आखिरी मनखे तक पहुँचाए और विकास के फायदा समाज के हर वर्ग ला मिलाए। श्री साया कहिन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र बने के संकल्प ला नवा ऊंचाई तक पहुंचा ही। ता अभी आप मन सुनत रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एकरे संग स्मिता शर्मा के जय जोहार।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक।

आप सुन रहे हैं भावार फिल्म का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 9:15 पर भी सुन सकेंगे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं राजशेखर बोस। सबसे पहले सुनिए मखमूर दहलवी की लिखी गजल राजशेखर बोस की आवाज में।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज इसमें फनकार हैं राजशेखर बोस। अब सुनिए काविश की लिखी गजल राजशेखर बोस की आवाज में।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें कलाकार थे राजशेखर बोस। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गद्दे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को और महिला टीम ने सिंगापुर को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने आज चीन के वेंग होंगयांग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पोहान को 21-14, 21-14 से मात दी। एचएस प्रणय को आयरलैंड के नहत गुएन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशियाई जोड़ी कांग काई जिंग और आरोन ताई के खिलाफ पहले

0: पहले सेट में कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-15, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद भारतीय प्रशंसकों को सात्विक चिराग से उम्मीदें थी, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और अब सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर होगी, जहां वो वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल मुकाबला करती नजर आएंगी। और अब रुख कर लेते हैं शतरंज की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया।
1: प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलीट डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था। इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए हैं और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब केवल 2 राउंड रह गए हैं और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा। कार्लसन का यह अभियान उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 4 बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा 9वें दौर में काले मोहरों से भारत के ही गुकेश से खेलेंगे। इस बीच अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आर्मागेडन टाई ब्रेक में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया, जिससे उनके अंक 14 हो गए हैं। फ्रांस के फिरोजा ने क्लासिकल मुकाबले में गुकेश को हराकर 13 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश की खिताब जीतने की उम्मीदें 8वें दौर में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा से एक और करारी हार के बाद खत्म हो गयी। वे 8 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। 2024 में विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का खराब प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में गुकेश की क्लासिकल बाजी में ये तीसरी हार थी। इससे उनकी इस साल के आखिर में उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावखर सिंदारोव के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी को भी झटका लगा है। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायोवा ने दिव्या देशमुख को क्लासिकल बाजी में हराकर खिताब की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन की झू जिनर ने भी क्लासिकल में जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेंजुन को हराकर 10 अंक के साथ दिव्या की बराबरी कर ली है। मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजिचुक और कोनेरू हम्पी ने अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ किया। इसके बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहने से हम्पी को बोनस अंक मिल गया, क्योंकि वे काले मोहरों से खेल रही थी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: पर अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी के पुल ए के अंतिम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। भारत प्रतियोगिता में पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।
2: भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। भारत के कम से कम 10 खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें नौशीन नाज सबसे आगे रहीं। उन्होंने 8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 92वें, 98वें मिनट में गोल दागकर कुल 7 गोल किए। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही गीताश्री नामी ने 5 गोल किए, जबकि कप्तान स्वीटी कुजुर ने 4 गोल का योगदान दिया। प्रियंका मिज ने 22वें, 37वें, 53वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनाई। दिया 27वें, नैन्सी सरोहा 36वें, श्रुति कुमारी 40वें, पुष्पा मांझी 47वें, रश्मीन कौर 47वें और संदीपा कुमारी ने 91वें मिनट में गोल करके अपना अहम योगदान दिया। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान स्वीटी ने दूसरे ही मिनट में पहला गोल दागा। नौशीन ने 8वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद गीताश्री और नौशीन ने 13वें मिनट में एक एक गोल करके भारत की पकड़ मजबूत कर दी। भारतीय टीम ने इसके बाद भी गोल करना जारी रखा और अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। पूल ए में भारत ने मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर को हरा कर 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुल ए मैच के मुकाबले में आज भारत ने चीनी ताइपी को 13-1 से हराया। भारत ने कजाकिस्तान, कोरिया और चीनी ताइपी के खिलाफ जीत के साथ अपने पुल मैच खत्म किए, जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम को 4 मैच

0: 9 अंक मिले, भारत शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। रुख कर लेते हैं प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर एक और चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता आर्याना सबालेंका आज क्वार्टर फाइनल में डायना साइडर के खिलाफ 3-6, 7-5, 6-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंडर ने कल राफेल जोडर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला मेंसिक से होगा। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: पिछले साल फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी। ज्वेरेव ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 2 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर 19 जीत के साथ सबसे आगे रहने के बावजूद 19 वर्षीय स्पेनिश ने पहले सेट में सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन ज्वेरेव ने अगले 6 में से 5 गेम जीतकर मैच को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज्वेरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार 4 पॉइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। वहां से ज्वेरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71% पॉइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार 7 गेम जीते और 2 सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस साल ज्वेरेव ने यहां 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 सेट गवाया है और यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो ज्वेरेव पहले ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने के प्रबल दावेदार हैं। उधर भारत के एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन से 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैट।
0: एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के सांग्यू में भारत की 29 सदस्य टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम 6 रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: चीन में होने वाली एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले तथा महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम मिक्स्ड 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम में पुरुषों के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बरात श्रीधर हिस्सा लेंगे। वहीं 4x100 मीटर और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अनिमेश कुजूर, गुरिंदर वीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, राहुल कुमार, गणेश कुमार, सेंथिल कुमार, तमिल राजू प्रतिस्पर्धा करेंगे। जबकि महिलाओं के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में रशदीप कौर, पुअम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरी नंदना चुनौती पेश करेंगी। और 4x100 मीटर मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अभिनया राजराजन दमखम दिखाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, आज देश की युवा शक्ति से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
3: मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण का सबसे टिकाऊ माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र किया।
3: जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
0: और अब बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम महिला T20 विश्व कप में अपनी अंतिम 11 को लेकर काफी स्पष्ट है और वे इससे पहले दो अभ्यास मैच का उपयोग कुछ और संयोजन आजमाने तथा राधा यादव और भारती फुलमाली जैसे खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए करेंगी। भारत महिला T20 विश्व कप पहला खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद से इंग्लैंड पहुंचा है, लेकिन वे मेजबान इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से हार गया, जिससे ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियों को झटका लगा। स्मृति मानधना ने तीसरी T20 के बाद कहा कि इंग्लैंड में सीरीज खेलना जहां हमें विश्व कप खेलना है तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व कप में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम होगी।
4: Coming early and playing a series in England, we're going to play a World Cup definitely. In terms of the preparations, definitely extremely good to do that. But yeah, again, taking back, definitely I think me and Shefali both have a huge role to play going forward. And we'll take it in our stride again with our bowling. Again, we'll go back to the drawing board, see which options can be better. We did that before this series. Maybe we can go back again. And now I think we know that these conditions, what balls to be bowled. I think those 2-3 things, I mean, I'm sure that it's going to help a lot of our players.
0: भारत आगामी विश्व कप में अपना पहला मैच 14 जून को बर्मिंगम में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
5: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय

0: राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग

0: लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
6: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
8: ETF price stabilization fund mein
9: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to

श्रोताओं, चित्रपट संगीत को देते हैं थोड़ा सा विराम और सुनते हैं एक सूचना। आगामी शुक्रवार 5 जून 2025 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 को 11:30 पर से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। और अब सुनिए चित्रपट संगीत का यह अगला गीत फिल्म अमीर गरीब से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए मध्यम वर्ग कल्याण पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
3: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
4: Thank you very much.
5: Thank you.
3: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
4: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
3: Absolutely. Mr. Tandon.
5: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
3: जी,
5: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया।
3: जैसे भी शरद जी ने
5: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
3: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास. हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
4: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
3: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
4: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम. और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेट वर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
3: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
5: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
6: जी।
5: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
6: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
4: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
6: बिल्कुल।
4: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट। टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. And a lot of youngsters, and today just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
6: yes.
4: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
6: Right.
4: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
6: yes.
4: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
6: yes.
4: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
6: they
4: a very, very active GDP.
6: Workers,
4: in fact,
6: actually.
4: We did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
6: right.
4: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise बनाएंगे, फिर सरकार इतने सारे टैक्सेस लगाती है, 17 टैक्सेस को मिला के जीएसटी जब आया, और जब से जीएसटी 2.0 आया है, उसने तो ऐसा लगता है जीएसटी को, I mean, people have opened their arms and embraced स्टेट, उससे पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया।
6: आपने जीएसटी की बात की, और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है। बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो, हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इन द पास्ट decade impacted middle class. So Tandon, what would you say to that?
5: देखिए इसमें एक और पहलू भी है
6: जी,
5: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर। तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है, तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग। तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है। और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर हैं, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा।
6: शरद जी, यू नो बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज यू नो इनफैक्ट चेंज 4 times, इट इज इंक्रीज 4 times सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस। सो व्हाट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास यू नो मच इजियर एंड नॉट मोर that, would you say that you know the fact that the government has made the process so easy, and if we look at the number of ITRs filed, in fact last year, just last year, more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty, and it's a salute to the middle class.
4: All right, we call that a sabka vishwas. A government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting you know dynamics of this whole tax you know number which you spoke of. About 9 crore returns were filed. And you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about 1 lakh rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55-60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
6: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
4: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
6: Financial inclusion?
4: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
6: Yes.
4: I think this has been transformational. And lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
6: Ashok ji, aap kuch kehna
5: chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikli hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
6: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
4: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया. बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
6: थी, डिजिटल डिवाइड, जिसको
4: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था. बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड, इट्स प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
6: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम किया, काम किया है, हमें
4: उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव, हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
6: अशोक जी, आप कुछ कहना?
5: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
6: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
4: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी,
6: बिल्कुल
4: अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती है, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
6: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
5: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं, ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
6: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
4: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या रोटी कपड़े मकान के बारे?

0: में सोचना पड़ता था, क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त LPG भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को, आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है, उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यम वर्ग कल्याण पर केंद्रित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं फिल्म संगीत। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए जहरीला इंसान फिल्म का गीत। इस गीत के नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी और मौसिकार हैं आर डी बर्मन।

दिल दे के देखो, लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत है फिल्म दिल दिया दर्द लिया से मोहम्मद रफी की ही आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में लीजिए अब सुनिए फिल्म धर्मात्मा का गीत। इस गीत के गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए दर्द फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से सजाया है खयाम ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग मारू बिहाग। विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं अब तो भई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं परे नाही। तबले पर संगति की है इस्माइल दद्दू खान ने और हारमोनियम पर लहरा दिया है मोहन मुंगरे ने। तो लीजिए सुनिए विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग मारू बिहाग।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग मारू विहाग में ख्याल सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी इस्माइल दद्दुखा ने और हारमोनियम पर लहरा दिया था मोहन मुंगरे ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद

गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: on various aspects of welfare and employment, including enhancing awareness, promoting economic empowerment, strengthening financial inclusion, improving access to essential services, and ensuring effective grievance redressal mechanisms. And in badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Garde defeated Chinese Taipeis Yang Huxuan and Hu Lingfang. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारे इस सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:53 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर और इसी फ्रिक्वेंसी पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।